हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के

0: का धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते, मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुणेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है प्रकृति के प्रति क्षमा याचना व सम्मान। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि प्रकृति हमारे जीने का मूल आधार है। प्रकृति न हो तो मनुष्य का जीवन हो ही नहीं सकता। अगर प्रकृति हमारा साथ ना दे तो हम एक पल भी इस धरा पे नहीं जी सकते हैं, क्योंकि ये पांच तत्वों से बना ये तन प्रकृति की ही देन है। तो प्रकृति की रक्षा करना, उसे सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। तो प्रकृति के जो पांचों तत्व हैं, जैसे पशु पक्षी जीव जंतु आदि सब मानव जीवन एवं सृष्टि की संतुलित एवं सुखद बनाने के लिए आवश्यक है। जगत के सभी प्राणी एक दूसरे के पूरक हैं। वर्तमान समय मनुष्यों की असंतुलित जीवन शैली जो है अमर्यादित आचरण, अशुद्ध भोजन और तामसिक प्रवृत्ति की दुखद अशांति एवं पीड़ा के कारण बने हुए हैं। अब हम देखते हैं कि आवश्यक जो चीजें हैं उसे हम यूज तो करते हैं अपने जीवन में, उसे मूलाधार भी बनाते हैं, लेकिन उसके प्रति हमारी जो लगाव है, उसके प्रति जो सम्मान है, वो हम देखते हैं उसमें कुछ कमियां आ गई हैं। तो अनावश्यक दोहन से प्राकृतिक जो है उसे के प्रकोप में आ जाती है, और स्वार्थ एवं लालच ने मानव को मूल्यों और मर्यादाओं के साथ साथ मर्यादाओं से विमुख कर दिया है। भौतिकता की अंधी दौड़ में दौड़ता हुआ वह सुख शांति एवं समृद्धि की प्राप्ति से दूर निराशा बेचैनी हताशा एवं मानसिक तनाव का शिकार होता जा रहा है। उसने प्रकृति का अनावश्यक दोहन कर उसे असंतुलित कर दिया है। इसी कारण हमें अनेक बार प्राकृतिक प्रकोप एवं वायरस जनित बीमारियों का दुखद सामना करना पड़ता है। इन सब के पीछे मानव के अपने कर्म ही उत्तरदायी हैं। अब हम देखते हैं कि कर्म सिद्धांत के अनुसार हम अच्छा या बुरा जैसे भी कर्म करते हैं उसका यथाफल हमें अवश्य ही मिलता है। इस अर्थ में हम प्रकृति के साथ ही इनके साथ भी जैसा बर्ताव करेंगे प्रतिफल हमें वैसा ही मिलेगा। अतः हम देखते हैं कि सभी की जिम्मेदारी है कि अपने श्रेष्ठ आचरण एवं सत्कर्मों के बल पर इस धराधाम एवं प्रकृति को पुनः उसके उच्चतम स्वरूप में पहुंचाए। मानव सृष्टि का सर्वोत्तम बुद्धिजीवी प्राणी जो है परमात्मा ने मानव को सृष्टि का सर्वोत्तम बुद्धिजीवी प्राणी बनाया है। इस अर्थ में दूसरों का अधिकार और जीवन छीनने का नहीं, दूसरों को अधिकार दिलाने एवं जीवन की रक्षा करने का भार हमें सौंपा गया है। आज हम देखते हैं जाने अनजाने मानव से अनेकों भूल और दुखदाई कर्म होते रहते हैं। ऐसे में जरूरत है सर्वोच्च शक्ति परमपिता परमात्मा एवं प्रकृति माँ से भूलों एवं गलत कर्मों के लिए क्षमा याचना कर उनके जो समीप जाने की परमपिता परमात्मा और प्रकृति माता से यदि हमें सच्चे दिल से अगर हम उनसे सच्चे दिल से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करेंगे तो निश्चित ही वे हमें माफ कर देंगे, हमारी उज्जवल एवं सुखदायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है प्रकृति के प्रति क्षमा याचना एवं सम्मान। परमात्मा पिता तथा प्रकृति माता को हम क्या करेंगे, भावनाओं रूपी पुष्पार्पण करेंगे। हम पुष्पार्पण का मतलब क्या है, कहानी गया है कि कहा जाता है यदि हम भगवान का ध्यान करेंगे तो वे हमारा ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार यदि हम प्रकृति माता का भी ध्यान रखेंगे, उनका साथ देंगे, प्रकृति माता के प्रति दिल से स्नेह सत्कार एवं सहयोग की भावना जगाएंगे तो वह भी हमें क्या करेंगे, हमारा साथ और सहयोग देंगी। मानव और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस अर्थ में प्रकृति के प्रति सम्मान ही मानव जीवन को सुखदायी एवं संपन्न बना सकता है। तभी हम प्रकृति के विकराल रूप से मुक्त रहने में सफल होंगे। तो आइए कुछ देर परम शक्ति परमात्मा पिता तथा प्रकृति के सम्मुख खुद को समर्पित कर दिल की भावनाओं रूपी पुष्प अर्पित करें। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हम ऐसा करें कुछ देर के लिए, अपने मन बुद्धि को अनेक बातों से मुक्त कर एकाग्रचित हो, स्वयं को आत्मभाव में स्थित करें, अनुभव करें कि मैं त्रिकोटी के मध्य विराजमान चैतन्य दिव्य सितारा हूं, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परम पिता परमात्मा की संतान मैं आत्मा, प्रकृति के पांचों तत्वों से निर्मित मानव शरीर की चैतन्यता का आधार हूं, खुद को चैतन्य दिव्य सितारा समझते हुए अनुभव करें दिव्य प्रकाश पुंज परमात्मा एवं प्रकृति के पांचों तत्व मेरे सम्मुख उपस्थित हैं। अंतर्मन में यह भाव जागृत करें कि हे परमात्मा एवं जीवनदायिनी प्रकृति माँ, आज तक जाने अनजाने मुझसे जो कुछ भी भूल एवं गलत कर्म हुए हैं, उन सभी के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। मैंने अपने गलत आचरण से जो भी क्षति पहुँचाई है, आपको असंतुलित किया है, वह मेरी भूल थी, कृपया इन सभी भूलों के लिए क्षमा करें। हे परमपिता परमात्मा, आपसे हमें ऐसा सामर्थ्य प्राप्त हो जिससे हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट न पहुंचे। तो यह है क्षमा याचना मांगने की और परमात्मा की किरणों के नीचे बैठकर अपने आप को परमात्मा से दिव्य शक्तियों की कैसे धारणा हो हमें, इसका ये मूल आधार यही है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है प्रकृति के प्रति क्षमा याचना एवं सम्मान। आज हम देखते हैं कि प्रकृति हमारी माँ है, माँ हमारा देख रेख करती है। तो प्रकृति माँ इस सृष्टि पर परमात्मा के बाद दूसरा स्थान आपका ही है, ऐसी भावना हमारे मन में हो, आपसे ही संपूर्ण सृष्टि को जीवन मिलता है, संपूर्ण चराचर की जीवन का आधार एवं मूल आप ही हो, आप ही मानव जगत की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करती हो, संसार में विद्यमान सुंदरता आपकी ही अनोखी क्या है, कृति है, अनेक सुंदर फल फूल एवं अन्न आदि प्रदान कर आपने ही इस सृष्टि पर जीवन को सुरक्षित एवं संचालित किया है। आप ही मानव जीवन की पालनहार हो, अतः श्रद्धा एवं सम्मान पूर्ण भावनाओं के साथ मैं आत्मा आप एवं परमात्मा से बार बार क्षमा याचना करती हूँ। मैं हमेशा यह ख्याल रखूंगी कि भविष्य में मेरे द्वारा आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट न पहुंचे। मैं आपका संतुलन बिगड़ने के निमित्त न बनूं और किसी प्रकार आपका अनावश्यक दोहन ना करूं। हम दोनों मिलकर आपसे स्नेह सहयोग एवं सामंजस्य से इस सुंदर सृष्टि को पुनः इसके सर्वोच्च एवं सुखदायी स्वरूप में स्थापित कर सके, जिससे यह जगत स्वर्णिम युग में बदल सके, संपूर्ण चराचर का जीवन खुशहाल हो सके, एक दूसरे से किसी को भय एवं तकलीफ न हो, सभी का जीवन खुशहाल एवं आनंदित हो, ऐसे सुखद भविष्य की कामना के साथ साथ मैं पुनः आपसे क्षमा याचना करती हूँ। मेरे परम पिता परमात्मा एवं प्रकृति, मुझे अपने दिव्य वरदानों से भरपूर कर रहे हैं, ऐसी भावना हो, मैं परम आनंद का अनुभव कर रही हूं, इसी भावना के साथ प्रकृति को शुभ भावना दे और इन्हीं शुभ भावना और शुभ कामनाओं के साथ उनसे क्षमा याचना भी मांगे, तो इससे क्या होगा, प्रकृति भी शांत होगी और उनसे आपको सुखदायी जीवन की प्राप्ति होगी। तो ऐसा हमेशा अनुभव करें कि परमात्मा की किरणें आप पे आ रही है और आपसे प्रकृति को प्राप्त हो रही है। तो इसी के साथ आज का एक कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जीवन को जीते हुए बहुत सी चीजें हम देखते जाते हैं, बहुत कुछ बाहर देखा, बहुत कुछ अचीव करते जाते हैं। कई सपने होते हैं जो जीवन से जुड़े हुए होते हैं, परिवार को लेकर होते हैं, बच्चों से जुड़े हुए होते हैं, अपने करियर को लेकर होते हैं, उन्हें अचीव करते जाते हैं। हर अचीवमेंट हमें कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन देती है, एक खुशी का एहसास कराती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इसी जीवन में उन सभी आस्पेक्ट से गुजरते गुजरते कहीं ना कहीं वो खुशी कम होती जा रही है। खुशी मिली और फिर अगले ही पल चली भी गई और फिर मैं दोबारा खुशी को ढूंढने लग गई। इस पूरे श्रृंखला में हमारी कोशिश है कि खुशी क्या है उसे समझें। मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, क्या मैं जान पाता हूँ मुझे कौन सी बातें हैं जो खुशी दे सकती हैं? यह खुशी कहीं बाहर से मिलेगी, किसी और के साथ रिलेशनशिप में मिलेगी, किसी अचीवमेंट में मिलेगी, या मेरे अपने ही अंदर है? बहुत सी ऐसी बातें जो खुशी से जुड़ी हैं, उन्हें हम जानने का प्रयास करते हैं और इस पूरी श्रृंखला में आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे साथ रहिए और हर बार चेक करिए कि आपका हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है। और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस श्रृंखला में हमें साथ दे रही हैं, हमें बताने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू।
0: और जहां तक बात खुशी की करते हैं, मुझे गम पता है, मुझे सैडनेस पता है, मुझे पता है कि मैं कैसे परेशान हो जाती हूँ, कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे स्ट्रेस में ले आती हैं, कौन सी चीज है जो मुझे गुस्सा दिला देती है। पर खुशी जो है उसके बारे में अगर मैं सोचने बैठती हूँ तो कहीं ना कहीं मिलती है और फिर चली जाती है, मिलती है फिर चली जाती है। सो क्या ऐसी बातें हैं जो खुशी से जुड़ी हैं?
1: That was a very beautiful sentence. खुशी कहीं ना कहीं मिलती है फिर चली जाती है, फिर मिलती है फिर चली जाती है। Now what we are trying to say is कि सारा दिन में हम जीवन में चल रहे हैं, सिचुएशंस आती हैं, क्योंकि what is the whole day? It is a series of situations. जैसे कि एक मूवी चल रही है, एक सीन के बाद दूसरा सीन, कोई सीन मेरे फेवर में जाएगा
0: तो मुझे खुशी
1: मिलेगी, कोई सीन मेरी फेवर में नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति मेरी फेवर में चलेगा, मतलब जैसे मैं चाहती हूँ वैसे चलेगा, कोई नहीं चलेगा। नाउ बिकॉज माई हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन एंड द पीपल, तो इसलिए जो आपने अभी वोकैबुलरी भी यूज की, कोई मिलती है फिर जाती है, फिर मिलती है फिर जाती है, मतलब एक सीन आया, वेरी नाइस, बच्चे टाइम पर सुबह उठ गए, तैयार भी हो गए, खुशी मिली। दूसरा सीन, टाइम पर तो हो गए थे लेकिन बस ही नहीं आई उनको लेने के लिए, तो मुझे फटाफट भागना पड़ा गाड़ी निकालने की, तो वो सीन में खुशी थी लेकिन नेक्स्ट सीन में खुशी गायब हो गई। फिर नेक्स्ट सीन, टाइम पर फिर भी पहुंच ही गए स्कूल में,
0: वेरी गुड,
1: लेकिन नेक्स्ट सीन पहुंचते याद आया कि जो होमवर्क किया था वो नोटबुक तो घर पे ही रह गई थी। यू नो दिस इज जस्ट सीन्स, लेकिन क्योंकि हर सीन मेरी स्टेट ऑफ माइंड पर एक इफेक्ट डालता है, बिकॉज मैंने अपनी स्टेट ऑफ माइंड का कंट्रोल पूरी तरह से बाहर दिया हुआ है, एंड मैंने सोचा ये नॉर्मल ही तो है कि जैसे जैसे सिचुएशन लोग बदलते जाएंगे, मेरी थॉट्स मेरी फीलिंग्स उस अनुसार बदलेगी, एंड दैट्स व्हाई इट्स कमिंग लाइक दिस, कि मिलती जाती मिलती जाती, एंड हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज हाउ लाइफ इज, कि कभी कभी ठीक कभी कभी डिस्टर्ब, लेकिन वो तब तक भी ठीक था कि कभी कभी ठीक कभी कभी डिस्टर्ब, लेकिन फिर क्योंकि माइंड की पावर सिचुएशन को देते गए सिचुएशंस दिन ब दिन थोड़ी थोड़ी चैलेंजिंग होती गई, तो कभी ठीक कभी डिस्टर्ब का जो परसेंटेज था, हाउ मच इट वुड इट बी टुडे,
0: वो ज्यादा बढ़ गया,
1: बढ़ता गया, तो फिर क्या हुआ, ज्यादा ज्यादा डिस्टर्ब, कम कम स्टेबिलिटी, फिर हमारी सर्च शुरू हुई कि वेयर एम आई हेडिंग, यू नो मेरी लाइफ कहाँ है, एंड देन आई हैव रियली स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि सब कुछ तो हो रहा है, एवरी थिंग इज देयर, वेरी गुड हस्बैंड, वेरी गुड वाइफ, दोनों वर्किंग, एक्सीलेंट सैलरी पैकेज घर आ रहा है, 30-35 की एज में मेरा बहुत बड़ा ड्यूप्लेक्स बन चुका है, बाहर दोनों के लिए अलग अलग गाड़ियां खड़ी हैं, बच्चों के लिए अलग, व्हाट मोर टू डू, नथिंग मोर टू डू, लेकिन फिर भी अंदर वो एक थोड़ा सा वैक्यूम है, एंड देन द क्वेश्चन हैज स्टार्टेड कि हैप्पीनेस कहाँ है, where is that, and that's what we want to do through this program, look for it where it is actually available.
0: शिवानी मैंने अभी मेरी किसी से बात हो रही थी जिन्होंने कहा कि मैं खुशी से जुड़ी हुई बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे को इस बात से तो कुछ लेना देना नहीं कि मैं खुश हूँ या सैड हूँ, मुझे तो पहले सिचुएशंस को हैंडल करना है, क्योंकि सिचुएशंस भी इतनी तेजी से बदल रही हैं, हर पल कुछ नया हो रहा होता है हर पल। जैसा आपने कहा कि चलो बच्चे तैयार तो हुए लेकिन वो बस ही नहीं है, अगेन यू नो लाइक उस वक्त डिसीजन एकदम से लेना, ये जो प्रॉब्लम है कि सिचुएशंस इतनी फास्ट हैं, या तो मैं अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचूं या मैं सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए अपनी अडेप्टेबिलिटी को करूं।
1: अच्छा एक सेकेंड, हैप्पीनेस को साइड पे रखते हैं, ये सब सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए फिजिकल भी स्ट्रेंथ चाहिए।
0: बिल्कुल
1: राइट, अगर मैं आज बीमार हूं तो देयर इज नो क्वेश्चन कि मैं उठकर गाड़ी लेकर जाऊं। तो जब हम अपनी सब सिचुएशंस को हैंडल करते हैं लाइफ में, तो क्या हमारे माइंड में कभी ये क्वेश्चन मार्क उठता कि मैं अपने फिजिकल स्टैमिना को देखूं या सिचुएशन को हैंडल करूं? मुझे नहीं बॉदर करना फिजिकल स्टैमिना के बारे में, मुझे तो सारा कॉन्सेंट्रेशन सिचुएशन पर ही करना है। नो, मुझे ये पता है कि फिजिकल स्टैमिना से ही मैं सिचुएशंस को हैंडल करती हूँ। मैं ठीक ही नहीं हूँ तो वर्क जाएगा कौन, वर्क पे होगा क्या, वो तो सेकेंडरी, ऑफिस जाऊंगी कैसे। इसलिए सारे दिन के अंदर मैं ये जरूर ध्यान रखती हूँ कि मेरा शरीर ठीक ठाक चल रहा है,
0: भले आज के वक्त में
1: हाँ, बट फिर भी थोड़ा सी अगेन कि आपको खाना खा तो लेना ना, आप चलो एक दिन मिस कर दोगे दो दिन, लेकिन कितने दिन मिस करोगे? सपोज आप भागते भागते भी खा रहे हो और जंक भी खा रहे हो, लेकिन कितने दिन
0: हो, हाँ।
1: स्किप भी अगर आपने आज कर दिया कि आज डेडलाइन है, नेवर माइंड, एक दिन ना, दो दिन, चार दिन, उसके बाद यू विल ईट, बिकॉज यू नो कि चार दिन की लाइफ नहीं है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस जर्नी दिस बॉडी हैज टू बी फिट, अदरवाइज आई विल कोलैप्स नेक्स्ट डे। तो इसलिए हम कभी उसको सेग्रीगेट नहीं करते, अपने जीवन से अपनी फिजिकल हेल्थ को सेग्रीगेट नहीं करते, हम बहुत क्लियर हैं, हेल्थ है
0: तो काम कर
1: तो
0: सकते
1: हम काम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल हेल्थ को हमने सेग्रीगेट कर दिया।
0: उसके बारे में बाद में सोचेंगे,
1: उसके बारे में बाद में देखेंगे। अगर उसको भी हम उतना ही प्रायोरिटी दे दें कि इमोशनल हेल्थ है तो जीवन की यात्रा में हम ठीक चल पाएंगे। जैसे आपने कहा कि ओहो मैं क्या करूं या मैं कोलैप्स हो गई, या एक है फिजिकल कोलैप्स और एक है जो इमोशनल कोलैप्स होते हैं। अब 5 मिनट पहले पता चला कि स्कूल छोड़ने जाना है, ओके, बट अगर मैं उस टाइम यू नो काम रहूं, स्टेबल रहूं, छोड़ने तो फिर भी जाना है, गाड़ी तो आपको फिर भी चलानी है, लेकिन किस स्टेट में चलाएंगे तो योर सेफर। सो अगर हम इमोशनल हेल्थ को भी उतना ही एम्फेसिस दे कि ये सब सिचुएशंस और इमोशनल हेल्थ ये सेपरेट नहीं है, इट इज अ पैकेज, कि अगर मैं इमोशनली हेल्दी हूं तो मैं इन सिचुएशंस को क्रॉस कर सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ सेइंग लेट मी फर्स्ट फेस द सिचुएशंस देन आई विल टेक केयर ऑफ माय इमोशनल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ये मेरा पैकेज है
0: अभी तक तो हम, लेकिन शिवानी बहन यहाँ पे एक और बात आती है कि अभी तक तो हम इसी बात को बड़ी मुश्किल से समझ रहे थे, यू नो पार्क में जॉगिंग शुरू की थी या वॉक शुरू किया था, कि फिजिकल हेल्थ इज नीडेड, यू नो ये भी एक हम स्ट्रेस की तरह ले रहे थे, इन द सेंस कि एक रियलाइजेशन होना शुरू हुआ था मैक्सिमम लोगों को, अब हो रहा है कि क्या मैं खा रही हूँ, किस वक्त पे खा रही हूँ और कितनी वॉक कर रही हूँ, कितनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, वो जरूरी है।
1: Do you know something? Why we are having to take so much care of physical health today? क्यों इतना ध्यान रखने जा रहे हैं? हमें बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट वन जेनरेशन पीछे, सिर्फ अपने पेरेंट्स को देखना है, कोई जॉगिंग नहीं करने गया मेरे पेरेंट्स में से, किसी ने मिनरल वाटर नहीं पिया सारा दिन में, किसी कोई इतना डाइट कॉन्शियस नहीं था, नॉर्मल खाना बनता था, नॉर्मल सब लोग खाते थे, आज इतना ज्यादा क्यों ध्यान रखना पड़ रहा है फिजिकल हेल्थ पे? क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस इतना ज्यादा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम शरीर के साथ चली ही जाती है, तो जो रूट है उसको नहीं ध्यान रखा, रूट की वजह से फिर जो क्रिएट हो रही है सारी प्रॉब्लम्स, अगर रूट पर भी ध्यान रख लें तो यहाँ इतना ज्यादा एम्फेसिस, इतना ज्यादा एफर्ट करना ही नहीं पड़ेगा। अब आज आप जॉगिंग करने तो जा रहे हो या दो लेडी, हाँ फास्ट फास्ट फास्ट, अच्छा फिर उसमें भी अगर दो तीन लोग इकट्ठे जॉगिंग कर रहे हैं, जॉगिंग तो कर रहे हैं, डिस्कशन की क्वालिटी क्या है?
0: कंटिन्यू, आई टेल यू, यू नो दिस इज अमेजिंग,
1: वॉकिंग कर रहे हैं सेहत के लिए, लेकिन अगर इतनी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होंगी वो चलते चलते, तो नेगेटिव थॉट्स सिर्फ माइंड पर नहीं ना, उसका इफेक्ट बॉडी पर भी है। तो हम फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन जब तक हम ये नहीं रियलाइज करेंगे कि फिजिकल हेल्थ पे भी हमारी इमोशनल हेल्थ का बहुत डीप इम्पैक्ट है, दोनों का ध्यान रखेंगे देन वी विल गेट दैट राइट, जिसको हम कहेंगे ना हेल्दी बींग, पूरी एक होलसम प्रोडक्ट हेल्दी होगा. आप एक फैक्टर पे ध्यान दो और दूसरे फैक्टर को और ही निग्लेक्ट करते जाओ, निग्लेक्ट करते जाओ,
0: उसके ऊपर और स्ट्रेस क्रिएट करे जा रहे हो एक्चुअली,
1: तो फिर ये साइड पे क्या रिजल्ट निकलेगा? मेहनत ज्यादा और फिर भी रिजल्ट कम. आज डॉक्टर्स के पास इतने यंग प्रोफेशनल, स्पेशली यू नो जो प्रोफेशनल हमारे यूथ हैं, 30s के एज ग्रुप के अंदर है, कहेंगे मेरी लाइफस्टाइल ठीक है, नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, वेजिटेरियन फूड भी कई लोग ले रहे हैं, जॉगिंग मैं रोज जाता हूँ, फिर भी 30 के एज में आकर ये इलनेस क्यों? क्योंकि सिर्फ एक फैक्टर पे ध्यान नहीं रखा, बाकी सब चीजों पर ध्यान रखा, ये नहीं रखा कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या है सारा दिन. उसको तो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया या फिर उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट ही कर दिया, इसका कुछ नहीं हो सकता. टेंशन ये सब तो चलने ही वाला है, इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो बीमारियां हो रही हैं, उनका मैं इलाज करवा सकता हूँ.
0: सो व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ?
1: हैप्पीनेस
0: इज इमोशनल हेल्थ,
1: इज मेंटली हेल्दी. जिस क्षण आप खुशी का अनुभव नहीं कर रहे हैं, उस समय
0: आप अनहेल्दी, मेंटली अनहेल्दी हैं.
1: तो ना अब आप अपना दिन का इंडेक्स चेक कर लेना कि कैसा बीत रहा है सारा दिन. क्योंकि क्यों, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? जब आप नॉर्मल फील कर रहे हैं, कंफर्टेबल फील, सपोज आई एम वॉकिंग, लेकिन वॉक करते करते मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है पैर में, एंकल में या नी में, लेकिन मैं उस दर्द के साथ भी तो चल ही लेती हूँ ना, चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं. कोई कहे डॉक्टर को दिखा, वहां दिखा लेंगे, टाइम नहीं है. धीरे धीरे मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ उस दर्द के साथ ही चलना. यू नो आई से आई डोंट हैव टाइम टू ट्रीट माई सेल्फ, या कौन जाए फिर डॉक्टर के पास. ओके, सो आई स्टार्ट वॉकिंग विद दैट पेन. So I accept that physical pain
0: as a part of my life. Yes.
1: And I say, it's okay, I will accept that. Lekin, is that health? Is that a healthy foot, a healthy knee? Nahin. Maine us pain ko swikar kar diya, usko hi normal keh diya, lekin wo normal नहीं है.
0: उस वक्त हम अपने आप को क्या कहते हैं कि कहीं नेचुरली ठीक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा,
1: अपने आप ठीक हो जाएगा. सेम थिंग विद द स्टेट ऑफ माइंड. अच्छा, दर्द है, टेंशन है, ये तो पार्ट है, चलते जाओ, घसीटते जाओ, इसको स्वीकार कर लिया. सभी को तो है, सिर्फ मुझे थोड़ी है. तो जो चीज सभी को है, यू नो व्हेन वी डू वर्कशॉप्स एंड ऑल, 100 लोग बैठे हो या 5000 लोग बैठे हो, जस्ट आस्क देम वन सिंपल क्वेश्चन, आपको टेंशन होती है? यू वोंट बिलीव. एक भी वर्कशॉप में आई हैव नॉट सीन कि कोई एक खड़े होकर कहे कि हाँ मुझे होती है. यूनानिमसली एवरीवन विल से सभी को होती है. एंड इट्स सो ब्यूटीफुल टू सी द वे एवरीवन इज सेइंग सभी को होती
0: है. और जवाब ऐसे आते हैं कि कौन है जिसको नहीं होती है.
1: एंड अगर कोई कहे भी दे ना इंडिविजुअली, तो नो वन विल एक्सेप्ट. तो जैसे ही हमने कहा सभी को होती है, इट मेक्स मी फील अच्छा ठीक है, तुम अजीब नहीं हो, ये बीमारी तो आजकल सभी को लगी है. और सभी को लगी होने से मैं उसको और स्वीकार कर लेती हूँ कि ये तो, और फिर हमने उसको ही नेचुरल उस. तो अगर हम अपने दर्द को शुरू होते ही चेक कर ले, तो फिर हम क्या होंगे, इमोशनली अपना ध्यान रख सकेंगे. लेकिन दर्द है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, टेंशन हो रही है, चिड़चिड़ापन थोड़ा सा बढ़ता गया गुस्से में, हमने कहा कोई बात नहीं, चलते जाओ, टाइम नहीं है रुक कर अपना ध्यान रखने के लिए. तो कैन वी कॉल दैट हेल्दी? कैन यू कॉल योर सेल्फ हेल्दी?
0: नो, यस, यू नो, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इरिटेटिंग.
1: नेचुरल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, अंदर एक तकलीफ थोड़ी सी वो क्रिएट कर रहा है. तो इमोशनल हेल्थ मेरी किस लेवल पर है आज, ये पूछने के लिए मुझे किसी और के पास नहीं जाना है
0: एक्चुअली. और उसे हम कुछ देर के लिए, जैसे दर्द को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं जब हम किसी और चीज में होते हैं, पर दर्द एक्चुअली फिर से स्पर्ट आउट हो जाती
1: है. तो हम कोई ना कोई सिचुएशन या कोई ना कोई और तरीके ढूंढते हैं जिससे हम अपने माइंड को उससे डेविएट कर लें. सिमिलरली इमोशनल हेल्थ में भी कि हाँ है, चलो कुछ ऐसा कर लें जिससे मैं थोड़ी देर इस बात को भूल जाऊं, शॉपिंग चले जाऊं, किसी से थोड़ी देर फोन पर बात कर लूं, तो मैं अपने खालीपन को थोड़ी देर भूल जाऊं. लेकिन गया तो नहीं ना, सिर्फ उसको थोड़ी देर के लिए आपने साइड ट्रैक कर दिया, है अभी भी वहीं. सो कहीं ना कहीं बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ दैट वी आर ऑल लीडिंग, बट समवेयर वी आर नॉट एंजॉयिंग द ब्यूटी ऑफ इट, जस्ट बिकॉज हम सिर्फ एक डायमेंशन को निग्लेक्ट कर रहे हैं. बाकी तो सबकी तरफ हमारा बहुत अच्छा ध्यान है, लेकिन जो फंडामेंटल डायमेंशन है जहां से सारा कुछ शुरू होता है, यू नो इट्स लाइक अ ट्री, सीड है, सीड की क्वालिटी को हम नहीं ध्यान रख रहे। हाँ, बाकी ट्रंक बहुत अच्छा है, ब्रांचेस बहुत अच्छे हैं, लीव्स फ्रूट्स सब हम सहते हैं बहुत अच्छा, लेकिन सीड की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हर टाइम कुछ ना कुछ
0: कमी रह, तभी तो कमी रह रही है। तभी तो हम ये नहीं कह रहे कि वो अच्छा है, हम उसको अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं,
1: क्योंकि इधर नहीं प्रयास कर रहे ना हम। सीड पर पानी नहीं डाल रहे तो हर एक पत्ते पर पानी डाल रहे हैं, हर एक फल पर पानी डाल रहे हैं। यहाँ डालते, यहाँ तक पहुंचते ये सूख जाता, कहेगा बच्चों का ध्यान रखो या ऑफिस का करो, इनको खुश करो या इनको खुश करो। एफर्ट बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि एक कमजोर मन बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। कमजोर मन अपने को ठीक नहीं कर रहा, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा है। सपोज आज हम 10 घंटा काम करते, लेकिन कल हम बीमार हैं फिजिकली और हम 10 घंटा काम करें, दोनों दिन में फर्क होगा या नहीं होगा? फर्क होगा। एक तो एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कर भी लेंगे लेकिन उस पूरे दिन को हम उतना ज्यादा इंजॉय नहीं करेंगे जैसे बाकी दिन को करते। इसलिए हम क्या करते हैं, आज तबीयत ठीक नहीं है ना, थोड़ा सा गैप लो, इसको ठीक करो, ताकि फिर नेक्स्ट डे इट विल बी वेरी वेरी गुड। सिमिलरली अगर इसकी भी हेल्थ पर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो फिर हमें ड्रैग नहीं करना पड़ेगा अपने जीवन को, कर रहे हैं लेकिन बीमारी की हालत में कर रहे हैं, एंड तब सब कुछ करते हुए भी एक तो मेहनत लग रही है, एफर्ट लग रहा है, एंड समवेयर दैट फन और दैट एंजॉयमेंट इन लाइफ इज नॉट देयर, फिर एंजॉयमेंट के लिए और कुछ करना पड़ता है।
0: बिकॉज़
1: आई एम नॉट एंजॉयिंग लाइफ।
0: ओह यस, वेरी ट्रू। और वो एंजॉयमेंट के लिए हम क्या क्या करते हैं उस पर बात हम जरूर करेंगे, लेकिन आज जो आप बात समझ में आ रही है शिवानी बहन, वो ये कि इनफैक्ट जहाँ आपने फिजिकल अनहेल्दीनेस की बात की तो उसको ब्रेक हम सब देते हैं। यू नो आई नो वर्कहोलिक्स जो हैं वो कहते हैं एक किसी दिन गायब भी हो जाएंगे वो, दैट वी वांटेड टू टेक अ ब्रेक, यू नो, तो उनको फोन पर संपर्क करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दे सेड वी कुडंट फिजिकली गेट अप, यू नो।
1: तो आप देखो ना कि वो किस लेवल तक पहुंच जाते हैं एकदम, और फिर उनको टोटली डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। तो दोनों चीजें एक्चुअली बैलेंस्ड नहीं है, जो बहुत ज्यादा कर रहे थे वो भी बैलेंस्ड नहीं था, फिर एकदम से डिस्कनेक्ट कर देते हैं वो भी बैलेंस नहीं है, मतलब सडनली सबसे कट ऑफ हो जाते हैं। तो फिर वो एक्सट्रीम पर अपने जीवन को जैसे चला रहे हैं कि या तो बहुत ज्यादा उसके अंदर घुस गए हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और फिर वो कोलैप्स हो जाते हैं, तो फिर एकदम से उससे विड्रॉ करना पड़ता है।
0: आई थिंक यू द वे यू हैव पुट इट एक्चुअली इज वेरी राइट, बिकॉज अभी तक हम ये मानते थे कि ये राइट तरीका है, क्योंकि आप काम करो तो खूब दबा के काम करो और जब रेस्ट लो तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट होके करो।
1: मशीन से भी जब काम करवाते हो, चलो ह्यूमन बींग तो छोड़ो, एक मशीन से भी अगर काम करवाते हो तो मशीन ठीक चल रही होगी तब तो वो आपका रिजल्ट देगी। वो कर कर कर कर करके आप उससे फिर भी आप बोलो नहीं, आई विल नॉट स्टॉप टू ऑयल इट, आई विल नॉट स्टॉप टू मेंटेन इट, कितने दिन? फिर वो एक दिन एकदम बंद हो जाएगी और फिर उस दिन कहेंगे आज तो ये मशीन काम ही नहीं कर रही। जब वो मशीन ने थोड़ा सा ही सिग्नल देना शुरू किया था तभी अगर उसको ऑयल कर देते या ठीक कर देते, यू वुडंट कम टू दैट वन डे जिस दिन वो काम करना बंद कर देगी।
0: जब मैं काम कर रहा हूँ, चाहे मैं प्रोफेशन में हूँ, चाहे मैं अपने बच्चों की केयर कर रही हूँ, चाहे मैं मतलब कुछ भी जिस भी पर्पस में मैं हूँ, उस वक्त मैं अपने फिजिकल या मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर रह सकती हूँ।
1: ध्यान रखना, यू नो, आजकल जैसे मेडिटेशन और ये सब बहुत अपकमिंग हो गया, तो बहुत लोग कहते हैं ध्यान करना है, हमें ध्यान करना है, ऐसे ध्यान करना बहुत डिफिकल्ट है, उसको छोड़ो, ध्यान रखना है सिर्फ, यू नो, ध्यान करना तो ऐसे फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज लगती है कि एकदम थॉटलेस हो जाएंगे,
0: पड़ेगी मुझे टाइम सोचना पड़ेगा।
1: सारा दिन में सिर्फ अपना ध्यान रखना है, सबका ध्यान रख लेते हो, ऑफिस का, घर का, परिवार का, यहाँ तक कि अपनी गाड़ी का, अपने मोबाइल का, मतलब इवन एक अच्छी कार आपने ली है आप याद रखते हो कि हर महीने इस डेट पर इसको सर्विसिंग के लिए भेजना है, कितने महीने नहीं भेजेंगे और वो कितने महीने चलेगी बिना सर्विसिंग के, वी नो। सो इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ द कार एवरी मंथ आई विल सेंड इट फॉर सर्विसिंग, एवरीथिंग आई टेक केयर ऑफ, देन व्हाई डू आई जस्ट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ माय माइंड, दैट्स ऑल, आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इसलिए ध्यान रखना हम सबको आता है, हमें कहीं से सीखने नहीं जाना है, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, हमें कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है ये। किसी से भी आप पूछो किस किस का ध्यान रखते हो सारा दिन, फैमिली, ऑफिस, घर, यू नो, बच्चे, परिवार, अपना कहेंगे हाँ हम शरीर का ध्यान रखते हैं ना, इसको साफ रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, तो अपना भी जब कहेंगे तो दे विल ओनली थिंक ऑफ कि इस बॉडी का ध्यान रखना, मन का ध्यान रखना।
0: और हम कितनी बार कहते हैं हमारा ध्यान तो वो रखेगा ना ऊपर।
1: हाँ, पर जब हम ऊपर वाले के ऊपर भी डालते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम उसकी भी हेल्प इसी में एक्सपेक्ट करते कि वो हमारे सिचुएशंस में हमारा ध्यान रखेगा। मेरे मन का ध्यान, मेरी क्वालिटी ऑफ थॉट्स और फीलिंग्स का ध्यान, उसमें भी उसको तो नहीं याद करते बिल्कुल भी। आज आप सत्संग में जाओ, प्रवचन में जाओ, कुछ भी करो, वेरेवर, मंदिर जाओ, जहां भी जाओ, तो किस लिए जाते हैं? जाते हैं ताकि थोड़ी देर जाकर अच्छा लगेगा, पुण्य का खाता मेरा जमा होगा, मेरा वीक का अच्छा काम वाला कोटा हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ अस आर गोइंग विद द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग ऑन माई सेल्फ, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, अपने थॉट्स, अपने संस्कारों के ऊपर काम करने के लिए हम सत्संग में जाते हैं क्या? हम सिर्फ वहां जाते हैं, एक घंटा दो घंटा बैठते हैं, बहुत अच्छी बातें सुनते हैं, सुनते सुनते यस वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके सी यू नेक्स्ट फ्राइडे, दैट्स ऑल। एंड फिर ये फ्राइडे से नेक्स्ट फ्राइडे तक
0: भूल जाते
1: सेम लाइफ, सेम वैसे ही डिस्टर्बेंस, केओस, क्राइसिस, एवरीथिंग। फिर नेक्स्ट फ्राइडे गए, दो घंटा बैठे, किया। तो एम ऑब्जेक्टिव वहां भी ये नहीं है कि अपने मन का ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं सब चीजों का ध्यान रखते रखते इसको एक प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना है, क्योंकि सबका ध्यान रखने वाला ये मन है।
0: हाँ।
1: ये शरीर भी नहीं है, ये शरीर भी आज बीमार थोड़ा होगा तो मैं चला लूंगी अगर मन खुश है, लेकिन सब कुछ ठीक होते भी अगर मैं इरिटेट होती गई, यू नो, डिस्टर्ब होती गई, आई डोंट नो हाउ एफिशिएंट आई एम एट एवरीथिंग
0: else। मेरे मन को खुश करने वाले तो दूसरे हैं, मेरा ध्यान रखने वाले तो दूसरे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, मेरे कलीग्स हैं, वो ध्यान रखेंगे मेरा, मेरे मन का तो कोई ध्यान रखेगा।
1: इसीलिए तो हाल फिर ऐसा हो गया ना आज, क्योंकि दूसरों पे डिपेंड किया। मेरे परिवार का ध्यान कौन रखता?
0: मैं
1: रखती हूँ। मेरे घर का ध्यान कौन रखता? मैं रखती हूँ। तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? मैं ही रखूंगी ना।
0: अपना ध्यान मैं कैसे रखूंगी? ये एक बात है जो हमें ये
1: सीखनी
0: पड़ेगी।
1: अपना में भी प्लीज लेट्स रिमेम्बर मन का, क्योंकि अपना कहते भी सिर्फ नहीं तो फोकस आता कि हाँ इस शरीर का ध्यान तो हम रखते ना, एक्चुअली सारा दिन तो इस शरीर के लिए ही चल रहा है, यू नो, शरीर का कंफर्ट, शरीर का भोजन, शरीर के लिए गाड़ी, शरीर के लिए मकान, सब कुछ तो शरीर के लिए ही हो रहा है, मन का ध्यान। और एक्चुअली जब अपने मन का ध्यान नहीं रख पाते तो किसी और के मन का ध्यान भी नहीं रख पाएंगे।
0: सच में देखें तो
1: परिवार को भी अगर कहें, क्योंकि हम कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार का ध्यान रखना, परिवार के ध्यान में भी हम सिर्फ शरीर का ध्यान रख रहे हैं। बेस्ट स्कूल, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट ड्रेसिंग,
0: बेस्ट म्यूजिक टॉयज,
1: बेस्ट ऑल दिस, इमोशनल हेल्थ, बच्चों की इमोशनल हेल्थ का कौन ध्यान रख रहा है? कोई नहीं,
0: तो हमें पता ही नहीं ना। यस,
1: क्योंकि अपने ऊपर जो चीज नहीं हम प्रायोरिटाइज करेंगे। और मेन चीज ये है कि जहां बाकी ध्यान रखने की बात आती तो हम बिना अपना ध्यान रखे भी मैं आपका ध्यान रख सकती हूँ। सपोज मेरे पास आज दो ही फुलके पड़े हैं, दो ही चपाती पड़ी है, मैं बिना खाए आपको खिला सकती हूँ, तो इट्स ओके। मैं अपने लिए नए कपड़े नहीं लूंगी, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए नए कपड़े ले सकती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बिना खुश रहे औरों को खुशी नहीं दे सकती। दिस इज वन थिंग विच आई कैन नॉट गिव एनी वन एल्स टिल आई हैव इट।
0: गुड,
1: सो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट
0: अंडरलाइन
1: कि पहले मुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा, तब ऑटोमेटिकली औरों का ध्यान हो जाएगा। इफ आई एम इमोशनली स्ट्रांग, ऑटोमेटिकली मेरे बच्चे इमोशनली स्ट्रांग होंगे। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मैं ही सारा दिन डिस्टर्ब हूँ, मैं ही सारा दिन चिल्ला रही हूँ, मैं ही सारा दिन उनको गुस्सा कर रही हूँ, मेरी सेल्फ एस्टीम लो है तो उनकी सेल्फ एस्टीम
0: लो होती जाएगी। यस, आई थिंक यू वेरी राइट, और इस पर हमें बात, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे शिवानी आज की जो बातचीत हमने की है, एक अंडरलाइंड थिंग कि मैं सबका ध्यान बाकी चीजों में रख सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने अपना ध्यान, अपने मन का ध्यान नहीं रखा है तो किसी का भी ध्यान नहीं रख पाऊंगी। आई थिंक वेयर वी हैव स्टार्टेड, आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल बिकॉज समवेयर दिस नीडेड टू बी, यू नो, अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। ओम शांति। अगर हम देखें तो सचमुच में हम ध्यान सबका रखते हुए अपना नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, कैसे रखना है इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत आसान है। हमें ध्यान रखना बेसिकली आता है, लेकिन कैसे रखना है ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आज जो हमें समझनी है, याद रखनी है, वो ये कि अगर मैंने अपने मन का ध्यान नहीं रखा, मैं किसी का ध्यान नहीं रख सकती, किसी के भी इमोशंस का, किसी के भी जो पूरे एस्पेक्ट्स हैं उनका ध्यान नहीं रख पाऊंगी। तो यहीं से आज शुरुआत करते हैं। हो सकता है आपके मन में कोई बात उठी हो, आपका हम स्वागत करते हैं। ये एक ऐसा मंच है जिस पर जीवन से जुड़ा कोई एस्पेक्ट है, कहीं कोई आपको लग रहा है कि मुझे हैप्पीनेस के बारे में ये बात करनी है, ध्यान रखने की बात करनी है, तो किस बात पर ध्यान रखना चाहते हैं, इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 01242667000, 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज शुरू कर रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स को जानने की। जी हाँ, खुशी का जो आंकना है वो कितना दिन भर में ऊपर नीचे होता है, वो कैसे रहेगा एक स्टेबल लेवल पर, इस बात का प्रयास हम करेंगे इस पूरे श्रृंखला में। आज शुरुआत है, आपसे अब विदा लेते हैं, लेकिन आने वाली कड़ियों में बहुत सी बातें जानेंगे। ओम शांति।

शिवाजी की तलवार है, लावनी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलत का हो
1: पुणेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो खुश रहो खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। हमारे चेहरे की मुस्कुराहट बताती है कि रास्ता हमें मिल गया है, लेकिन मुश्किल ये है कि उस रास्ते पर चलना कैसे है। और यही जानने के लिए कि किस तरह से जीवन के इस रास्ते को बेहतर बनाकर हैप्पीनेस की जो हम बात करते हैं, खुशी की जो बात करते हैं, उसे इस पूरी जर्नी में तराशना है, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ फिर हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत। ओम शांति। शिवानी, हमने बात ये की थी कि डेस्टिनेशन जो है वो खुशी नहीं हो सकती, हमारा जो पूरा रास्ता है, पूरा प्रोसेस है, जो जर्नी है, दैट शुड बी हैप्पीनेस। और हम जो खास मुद्दों पर जिन पर बात करते आ रहे हैं वो है ट्रस्ट। आज हमने पहले से ही सोचा हुआ था कि हम, क्योंकि जो बात हमने की थी वो थोड़ी सी आधी ये थी कि जब रिश्तों में विश्वास नहीं रहता तो किस तरह से उन्हें हैंडल किया जाए।
1: विश्वास हमारा खुशी का लेकिन एक बहुत बड़ा आधार है। यू नो, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस, ट्रस्ट इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। इट इज, बिकॉज जितना आई विल ट्रस्ट, आई विल रिमेन इजी,
0: कंफर्टेबल,
1: बहुत कंफर्टेबल, और जीवन एकदम सरल बन जाती है एकदम, क्योंकि आपके पास वेस्ट थॉट की मार्जिन नहीं है ना। सी, थॉट्स जो सारे इतनी सारी चल रही हैं, वेस्ट थॉट्स बहुत चलती हैं, कहीं ये ऐसा ना कर दे, कहीं और किया कुछ भी नहीं होगा सामने वाले ने, कहीं ये ऐसा ना कर दे, ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं सच बोल रहे हैं, पता नहीं इसमें इनका फायदा तो नहीं है, मतलब इट्स अ चेन,
0: कहां तक पहुंच जाता है,
1: बहुत दूर। एंड इतना सब टाइम में हम भारी हो गए, तो खुशी, व्हाट वी टॉक्ड अबाउट दैट, देखिए खुशी ऑलरेडी है, चाहिए नहीं, वो ऑलरेडी है, ये सारी चेन ऑफ थॉट्स क्रिएट की वो लीक हो गई। तो ये सारी जो छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस की है, दीज आर वेज इन विच वी कैन सस्टेन दैट हैप्पीनेस। उस चाहिए नहीं लेकिन वो है, उसको कायम रखने की विधि क्या है। तो विश्वास रखना लोगों पर, अपने आप पर, परमात्मा पर, यू नो, लाइफ कैन बिकम सो सिंपल। थॉट के ये कोई मुझे चीट नहीं कर सकता, क्यों मुझे कोई चीट करना चाहिए, व्हाट इज अ लॉजिकल रीजन, कोई रीजन ही नहीं है। तो जीवन बहुत सरल बन जाती है उससे।
0: जीवन की सरलता की बात की तो सचमुच गुत्थियां उलझाने में जितना वक्त लग जाता है सुलझाने में, तो अगर वो सरल है, सिंपल है, सीधी राह है, तो उस पर चलना आसान हो जाता है। लेकिन हम जो एक पूरा प्रोसेस में अगर हम देखें तो हम ये देखते आ रहे हैं कि एक थॉट जो है वो जनरेट करता है डेस्टिनी को, और नेगेटिव बिलीफ्स, यू नो, तो हमने ट्रस्ट से जुड़ी हुई जो बिलीफ की बात की थी कि विश्वास तो किया ही नहीं जा सकता।
1: आज दुनिया विश्वास के लायक नहीं है, यू नो, दिस इज अ बिलीफ। लोग धोखा देते ही हैं, लोग हैं ही वैसे, तो ये बिलीफ है। तो
0: और अगर आप विश्वास करो तो आंख बंद करके विश्वास ना करो, एक आंख खोल के विश्वास करो।
1: वो फिर वही है कि गुस्सा मुझे नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा गुस्सा चाहिए, तो थोड़ा और ज्यादा की कोई मार्जिन ही नहीं है, अगर वो है तो है। तो अगर हम विश्वास नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, देयर इज नो सच थिंग एज, यू नो, एक आंख से डाउट करो और एक आंख से ट्रस्ट करो।
0: लास्ट टाइम, यू नो, इफ यू रिमेम्बर, वी हैड टेकन एन इशू वेयर एक जो एमएनसी में काम कर रहे थे और उनको अपने बॉस पे विश्वास नहीं था, उनको लगा था कि उनका विश्वास टूटा है। ऐसे अगर हम आज बात करें तो पति पत्नी के रिश्ते में, अभी तक ये कहा जाता था कि मेरी पत्नी बहुत डाउट करती है, यू नो, मुझे विश्वास ही नहीं होता मुझ पे कि, और पत्नियां मतलब एक वो मजाक का विषय, हमेशा एक जोक होता था कि मतलब मुझ पे विश्वास नहीं करती है, सारी कितनी कविताएं भी बनाई गई हैं इसके ऊपर। लेकिन आज सचमुच में पति हो या पत्नी हो फर्क नहीं रह गया है, विश्वास का जो एक इतना प्यारा मधुर रिश्ता था वो कहीं एक पूरा का पूरा डोर जो है ना वो टूट गई है। ये एक बात, इस पे मैं जानना चाहूंगी कि क्या हुआ है। दूसरा एक बात ये भी कही जाती है कि रहीमन धागा प्रेम का, कि अगर एक बार वो गांठ पड़ गई तो वो नहीं खुल सकती, ये
1: भी एक बिलीफ है।
0: हाँ
1: ये भी एक बिलीफ है कि एक बार अगर वो गांठ बंद गई तो फिर नहीं खुल सकती।
0: नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है।
1: और हम उस प्रोसेस में क्या कर देते हैं कि एक गांठ तो बंद गई, हम और इतनी सारी गांठें बांध देते हैं उसके अंदर। कितना सरल होता अगर हम उस एक गांठ को खोल देते, लेकिन हमने सोचा एक बार विश्वास टूटा, अब नहीं फिर हो सकता। Why?
0: क्यों नहीं हो सकता?
1: Why? Talk it out, sort it out, and it's back to normal. आखिर वो सामने वाला वही तो है इंसान जिसपे मैंने कितना विश्वास किया था। हो सकता है परिस्थिति कुछ और बनी, हो सकता है कुछ उसके मन में आया, कोई भी बात हो, लेकिन एक घटना से या एक परिस्थिति से हमारा वो विश्वास इतना कमजोर तो नहीं होना चाहिए ना कि वो बिल्कुल इतना इजीली टूट जाए।
0: और सबसे बड़ी बात है, हो सकता है मेरी तरफ से कुछ ऐसा रिस्पांस रहा हो,
1: राइट,
0: जब तक मैं बात नहीं करूंगा या करूंगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि हो सकता है मेरा कुछ ऐसा रिस्पांस।
1: एब्सोल्युटली, जिसने वो, और कभी कभी हो सकता है कि एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये मेरे अपने मन की परसेप्शन है। हम जैसा सोचते हैं कि दूसरा कर रहा होगा, हम बस उसको उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। आप देखिए, दुनिया में कहते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड ट्रस्ट एंड वेरी इजी टू ब्रेक इट। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ट्रस्ट, इट टेक्स अ सेकेंड टू ब्रेक इट। मतलब हम बहुत समय एक व्यक्ति को परखने के बाद उस पर विश्वास करते हैं।
0: I think we should reverse it.
1: Beautiful. That's exactly what it is. Yeah. It should be actually the opposite. It's not that it should be, but it's beautiful if it is.
0: Yeah.
1: It should be easy to trust and very difficult to break it.
0: Yes. You know, like,
1: आप easily trust कीजिए, करते जाइए, आपको in return trust मिलता ही जाएगा. It is a law of karma. ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो energy आप देते हैं वही energy आपको return में मिलती है। ये हो सकता है कि आई गिव यू समथिंग, मेरे को आपसे कुछ डिफरेंट मिले, लेकिन दैट्स बिकॉज देन आई हैव गिवन दैट टू समवन एल्स, यू नो। दैट्स व्हाई मैंने पहले भी आपसे जो शेयर किया कि सभी के साथ वो एक ही लेवल ऑफ वो रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 10 लोगों को बहुत

0: अच्छी वाइब्रेशन किसी को मिलती है तो अगर उसकी नेचर है भी धोखा देने की, वो आपको धोखा नहीं दे पाएगा.
1: That's a great trust actually. You also have, you know, on each individual.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: यहाँ एक ईमेल मैं लेना चाहती हूँ. हैदराबाद से हमें ये ईमेल आया है और राजीव मल्होत्रा ने मेल भेजा है. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मेल. ही सेज कि मेरे वाइफ और मेरी मैरिज को 5 years हो चुके हैं. वी गॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप. वी बीन मैरिड फॉर 5 years और उससे पहले का हमारा अफेयर भी था 3-4 साल का. मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो ऐसे ही वाइफ से शादी करना चाहता था, ऐसी लड़की से जो कि प्रोग्रेसिव है, जो अपनी नौकरी करती रहे और आगे ग्रो करे. और मैं ऐसा ही बना भी रहा, बनने की कोशिश भी करता रहा. लेकिन अब प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं आज तक अपनी वाइफ को भी नहीं कह पाया कि मैं अंदर से उसको लेके इनसिक्योर रहता हूँ. एंड कहीं ना कहीं कभी कभी मुझे लगता है कि वो लेट क्यों आती है, वो जहाँ पे होना चाहिए ऑफिस की पार्टी में भी क्यों चली जाती है. बट आई कांट टेल इट टू हर बिकॉज आई फील कि वो कहेगी कि आप बड़े ट्रेडिशनल हैं, कन्वेंशनल हैं, यू आर नॉट लाइक दिस. एंड उसमें क्या होता है, फिर मैं कोल्ड हो जाता हूँ. आई एम रियलाइजिंग माई ओन प्रॉब्लम बिकॉज देर इज नथिंग एल्स. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं ट्रस्ट उसको नहीं कर पा रहा हूँ बहुत ज्यादा. तो क्या मैं गलत हूँ, क्या मुझे उसको कह देना चाहिए? क्योंकि अगर मैं कहूंगा तो मुझे ये लगता है कि वो समझेगी नहीं, और दूसरी तरफ ये हमारे रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं कोल्ड हो गया हूँ.
0: वो तो नेचुरली रीजन नहीं सामने वाले को तुरंत पता चल जाए.
1: लेकिन ये दिस इज अ प्रॉब्लम आई थिंक विद टुडेज मेट्रोसेक्सुअल मेन. कि वो कहीं ना कहीं ग्रो तो करना चाह रहे हैं. जो आज औरत की आजादी है, दिस इज व्हाट आई फील अबाउट दैट शी हैज बिकम इंडिपेंडेंट. वो अपनी इंडिपेंडेंट, दे आर हैप्पी विद इट. उसके साथ कंधा कंधा देने की कोशिश कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन अपनी इनसिक्योरिटी वो क्यों नहीं शेयर कर पाते? दिस इज व्हाट आई फील.
0: ट्रू, बट दिस इज अ टिपिकल केस कि जहां एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है. कोई तो केस है कि जहां आपको एक्चुअली पता चल जाए कि योर वाइफ और योर हस्बैंड इज डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट अग्रीएबल विद यू, एंड तब आप मिसट्रस्ट करें. अब ये तो एक्चुअली सिर्फ अपना ही वहम है, कुछ भी नहीं है.
1: नहीं, लेकिन क्योंकि ये बात नहीं करते हैं. दैट्स व्हाट ही सेज कि मैं इतना मेजर डिप्रेशन में चला जाता हूँ, किसी से बात नहीं करता. और क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसे बात करूँ.
0: ट्रू,
1: लेकिन मैं ये जानते हुए भी कि मुझे विश्वास नहीं
0: करना चाहिए. इस पर्टिकुलर केस में इसका सोल्यूशन सिर्फ इनके पास है. इनकी वाइफ इनकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी क्योंकि एक्चुअली उसने कुछ किया नहीं है. यू नो, इट्स माई ओन सेल्फ क्रिएटेड assumption के हो सकता है, नहीं भी हो सकता, पता नहीं क्या है. तो अगर हम सामने वाले से जाकर बात भी कर ले और वो व्यक्ति कह भी दे कि जी ऐसा तो बिल्कुल कुछ नहीं है, इट वोंट मेक टू मच ऑफ अ डिफरेंस. क्योंकि उसे ये भी पता है कि एक्चुअली कुछ नहीं है. लेकिन क्योंकि एक एलिमेंट ऑफ डाउट ये जो अंदर बैठ गया है, इसका सोल्यूशन किसी और के पास नहीं है. उनकी वाइफ भी अगर वो बात भी करें तो इट विल अननेसेसरली आई थिंक ट्रिगर ऑफ अनदर एपिसोड. क्योंकि बहुत ज्यादा इस केस में रिजल्ट नहीं निकलेगा क्योंकि वाइफ की अश्योरेंस उनके डाउट को नहीं खत्म कर सकती है. क्योंकि उसके पास कुछ प्रूफ करने के लिए है ही नहीं. यू नो, शी नीड्स टू प्रूव इट नाउ. तो उनके पास प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं है. शी कैन ओनली से देयर इज नथिंग लाइक दैट. अब आपके पास चॉइस है, आप बिलीव करना चाहें तो आप कीजिए.
1: विद दिस केस तो आई थिंक अगर वो वाइफ नौकरी भी छोड़ देगी ना, तब भी इनको वापस नहीं आ पाएगा.
0: एंड एक्चुअली दैट्स नॉट द सॉल्यूशन. सी, जो आपने कहा अर्लियर केस में भी, जो वाइफ्स घर पे होती थी और हस्बैंड बाहर जाते थे, तब वाइफ हस्बैंड पे डाउट करती थी क्योंकि सारा दिन एक सोच है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, पता नहीं किन किन लोगों से मिलते हैं. नाउ वो चीज दोनों पर एप्लीकेबल है क्योंकि दोनों वर्किंग है, तो दोनों सोच रहे हैं पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं. इसका इलाज किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ मेरे अपने पास है. क्या रीजन है, मुझे अपने आप से पूछना पड़ेगा. व्हाट इज द रीजन दैट आई एम डाउटिंग द अदर पर्सन? क्यों? आई हैव टू गिव एन आंसर. एंड अगर आई एम नॉट एबल टू गिव माई सेल्फ एन आंसर, आप कितने भी दिन लगा दीजिए अपने साथ, बार बार अपने साथ पूछिए क्या रीजन है, सामने वाले ने ऐसी कौन सी चीज की है जिससे मेरे मन में ये क्वेश्चन उठा है. अगर आपको कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, आप उसको बात करके क्लैरिफाई कर लीजिए. लेकिन अगर आपको कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, देन पुट योरसेल्फ इन द अदर पर्सन्स प्लेस. कि अगर आपकी वाइफ आपके बारे में ऐसा सोच रही होती, आप कैसे कन्विंस करते?
1: कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते एक्चुअली.
0: और आपको अगर कन्विंस करना पड़ता, आप कैसे कन्विंस करते? सेम कन्विंशन अपने आप को दीजिए कि वाई. अगर मुझे कोई रीजन नहीं

0: मिल रहा है, उसने कुछ भी ऐसी एक भी एक्शन नहीं की है जिससे कुछ लगे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, व्हाई एम आई डाउटिंग, दैट्स माय नेगेटिविटी. मेरे अंदर ट्रस्ट की कमी है, सामने वाले की कोई गलती नहीं है. और ज्यादातर ऐसा होता है कि इफ ही टेल्स हिज वाइफ नाउ, द वाइफ हैज नथिंग टू प्रूव
1: एंड शी विल नॉट लाइक इट. यू नो दूरियां और बढ़ती जाएंगी
0: एंड यू नो एट अ पॉइंट पर्सन कैन से कि आपकी चॉइस है, आप ट्रस्ट करना चाहें करें, नहीं करना चाहें नहीं करें, आई एम दिस वे, यू नो. एंड अगर जितनी देर आप नहीं करते, आप खुद ही अंदर घुटते रहते हैं, घुटते रहते हैं. एक्सेप्ट कीजिए, और ये जो अभी डाउट का सीड जो ग्रो हो रहा है, इसको जितना जल्दी वो निकाल कर फिनिश कर देंगे, नहीं तो अगर कुछ नहीं भी था अब हो जाएगा.
1: यस, यू नो. एंड इनफैक्ट ये जो आज के व्यक्ति,
0: क्योंकि नॉर्मल जैसे उन्होंने कहा कि कोल्डनेस आ रही है, कोल्डनेस आ रही है मतलब आप दो लोग दूर हो रहे हो. जहां आप दो जने दूर होने लगे, वो वाइफ और लोगों से फ्रेंडशिप छोड़ेगी. वो कहेगी जी घर जाके क्या करना है, वही बातें, वही झगड़ा, मेरे से तो बात भी नहीं करते हैं. मतलब नथिंग एनीथिंग रॉन्ग, बट शी विल स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम इन द ऑफिस, शी विल स्टार्ट सोशलाइजिंग मोर, बिकॉज देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू व्हेन शी गोज होम.
1: अच्छा, इन फैक्ट सेम थिंग कैन हैपन टू हिम, यू नो, बिकॉज ही इज गोइंग इनटू हिज ओन शेल.
0: राइट,
1: समबडी कम्स
0: राइट
1: इन हिज लाइफ हु इज एबल टू ब्रेक दैट,
0: बिल्कुल
1: ही विल गो विद हर,
0: क्योंकि वो इमोशनली बेंड हो जाएंगे ना दूसरे की तरफ. तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो सीड को ग्रो होने नहीं दो एंड रियलाइज कि मेरी लाइफ का ये सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है.
1: बट आई थिंक फर्स्ट स्टेप ही हैज टेकन इज एट लीस्ट ही हैज एक्नॉलेज्ड एंड हैज रिटन.
0: एब्सोल्युटली, तो मोस्ट ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी डन.
1: यस, यू नो, बिकॉज़ इट मींस द मोमेंट यू एक्नॉलेज इट देयर इज समथिंग रॉन्ग, इट मींस यू गो ऑन द.
0: और उनको खुद ही रियलाइजेशन, ये जो मेल से लग रहा है कि उनको ऑलरेडी रियलाइजेशन है कि ये कुछ भी नहीं है, ये मेरा वहम है. तो अपने आप से बात करनी पड़ेगी कि ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें आधारित है, मेरा जीवन आधारित है. क्या मैं अपने वहम की वजह से इसको सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूँ, अपनी खुशी को पूरा त्याग करने के लिए रेडी हूँ? और फिर भी अगर चाहिए, फिर भी अगर कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा, देन गो एंड टॉक, गो एंड टॉक टू हर. एंड अगर आप एक पॉजिटिव इंटेंशन से ना, अगेन यू आर द इंटेंशन, यू नो, एक है कि मैं आपसे आकर बात करूं, ऐसा कुछ है, आप क्या करते हो, आप लेट क्यों आते हो, क्या जरूरत है पार्टी में जाने की, अटैकिंग मोड, यू नो, आप दूसरे को अटैक कर रहे हो, आप दूसरे को ये बताने की कोशिश कर रहे हो, आई एम चेकिंग यू, यू नो, यू आर रॉन्ग. द अदर पॉजिटिव इंटेंशन विल बी, यू नो, आई नो यू आर नाइस, आई नो देर इज नथिंग रॉन्ग, मुझे पता है कि आप बिल्कुल मतलब कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, बट पता नहीं मेरी अपनी क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही है, कैन यू हेल्प मी, द होल attitude will change. And the wife will want to help the husband.
1: No, in fact, and I think he's one of the nice men.
0: Yeah,
1: you know,
0: bilkul. Like, because, but wo jo conversation karne se pehle intention ko theek kar le. If he's understood ki problem wahan nahi, problem yahan hai, he will have to accept that in front of the wife. Ki you're absolutely fine. But you know,
1: problem.
0: You're my partner. And mujhe ye thodi si takleef hai. And I think the only person who can help me right now is you. You're my friend. तो बाहर किसी और फ्रेंड से मैं जाके बात करूँ, इससे अच्छा बिफोर माई वाइफ यूर माई फ्रेंड. यू नो, एक फ्रेंडशिप का जो रिलेशनशिप अगर पार्टनर्स में ये डेवलप हो जाए, यू डोंट नीड अनदर फ्रेंड.
1: डेफिनेटली. एंड द वे,
0: एंड एक्चुअली हस्बैंड वाइफ के बीच में आई डोंट थिंक दे नीड अनदर फ्रेंड. योर पार्टनर शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड बिफोर being your life partner, he should be your best friend.
1: Yes, and in fact, ये कहा भी गया है पहले भी, you know, कि पति पत्नी के बीच में कोई नहीं आ सकता कभी भी, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं.
0: Absolutely, लेकिन जहाँ हम अपनी मन की बात या अपने घर की बात फिर अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें लगता है कि हमें किसी और से करनी पड़ेगी, एंड पता नहीं फिर दूसरा जना क्या राय दे उसके लिए, एंड maybe the whole thing will go absolutely
1: astray. In fact, yahan to Shivani, ek hamare paas ye case tha jahan kuch bhi nahi tha,
0: kuch bhi nahi tha,
1: aur uske bawajood mistrust thi jo inhi ko apne ek shell mein lekar ja rahi hai.
0: Right.
1: Ek aur hame ek bacche ne call kiya. That's again amazing, you know, 11th class ka wo student hai, I don't want to take his name, bahut acche school mein Delhi mein pad raha hai. He says that when I was in 9th, एक बुरी आदतों में पड़ गया था, मतलब क्योंकि मेरी मम्मी शी इज अ यू नो समवेयर अ वाइस प्रेसिडेंट है, विदेशों में बहुत जाती है. मेरे फादर इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, आईटी सेक्टर में है. आई हैव गॉट अ यंगर ब्रदर ऑल्सो, तो वी बोथ यूज टू बी अलोन विद द मेट. तो मेरी कंपनी ऐसी हो गई थी कि मैंने यू नो ड्रिंक्स की तरफ चला गया था, स्मोकिंग की तरफ चला गया था, एंड आई वॉज इन टू यू नो लाइक ऑल दोज नेगेटिविटी. तो समवेयर मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई से खत्म हो गया था. तो जब तक मम्मी को एहसास हुआ इस बात का, तब तक मैं काफी डीप में जा चुका था, बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेक्टिंग विद माई मदर, बट स्टिल शी इज माई बेस्ट फ्रेंड. ही वॉज वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स हिज मदर, यू नो. One thing I really liked about when he called up was that he was very positive towards his parents. ये तो usually क्या होता है कि बच्चे negative हो चुके होते हैं. But he said that I was in the negative thing, but I was hiding. I was into girls and everything. So when my mother came to know about it, she talked to me and she tried. तब तक 10th के boards आ गए थे, ये हो गया था, और मेरे boards में exam result बहुत अच्छा नहीं आया. अब मेरी माँ के साथ बातचीत के बाद एंड यू नो मैंने खुद भी रियलाइज किया कि कहीं मेरा रिजल्ट ही इतना खराब आ गया तो मेरी जिंदगी आगे कहाँ जाएगी. एंड आई एम सपोज टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, दिस इज व्हाट ही सेड. अब मैं अच्छा बन गया हूँ, लेकिन मेरी माँ को अभी भी विश्वास नहीं है. अब मेरे को, मुझे फ्रस्ट्रेशन शुरू हुई है. कहते हैं मेरे को उस पूरे दौर में मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज माई मॉम हेल्प मी आउट. लेकिन नाउ व्हेन आई एम बिकमिंग गुड, आई एम ट्राइंग टू डू थिंग्स राइट, you know, whatever is said right. True. I don't believe in it ki right hai ya wrong hai, lekin because my mom says ki aap raat ke 11 baje tak nahi bahar rahiye, to main maan leta hu, chaliye drinks aur booze aur ye sab kuch bhi nahi kar raha hu, apne doston ko bhi badla hai maine, but my mother doesn't you know believe in me. ab us trust ko main kaise pa sakta hu, aur main frustrated hone lag gaya hu. aur phir mujhe lagta hai ki phir agar yahi hai to phir main wahi
0: cheez dekh raha hu.
1: this is a major jab tak wo problem mein tha,
0: right,
1: तब उसने हमें यू नो ऐसी कोई काउंसलिंग की उसे जरूरत नहीं.
0: वो इट्स अ टिपिकल केस ना कि ट्रस्ट टूट गया. ये वो टिपिकल केस है ना जो हम कहेंगे कि टूट गया, अब इसको जुड़ने में
1: वही बहुत टाइम लगा, प्रेम का वो गांठ बस वो पड़ गई,
0: अब वो गांठ बनती जा रही है.
1: तो समवेयर आई थिंक मदर नीड्स टू बी
0: एक्चुअली अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी ये जो ट्रस्ट फैक्टर है आज वो थोड़ा सा, मतलब रिसेंटली हमने सुना कि आजकल डिटेक्टिव्स को पेरेंट्स एम्प्लॉय कर रहे हैं या हायर कर रहे हैं कि वो डिटेक्टिव उनके बच्चे के पीछे सारा दिन घूमते हैं. क्योंकि और फिर रात को एक फोन कॉल करके एक पूरी रिपोर्ट मिलती है, आपका बेटा या बेटी यहाँ गए, इनसे मिले, ये किया वो किया, इतनी देर इनके साथ स्पेंड किया, व्हाटएवर द चाइल्ड्स entire day routine,
1: my
0: the detective
1: God.
0: is supposed to come and tell the parents. Of course, it's still in the very higher class families who can afford to hire these services, but the fact
1: no, but
0: is
1: the
0: trend has begun.
1: paisa kitna kama bhi to rahe hain,
0: right,
1: you know, middle class has actually grown.
0: true, lekin wo kamane ke process mein wo bonding nahi hui, to us paise ko is tarah se use karna pad raha. to एक बच्चे से हम डायरेक्टली नहीं पूछ पा रहे कि आपका आज का सारा दिन कैसा रहा, और अगर वो बता भी देता है तो हम सोचते हैं पता नहीं सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, और उसके लिए हम एक थर्ड पर्सन को यूज कर रहे हैं जो सारा दिन, मतलब दिस इज वेरी सैड बिकॉज इट शोज के वेयर वी आर हेडिंग, यू नो, क्योंकि अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से ज्यादा ब्यूटीफुल
1: एंड प्योर कोई नहीं,
0: कोई और रिलेशनशिप.
1: माँ बेटे का रिलेशनशिप तो, एंड लाइक आई वाज रियली टच्ड बिकॉज़ ही वाज वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स हिज मदर, सो ही इज सो हर्ट नाउ,
0: राइट, बट नाउ व्हाट ही विल हैव टू डू इज कि ही विल हैव टू अंडरस्टैंड ना थोड़ा सा आपको अपने, क्योंकि अगेन द थिंग इज कि हम मदर को नहीं चेंज कर सकते, यू नो, अगर हम उनसे बात कर रहे हैं, ही हैज टू अंडरस्टैंड ही कांट चेंज हिज मदर, ही कांट गो एंड टेल हर यू नो स्टार्ट ट्रस्टिंग मी. ट्रस्ट डिमांड करने से नहीं मिलेगा, आप किसी को बोलो मुझे ट्रस्ट करो ये नहीं होने वाला है. दूसरे की चॉइस है, मेरी चॉइस है कि मुझे उन्हें ट्रस्ट करना है, सो आई एम ट्रस्टिंग. उन्होंने मुझे कहा है लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन कंडक्ट, अब ये मेरी चॉइस है कि मैंने उसको एक्सेप्ट किया है. द थिंग इज कि जब हम कुछ करना शुरू करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट वी चोज इट, यू नो, लेट्स नॉट ट्राई एंड टेल अदर पीपल हम आपकी वजह से कर रहे हैं, बिकॉज वी नॉट रियली, वी नॉट, हम कभी भी किसी और की वजह से नहीं कर रहे होते हैं. भले अगर मैं ये भी आपको कहूं कि मैं आपके लिए कर रही हूं, लेकिन फिर भी ये मैंने चूज किया ना आपके लिए करना, आपने फोर्सफुली जब तक मेरे से आप नहीं करवाते, और कोई भी किसी से कुछ फोर्सफुली तो करा ही नहीं सकता. तो ये सारा दिन दूसरों पर जताना कि हम आपके लिए कर रहे हैं, इट्स नॉट ट्रू. हम भले इंस्ट्रूमेंट हुआ है लेकिन हम फिर भी अपने लिए कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है उनके लिए ये करना,
1: अपनी वजह से कर रहे हैं.
0: दैट्स व्हाट आई हैव टू अंडरस्टैंड. तो जब मुझे ये समझ में आ जाएगा दिस इज माई चॉइस, नाउ आई लाइक टू लिव दैट वे, यू नो, अगर वो सोचेगा कि वो रात को 11 बजे अपनी मम्मी की वजह से आ रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू लाइक द आइडिया. यू नो, वो अंदर ही अंदर फिर ये चॉइस रहेगी कि मैं माइट एज वेल फिर 1 बजे आऊं. That's not the solution. आप खुद choose कीजिए. अगर आपको लगता है कि ये करके you are giving something to your mother, you know, you're making her happy or whatever, so you choose. अगर आपने choose कर लिया, it's your decision. अपने decision को regret नहीं कीजिए. ये आपका decision है. ये नहीं फिर expect कीजिए कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो I'll go back to the other choice. ये तो मतलब ये तो unnecessarily अंदर frustration है.
1: लेकिन वो फिर उसको क्या करना चाहिए?
0: You have chosen to come back at 11. You have chosen not to drink or smoke or whatever, for whatever reason, even if it's your mother. Lekin choice aapki hai. Ab aapki mummy, in return, aapko abhi trust kare ya nahi kare. Give her some time. After all, humne kuch ek choti moti galtiyan ki bhi to hai na. Unka mistrust without reason nahi hai abhi. Lekin hum unke liye kuch karna chahte hain agar, to just go on doing it unconditionally. That's very important. It's not ki do din mein you should expect ke samne wala change ho jaye. Give the other person time. Aur aapko jo achha lag raha hai, aap wo kijiye. Agar aapko achha lag raha hai nahin drink karna, tab aap kijiye. Aur agar aap wo soch kar karenge, to aapke paas ye option nahin hai, ki agar unhone trust nahin kiya, to might as well मैं ड्रिंक करना शुरू कर दूं. ये तो कोई सोल्यूशन ही नहीं हुआ. तो आप अपनी चॉइस से कीजिए एंड you know, remain in that positive state ke I'm doing this for myself, it's good for me, and continue doing it and wait for her to change.
1: And she will change.
0: She will.
1: The way we said unconditional trust, you know, unconditional love.
0: Absolutely.
1: These are the aspects which कंडीशन की वो ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा. हाँ. तो मैं उतना प्यार कर सकता हूँ.
0: right.
1: तो अगर वो मुझ पे विश्वास वापस कर लेता
0: करेंगे
1: मैं
0: तो
1: कर
0: मैं करूँ तो नहीं.
1: yeah.
0: हम करें तब वो विश्वास ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. अभी हमारे रिलेशनशिप्स हमेशा इस चीज पर बेस्ड हैं कि अगर मैं रिसीव कुछ करूंगा तो मैं गिव करूंगा. मुझे आपसे प्यार मिलेगा तो मैं आपको प्यार दूंगा. आप मुझे रिस्पेक्ट करेंगी तो मैं आपको रिस्पेक्ट करूंगी. कीप ऑन वेटिंग. कीप ऑन वेटिंग. इट इज नेवर
1: एंडिंग.
0: द सिंपलेस्ट थिंग इज आप देते जाइए विदाउट एक्सपेक्टिंग लेने का. आप देते जाइए, लॉ ऑफ नेचर आपको वापस मिलेगा.
1: ब्यूटीफुल.
0: आप रिस्पेक्ट देते जाइए
1: एंड
0: देते जाइए.
1: एंड ऑलवेज रिमेम्बर दैट ये दे हम अपने कारण रहे.
0: एंड ये भी याद रखें कि मैं रिस्पेक्ट अपने लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उन्हें रिस्पेक्ट करना, मैं कर रहा हूँ. नॉट दैट मैंने तो दिया लेकिन उन्होंने तो नहीं किया, तो आप मत कीजिए. फिर आप उनसे लेने के लिए रिटर्न में कर रहे थे? नहीं, आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है उनसे रिस्पेक्ट करना. ये जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है अपनी हर थॉट की और फीलिंग की, दिस कैन मेक माई लाइफ वेरी सिंपल एंड इट कैन मेक माई लाइफ विदाउट एक्सपेक्टेशंस.
1: ब्यूटीफुल. एंड इनफैक्ट द वे वी यू नो, ये सारी जो गलत मान्यताएं हैं कि मैं ये कर रहा हूँ ताकि वो ऐसा करें, या मैं ऐसा इसलिए कर रहा ताकि उन्होंने कहा है.
0: right.
1: ये कंसेप्ट एक्चुअली बहुत क्लियर हो जाना चाहिए.
0: अपनी सोच और अपने बिहेवियर को चूज करके चलिए. इसलिए नहीं चले उन्होंने ऐसा किया तो मैंने बदल दिया, वो ऐसा करेंगे तो मैं बदल जाऊंगा. नहीं, माय बिहेवियर शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर पर्सन्स बिहेवियर. दिस इज मी, दिस इज माय बिहेवियर. यू कैन बी व्हाट यू वांट बट आई विल बी व्हाट आई वांट.
1: एंड दिस इज द वे आई बिकम द मास्टर ऑफ माय डेस्टिनी.
0: एंड आई एम अ मास्टर ऑफ माय ओन सेल्फ
1: फर्स्ट, यू नो,
0: दैट इज व्हाट इट इज.
1: सो बहुत बहुत शुक्रिया. आज हमने एक्चुअली दो ऐसे रियल लाइफ केसेस लिए जो एक जहां हमने ये देखा कि कुछ है ही नहीं तब भी मिसट्रस्ट है, और जहां एक ट्रस्ट टूटी तो अब वो जो हैंकरिंग है कि मेरी वो ट्रस्ट वापस लौटे तो उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा. थैंक यू सो मच शिवानी. जी हाँ, हमें बहुत कुछ ऐसा पता चल रहा है जिन पर हम अभी तक बिलीव करते आ रहे थे, जिन्हें मान रहे थे कि यही सही है, वो मिथ्स टूटते जा रहे हैं. इसी से हमारा पॉजिटिव जो एटीट्यूड है, पॉजिटिव थॉट्स का जनरेशन होगा. लेकिन उसे किस तरह से प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट करना है, कंटिन्यूस अपने आप को याद दिलाते रहना है, क्या छोटे छोटे वो तरीके हैं जो जिंदगी में अपना सकते हैं, यही रहेगा हमारा मुद्दा अगली कड़ी का. तो आप भी हमारे साथ बने रहिए. अगर आपके पास भी कोई ऐसी बात है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, किसी सवाल का जवाब तलाशना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं. फोन कीजिए 9873666555 पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो इसी के साथ वक्त है कि आज आपसे विदा लें, लेकिन इस दुआ के साथ और इस वादे के साथ कि जिन मूल्यों पर, जिन पॉजिटिव थॉट्स पर हम आज तक बात करते आ रहे हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और मैं अपना मास्टर, अपना मालिक खुद बनूंगा। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore cells in the brain into 10,000. This is the human network. So many switches connected to so many switches. अब जब इतने switches से connected होते हैं, तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore cells connected to 10,000 cells, each cell connected to 10,000 cells in the body, and हर thought जो हम create कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: दोस्तों, वो जीवन ही क्या जिस जीवन में थोड़ा मनोरंजन ना हो, थोड़ा रोमांच ना हो, थोड़ा एडवेंचर ना हो। कई लोग इस एडवेंचर से बड़ा डरते हैं दोस्तों। कई लोग कहते हैं जीवन एकदम समरूप से चलता रहे, आसान जीवन हो, कोई उतार चढ़ाव ही ना हो जीवन में, तो ही हमारा जीवन बड़ा अच्छा है। लेकिन आपको और मुझे, हम सबको ये पता है दोस्तों, जब हम फिसल पट्टी में खेलते थे बचपन में, या जब हम कभी किसी इस प्रकार के गेम में इन्वॉल्व होते थे, खेल में जहां पर लुका छुपी का खेल होता था, जहां पर एक कौतूहल बना रहता था, एक एडवेंचर, एक रोमांच बना रहता था, वो जीवन हमें बड़ा ही अच्छा लगता था। वो गेम खेलने में आपको जरूर मजा नहीं आएगा जिस गेम का आपको पहले से परिणाम पता है। वो गेम, वो खेल आपको जरा ज्यादा रोमांचित करेगा जिसका आपको परिणाम नहीं पता, लेकिन जिसमें उम्मीद जरूर है कि इसका परिणाम तो अच्छा होगा ही। जीवन का ये मूल मंत्र हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। 107.8 FM रेडियो मधुबन पे मैं आरजे शांतनु आपके बीच में यशस्वी भारत कार्यक्रम लेकर के आया हूँ एक बार फिर से। और हमारे साथ, हमारे बीच में आज एक बहुत खास मेहमान है दोस्तों, जिनके जीवन में ये उतार चढ़ाव इतना ज्यादा रहा है कि जैसे कि कोई बॉलीवुड का फिल्म बन सकता है। लेकिन ये हस्ती किसी फिल्म की नहीं, ये मेरे और आपके जैसी एक हस्ती है जो एक साधारण जीवन को ये व्यतीत करते हुए आज पूरे देश भर के सैकड़ों किसानों को एक अच्छा सुगम जीवन प्रदान करने में, एक व्यवस्थित उपजाऊ जीवन प्रदान करने में बहुत बड़ा भूमिका निभा रहे हैं। आज हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो में दोस्तों हमारे साथ हैं श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी जी, जो कि वाराणसी के तांडिया गांव से हैं। और प्रकाश सिंह जी को केवल एक नहीं, दो नहीं, कई भारत के राष्ट्रपतियों ने अनेकों सम्मान दिया हुआ है। आइए हम बातचीत करते हैं प्रकाश सिंह रघुवंशी जी के साथ। प्रकाश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
4: जी नमस्कार।
3: तो प्रकाश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे श्रोता साथियों के साथ समय बिताने के लिए आपने हमें समय दिया, इसका आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज का आपको हम इसलिए धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि आपने कई करिश्मे किए हैं, कई कुदरती करिश्मे किए हैं, और आपका जीवन अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है। तो आज आप अपने जीवन के कुछ कहानियों को हमारे साथ साझा करेंगे, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करना चाहेंगे हम आपके जीवन से, आपके जीवन की कहानी आपकी जुबानी।
4: जी, मेरे जीवन की कहानी यह है कि हमारे पिताजी प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे और बहुत छोटी सी तनख्वाह थी उनकी और 4-5 एकड़ जमीन थी पिताजी के पास, और लेकिन वो बहुत मेहनती थे। सन 1964 में नरमा रोजो करके गेहूं आया था विदेश से हमारे देश में लगाने के लिए। वो आया, उसको लगाए, उत्पादन तो अच्छा हुआ लेकिन इतना कड़ा था कि पहले जाता ही होता था तो पीसने में आटा जो जाता होता था वो जो है बहुत बोला। तो उस समय से हमारे पिताजी 1964 से ही एक नई हरित क्रांति जो हमारे देश में आया था तभी से शुरू किए। फिर 1968 में वो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर गए थे, वहाँ भी कुछ नए बीज विकसित हुए थे, वहां से कुछ बीज लाए लगाए, तो हमारे पिताजी का काम देख करके गांव के क्षेत्र के लोग प्रभावित हुए। तो फिर पूछा कहीं भी उन्नत किस्म के बीजों के खोज में पिताजी टूर भी करते थे और वहां से कुछ न कुछ लाते थे, लगाते थे। हम भी उस समय कक्षा चौथी और पांचवी क्लास में थे, 1964 में हमको याद आ रहा है। फिर बाद में जो है किसान के घर में था तो इसलिए खेती किसानी में रुचि थी और हम लोग तालाब के खेत की मिट्टी पिताजी जो है जंगल में तरसले में लाद के कपार पर रख देते थे, हम लोग ले जा करके खेतों में फेंकते थे। पुराने कच्चे मकान के जो नोना लग जाता था उस नोना को हम लोग इकट्ठा कर करके खेत में ले जा करके छींटते थे। तो कहने में जो पुरानी पद्धति पुरानी परंपरा थी वो सब आज भी मेरे अंदर याद है और वो बहुत बड़ा रोजों का परंपरागत जो ज्ञान विज्ञान था आज के वैज्ञानिक जो कर रहे हैं उससे बढ़ करके था। फिर 1977 में हमें बुखार आया तो डॉक्टर ने पेंसिलिन इंजेक्शन लगा दिया, रिएक्शन कर गया, पूरी शरीर में छाले पड़ गए, सड़ता गया, दोनों हाथ का पैर का नाखून सब झड़ गया, मैं किसी काम का नहीं। सातवीं या आठवीं क्लास में था तो मैं पढ़ाई छोड़ दिया। 3 साल के बाद हमारे पिताजी प्राइवेट परीक्षा दिलवाए हाई स्कूल का, उसमें 2 पेपर तो मैं लिख लिया अच्छा लेकिन 3 पेपर मैं कर ही नहीं पाया, तो हाथ को उठा करके ऐसे ऐसे लिख रहा था, नहीं लिख पाया। तो फिर पिताजी कह जाने दो जो है छोड़ पढ़ाई। तो 2-3 साल 4 साल तक हम घर के अंदर अंधेरे में रहते थे, धूप में निकलते थे तो वहां चमक जाती थी। तो फिर काला चश्मा या रंगीन टोपी या सफेद टोपी लगा करके आंख ऐसे मूंद करके ऐसे ऐसे चल करके, या लेकिन मेरे अंदर कुछ करने की तमन्ना जाग रही थी। तो 77 से ही कुछ करने की तमन्ना जाग रही थी लेकिन 80-81 के आसपास जो है मैं कुछ शुरू किया खेतों में काम करना। करते करते जो है फिर सब बचपन में शादी हो गई थी, 6 बच्चे हो गए, 3 बेटा 3 बेटी, और परिवार से अलग हो गए, खर्च करने के लिए एक पैसा नहीं। कोई हमारे 5-6 साले थे, 5-6 सालियां थी, हमारे ससुर को 12-14 बच्चे थे, तो सबकी शादी उदी पड़ती थी तो उनके यहाँ जाने के लिए बच्चों को कपड़ा बनाइए, अपने कपड़ा लीजिए, न्योता आकारी के लिए कुछ जुटाइए ले जाइए, तो बहुत दयनीय दशा था मेरा। तो कभी पत्नी के पैर का पायल, कभी कान की बाली गिरो रखना, अंगूठी गिरो रखना, ब्याज देना, फिर छोड़ाना, कुछ डूब जाना, फिर गाय रखे, भैंस रखे, चारा पारा काटना, बच्चों को लेकर के फिर दूध बेच करके जीविका पार्जन किसी तरह से करना। लेकिन मेरे मन में था कि कुछ करूंगा। ऐसे करते करते सन 87-88 में मैं पहुंचा इलाहाबाद प्रचार प्रसार करने बीच का। फिर मैं बहुत व्यग्र था, कभी शमशान घाट पर 12 बजे 1 बजे रात जा करके बैठ जाता था कि कोई भूत प्रेत मिल जाए पकड़ ले मैं मर जाऊं, या गंगा में कूद जाऊं, नाना प्रकार का द्वंद्व मन में आता रहता था। फिर एक दिन जो है शाम को 8-9 बज रहा था, मैं एक हनुमान जी के मंदिर पर बैठा था दारागंज इलाहाबाद में, तो सब लोग चले गए तो बूढ़े बाबा है कहे कि जो है आप यहाँ क्यों बैठे हो, सब लोग तो गए। तो मैं अवाक रह गया, देखा तो कोई नहीं, बताए बाबा ऐसी ऐसी बात है, मेरा मन नहीं लग रहा। वो कहे काम करो इलाहाबाद मुठ्ठीगंज में चौराहे पर जाओ, वहाँ ईश्वरी प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारी आश्रम लिखा होगा, वहाँ एक मनोरमा दीदी है, मेरा नाम बताना तो वहाँ तुमको जीने की राह मिलेगी। तो मैं गया वहाँ, तो गया तो करीब 30-35 लोग दुआने और 2-4-10 भाई बैठे थे, कोई बोली नहीं रहा था, तो मैं भी उसी में जाकर के बैठ गया। विकट चेहरा मेरा, आंख लाल लाल, दाढ़ी मूछ बार उड़ सब बढ़ा उड़ा था, एकदम खतरनाक चेहरा लग रहा था मेरा। मैं जाकर के बैठा, 4 घंटा में बैठा रह गया। इसके बाद सबकी नजर हमारे ऊपर पड़ी, तो मनोरमा दीदी हमसे पूछी कि भाई कौन हो, कहाँ से आए हो? तो मैं बताया, दीदी हमको एक अश्विनी पांडे जी हैं, दारागंज के, वहीं भेजे हैं आपके यहाँ, तो कोई बात नहीं। फिर वो हमको प्रसाद वगैरह दी, मैं खाया, खाने के बाद जो है मैं आपको डीटी बताया, फिर टेंटल से आओ। तो मैं गया, तो बेसिक कोर्स किया वहाँ। बेसिक कोर्स करते करते मेरे मन के अंदर जितने दुख और डर भय था और जो नकारात्मक आए दिमाग में, वो सब छूट गया। कुछ करने की तमन्ना जागने लगी, कुछ खुशहालियां ले। फिर आए बच्चों में, परिवार में, दोस्तों में, बोलो कह यार श्री प्रकाश सिंह आप तो बहुत बदले बदले से लग रहे हो। हम कहे हमको अनमोल रत्न मिल गया है, बाबा का जो है मैं ध्यान करता हूँ, बेसिक कोर्स करता हूँ और जो है मन में कुछ अच्छा। पहले मैं तंबाकू बहुत खाता था, ड्रिंक लेता था और गंदी गंदी अपशब्द भी मुख से निकलते रहते थे, तो वो धीरे धीरे सब बदल गया। फिर मन में आया कि मैं भी अब देश के लिए कुछ करूंगा करूंगा। तो ऐसे ऐसे में 1995 में हमको गेहूं के फसल में एक गेहूं का अद्भुत पौधा मिला, जिसकी डाल की लंबाई 9-10 इंच थी, मोटे तने का था, चौड़ा पत्ता था, सब कुछ। तो एक आश्चर्यजनक चीज लग रहा था। मैं पिताजी से बताया तो पिताजी कहे कि ऐसे होता रहता है, प्राकृतिक नौ परिवर्तन होता रहता है फसल समूहों में। वो भी गए देखे तो बड़ा अच्छा लगा उनको। तो जो वैरायटी लगी थी वो तो जल्दी तैयार हो गया, वो 10 दिन लेट था। तो उसको हम चारपाई वगैरह ले जा करके रस्सी उस्सी से आड़ किए कि कोई चोरी न कर ले या कोई जानवर नुकसान न दे। रात को मैं एक चारपाई लगा करके या जमीन पर ही बिछा करके सो करके रखवाली करता था उसका। जब फसल तैयार हो गया तो उसको काट के लाया, फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुछ वैज्ञानिकों को दिखाया और तमाम लोगों को दिखाया, कहे बहुत अच्छी चीज है। फिर बहुत लोग लगे मांगने हमसे, तो हम कहे नहीं नहीं हम किसी को नहीं देंगे, हम लगाएंगे। फिर उसको दूसरे साल लगाए। तो वही 1995 से लेकर के 1998-99 तक हमारे पास वो वैरायटी ज्यादा हो गया। तो 25 ग्राम 50 ग्राम का पैकेट बना बना करके पुड़िया घूम घूम करके साइकिल से पैदल या इधर उधर जा जा करके फिर सैंपल लगे बांटने। बांटते बांटते फिर 2003 में मैं चला गया पूना महाराष्ट्र। वहां जो है लगभग 5-6 हजार पैकेट बनाया था 25 ग्राम 50 ग्राम का, वहां किसानों को फ्री में मैं बांटा। ऐसे ऐसे मैं फ्री में बांटा बाबा का प्रसाद बना करके। ये जो है हमको ईश्वरी कृपा से मिली है, हमें खुशी मिल रही है, हमारे देश के किसानों को भी खुशी मिले और लोगों को बताता था कि आप ऐसे ऐसे लगाइए। फिर नाम हो गया, शोहरत हो गया। फिर जो है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद में है, डॉक्टर अनिल गुप्ता IIM के प्रोफेसर है, तो वो जो है हमारे बारे में पता लगा, तो उनकी टीम आई, वो आए हमारा इंटरव्यू लिए, हमारे बीजों को लिए, ले जा करके जगह जगह लगवाए। फिर 2007 में हमको APJ अब्दुल कलाम से मुलाकात कराया गया, 10,000 का सांत्वना पुरस्कार सम्मान मिला। फिर 2009 में प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति से 1,00,000 रुपए का प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो जब हमको इतना मिलने लगा तो मैं कहा नहीं, मैं छोटा काम किया इतना बड़ा उपलब्धि। फिर इसके बाद जो है और कुछ करने की तमन्ना जागने लगी। ऐसे ऐसे जब भी राष्ट्रपति भवन में कोई कार्यक्रम लगता था तो हमको वहां बुलाया जाता था। तो 3 बार प्रतिभा पाटिल जी से मुलाकात हुई, 3 बार जो है कलाम साहब से मुलाकात हुई। फिर 2013 में प्रणब मुखर्जी जी से हमको सम्मान मिला, लखनऊ में हुआ है, प्रदर्शनी देखे थे। फिर 2018 में 5 दिन में राष्ट्रपति भवन में मेहमान था, पूरे भारत से 9 लोग चुने गए थे। तो 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमको मिला 7.5 लाख रुपए का, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से भी मिला सम्मान पुरस्कार, नवीन पटनायक निशा, ऐसे ऐसे कई मुख्यमंत्री से सबसे सम्मान मिला, पुरस्कार मिला। जो भी फंड हमको मिलता गया उसका मैं बीज खरीद करके सोपकार में लगाया, फ्री में बीज दान करते चला गया, तो करते करते सब कुछ ठीक है, मान सम्मान मिल गया जी।
3: प्रकाश जी, यहाँ पर मुझे आपसे आपको रोक कर एक सवाल पूछने का मन करता है कि आपने तो इन सब चीजों की उम्मीद ही छोड़ दी थी, है ना? आपको लगा कि बस जीवन को कैसे भी आपको खत्म करना है, लेकिन ऐसा एक ईश्वरीय और एक प्राकृतिक चमत्कार आपके साथ हुआ जिसके तहत आपके जीवन की दिशा ही बदल गई। तो क्या आप इसको संपूर्णतः ऐसा मानते हैं कि ये केवल ईश्वरीय कृपा है या इसमें आपका भाग्य का भी कोई किरदार है? क्योंकि बगैर भाग्य के तो हमारे पास कुछ भी नहीं आता। तो मैं समझता हूँ ये आपके भाग्य में ही था कि कहाँ आप केवल एक प्रकाश सिंह रघुवंशी थे और कहाँ आज पूरा देश आपको किसान बाबा के नाम से जानता है। तो ये आपके भाग्य का भी खेल रहा होगा। तो आपको क्या लगता है कि जो शुरुआती दौर में जो आपको परीक्षाएं आई और जो बाद में जो अभी आपको ये उच्चतम या उन्नत परिणाम मिल रहे हैं, क्या हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा जो परीक्षा आता है उस समय उसे कौन सा धैर्य, उसे क्या सोचना चाहिए?
4: देखिए, बहनों ने हमको समझाया, भाइयों ने समझाया और संत महात्मा तमाम, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी भी हमें कई बार बुलाए और मैं उनके यहाँ भी गया, मान सम्मान पाया, गुरु जी साथ में मंच पर बैठाए, मेरे बारे में लोगों से बताए, बाबा रामदेव जी भी हमारा मीटिंग लिए, दो तीन दिन के लिए मेहमान बनाए थे, मेरे बारे में बीच के बारे में बोले, और तमाम संतों के यहाँ मैं गया। तो कुल मिला जुला करके शुरू शुरू में जो ये मनोरमा दीदी ने हमको बताया कि जो चार पांच नियम रहा, प्रत्येक पवित्रता लाइए मन में, योग कीजिए, बाबा का ध्यान कीजिए, तो भाग्य तो है, लेकिन बिना पवित्रता लाए, बिना कर्म किए, बिना जो है ईश्वरी कृपा के भाग्य भी नहीं बन सकता है, हमारा ये जहां तक का अंदाज है। तो मैं इस तरह से अपने मन में पवित्रता लाया, कार्य में मेहनत भी किया, तो भाग्य बदला, लेकिन ईश्वर की कृपा होने के बाद। जयंती दीदी, प्रकाश मणि दीदी, ये लोग भी इलाहाबाद में आई थी, हमारा अंदाज है 1990-92 के ही आसपास, हमको जहां तक याद आ रहा है, उस कार्यक्रम में भी मैं था इलाहाबाद में। तो जब तक मेरे मन में पवित्रता नहीं आया,
3: इसका मतलब जो ये आपने कहा कि भाग्य भी तभी बनता है जब व्यक्ति उसके प्रति पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है। जैसे मेहनत में आपने कहा कि मन में शुद्धि लाना और लोगों के लिए शुभ विचार रखना, साथ ही साथ अपना जो मेहनत है उसमें नहीं पीछे हटना है हमको, ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन प्रकाश जी, जैसे कई आज के युवा वर्ग में भी ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जिनके जीवन में एक छोटा सा अगर परीक्षा आता है तो वो तुरंत ही अपना हौसला खो देते हैं और या तो कुछ कर देते हैं अपने साथ या अपने को कुछ नुकसान पहुंचा देते हैं या कोई बहुत बड़ा एक ऐसा कदम उठा लेते हैं, व्यसन आदि का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो जीवन का उतार चढ़ाव है, ये तो जैसे मैं और आप समझ रहे हैं कि ये एक हिस्सा ही है जीवन का, लेकिन आप ऐसे में किसी व्यक्ति को क्या कहना चाहेंगे जो अपने जीवन की परिस्थितियों से बहुत उलझ चुका है, बहुत जूझ रहा है?
4: मैं यही कहूंगा कि यह दुर्लभ मनुष्य तन बड़े भाग से मिला है, इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना है, यह जीवन मिला है। अगर आपके सामने कोई समस्या है तो आप उससे निजात पा सकते हैं, आप जो है अच्छे संग में जाइए, अच्छा विचार रखिए, वह शक्ति अम्बे दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में जो जीवन सफल बना जावे। आप अपने लिए नहीं करके औरों के लिए करने का प्लान कर लीजिए, संकल्प कर लीजिए, फिर आपके अंदर जो भी नकारात्मक बातें हैं वो खत्म हो जाएंगी, सकारात्मक जो है बातें आ जाएंगी, ऊर्जा शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
3: तो सुना दोस्तों, प्रकाश सिंह जी जो कि बनारस के टंडिया गांव से हैं, जिनको देशभर में किसान बाबा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक बहुत सुंदर आज हम सबको एक मंत्र दिया कि अगर हम हमारे जीवन में किसी बहुत बड़ी समस्या से या दुविधा से जूझ रहे हैं, हताशा निराशा हमारे चारों ओर हमको घेरे हुए है, तो ऐसे समय में जरूरत है कि हम खुद से खुद को बाहर निकालें ऐसी परिस्थितियों से और अच्छे लोगों का संग करें, अच्छे किताबें पढ़े, अच्छे कंटेंट को देखें, भले आप इंटरनेट पे भी या यूट्यूब पे भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन सकारात्मक होना चाहिए वो। जब मन दुविधा में है तब अगर हम और ही ऐसी चीजों को देखें या ऐसी चीजों को सुने या ऐसे लोगों के साथ रहे जिससे नकारात्मकता और बढ़ेगी, तो इस दुविधा से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होगा। तो दोस्तों, ये मंत्र जरूर आप अपने साथ निभा लीजिए, बांध लीजिए कि सकारात्मक संग, सत्य का संग और अच्छे कर्म और मन की शुद्धि, इससे हम हमारी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता ही चला कि प्रकाश सिंह जी का बहुत छोटेपन में ही, बहुत ही बचपन में उनकी दृष्टि चली गई। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, एक बहुत बड़ा रुकावट बन सकता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन देखिए, हमारे प्रकाश सिंह जी को, उन्हें देख करके लोगों को प्रेरणा आएगी कि हम भी इनके जैसा बने। तो प्रकाश सिंह जी, ये जो बाधा आपके जीवन में आई, दृष्टि बाधिता, ये जो पहले तो आपको थोड़ा सा दिखता था, फिर धीरे धीरे वो भी चला गया, ऐसे में आपने अपने मन को कैसे समझाया, कैसे आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे?
4: अब जैसे दीदी आप समझ लीजिए, अभी मेरा पति जी का कार्यक्रम था 12 सितंबर को, 5 दिन का इंटरनेशनल, उसमें करीब 100-200 विदेशी आए थे और इंडिया से 7-8 सौ लोग थे। एक लड़की पराजिता नाम की मिली, मैं उसका नंबर और फोटो भेज दूंगा। मैं घूमते घूमते गया तो वो लड़की, उसके पिताजी हमको पहचान गए, 7वीं क्लास की लड़की है। वो आकर के साष्टांग प्रणाम हमको की और कह रही थी कि आप हमारे गुरु हैं। हमको अचंभम पड़ गए। वो कही कि मैं आपका यूट्यूब और ये सब देख देख करके मेरे मन में आया कि आप आंख के अंधे हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, गरीब हैं, आपके ऊपर कर्ज ब्याज है, फिर भी आप जो है देश के लिए इतना कर रहे हैं। तो मैं संकल्प ले ली कि मैं आपके काम को आगे बढ़ाऊंगा। आज वो 150 प्रकार के बीजों का संग्रह बीज बैंक बनाई है, उसको भारत सरकार वहां बुलाया था। तो ऐसे ऐसे देश भर में 100-200 ऐसे बच्चे खड़े हो गए हैं जो कि हमारे विचार को, हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हो गए हैं और वो भी नाम मान सम्मान कमा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरा अधूरा काम है, हम निःशुल्क निस्वार्थ भाव से मैं अपने बीजों का जन्म प्लाज उन लोगों को देना चाहता हूं कि जो कि आने वाले वारसानों के काम आवे। आज बाजार में आप देखिए कि जो कुछ भी बिक रहा है, खाने पीने का चीज सब जहर बिक रहा है। अब को अस्पतालों में जाइए तो भीड़ है, जगह नहीं है इलाज के लिए। अगर डॉक्टर इलाज एक कर रहा है तब तक 100 बीमारी और फैल रही है। तो इसके लिए जो अन्न का गहरा प्रभाव मन पर तन पर पड़ता ही है, मनोरमा दीदी ने हमको बताई थी। तो पहले मैं यही सोचा था कि तामसिक सात्विक भोजन होता है, लेकिन आज जितने अन्न उग रहे हैं, कीटनाशक, डीएपी, यूरिया, वो सब तामसिक है। सभी लोग तामसिक हो गए हैं। सबको देसी गाय पालना होगा और जैविक खेती करना होगा, तभी प्राण घातक बीमारियों से हम सभी को बचा सकते हैं और बच सकते हैं। हम सभी लोगों का मन जो है खराब हो गया है, इसलिए कि हम गंदा हम लोग खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। इसलिए जो है मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग आगे आवे, हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9839253974। इस पर आप जो भी चाहें हमसे सवाल जवाब ले सकते हैं। हम 24 घंटा हाजिर है सेवा के लिए। जो 7-2 साल 5 साल का मेरा शेष जीवन है, मैं चाहता हूँ कि आने वाले वारिसानों के काम आवे मेरा शोध खोज और मेरा ज्ञान।
3: दोस्तों, कितना बड़ा दिल है देखिए प्रकाश सिंह जी का। जो प्रकाश सिंह जी ने आपको यूं ही हमारे बातचीत के दौरान अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया ताकि आप उनसे जुड़ सके, उनसे अपने सवालों को साझा कर सके। और आपने इनकी बातों से ये समझ ही लिया है कि ये जो भी बीज किसानों को देते हैं वो निःशुल्क देते हैं, उसका वो कोई भी मूल्य नहीं लेते। ये सेवा का एक बहुत उच्चतम एग्जाम्पल है, उदाहरण है हम सबके सामने दोस्तों, कि अपने परिस्थितियों से भी ऊंचा उठ करके अगर हम देश के लिए सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं, अपने आसपास में रह रहे लोगों के लिए,

0: किसी कारण से रखा होगा, 17 का भी कारण अगर आप समझाए तो मजा आएगा।
1: मेरा यह है कि हम पढ़े लिखे तो थे नहीं, कक्षा 7-8 में थे तभी पढ़ाई छूट गई, और न तो हमको अंग्रेजी आता है, न हिंदी आता है, न उर्दू, तो कोई शुद्ध भाषा भी का ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे मन के अंदर कोई बात आता गया, वो बड़ा सफल सिद्ध होता गया। तो और हमको प्राकृतिक चीज मिला, कुदरती चीज मिला, इसलिए मैं कुदरत नाइन, कुदरती इलेवन, कुदरत 12, कुदरत 17, ऐसे ऐसे नंबर डालता गया जो है, और वो सब जो है यही सब है, और कुछ उसमें नहीं है। मैं नंबर डाल दिया, लेकिन हर बीच के आगे कुदरत डाल दिया जो है, कुदरत
0: और
1: कृषि
0: आपने
1: शोध संस्थान नाम भी रख दिया जी।
0: किसी बीच के नाम के आगे करिश्मा भी लिखा, तो करिश्मा नाम कैसे?
1: कुदरत का करिश्मा, हाँ कुदरत का करिश्मा मेरे साथ हुआ, कुदरत चमत्कार रख दिया, चमत्कार मेरे साथ हुआ, सब चमत्कार ही हुआ है। मैं ज्यादा बोलूंगा इस लौकिक शरीर से, जबान से, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा हमको। जैसे कि खेतों में, पेड़ों में, पौधों में कई तरह के अजीब अजीब लोग दिखते हैं, खेतों में जैसे लगा कि बाबा टहल रहे हैं, लेकिन कहूंगा तो लोगों को विश्वास नहीं होगा। कभी कभी लगता है कि वहां कुछ चमक रहा है, मैं वहां गया तो कुछ चमक नहीं दिखाई दिया, लेकिन हमको कुछ शांति मिला, आनंद मिला। तो हमारे साथ कुछ न कुछ होता रहता है, जैसे लगता है कि मेरे आगे आगे कोई चल रहा है, या मैं बीमार हो गया हूँ, पैसा नहीं है, कहीं जाने के लिए व्यवस्था नहीं है, तब तक 1-2 घंटा पहले या उसी समय कोई आ जाता है उत्प्रेरक के रूप में, सपोर्ट सहयोग कर देता है, मैं कहीं कहीं चला जाता हूँ। तो पूरे भारत का भ्रमण करने में आप समझिए कई लाख किलोमीटर गाड़ी चलाया होगा। अच्छा, पहले मेरे पास साइकिल नहीं था, अब टाटा सफारी भी हो गई है, i10 हो गई है, 4-5 गाड़ियां भी हमारे पास हो गई है, और जो भी गाड़ियां मिली है सब सेवा के लिए हमेशा चलती रहती है, किसी पर बीज रख करके बीज फ्री बांटने के लिए, या कहीं कार्यक्रम करने जाना होता है, कोई गाड़ी में तेल भरवा देता है, कोई आने जाने की व्यवस्था कर देता है, गाड़ी चला जाता हूँ, या कोई टिकट दे देता है आने जाने का, रहने खाने पीने का व्यवस्था उसमें चला जाता हूँ। अभी जैसे PPFRA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है, आने जाने का टिकट खाने पीने की व्यवस्था कर दिए थे, तो 11 को गया मैं, 15 को वापस आ गया। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, 15-16 प्रांतों का मैं भ्रमण भी कर लिया। कोई ना कोई सपोर्ट करता रहता है, तो मैं सब भगवान की कृपा मानता हूँ, ईश्वर की कृपा मानता हूँ, कि हमें निमित्त बना करके भगवान कार्य करा रहे हैं। एक अनपढ़ किसान जो ऐसे ऐसी वैरायटी बनाया हूँ यूनिवर्सिटियों में, जैसे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में उनकी भी वैरायटी लगाई गई, और हमारी भी वैरायटी लगाई गई, उनके वैरायटी से ज्यादा हमारी वैरायटी का उत्पादन आया। तो बताइए, गवर्नमेंट बनाती है वैरायटी, वैज्ञानिक बनाते हैं, पढ़े लिखे लोग एक वैरायटी पर 6 करोड़ खर्चा करते हैं, तब वैरायटी बनती है, और हम जो है खुले आसमान के नीचे अपने सूझबूझ से सिलेक्शन पद्धति से अच्छी वैरायटी बनाया। तो अगर ऐसे जोड़िए तो हमारे पास 100-200 प्रकार के बीज हैं, तो 1000-करोड़ की संपत्ति हमारे पास है, लेकिन मैं व्यापारी नहीं हूँ, व्यापार में नहीं ले जा सकता। और ये चाहता हूँ कि कोई धर्मार्थ संस्था या कोई कंपनी या अच्छे तरीके से हमारे बीजों का करेक्टर न बदले, जो इसमें अनुवांशिक गुण है, प्राकृतिक गुण है, उसको कायम रखते हुए इसका बीज का प्रोडक्शन, पैकिंग, मार्केटिंग करे, तो 1000-10 हजार लोगों को पूरे देश में स्वरोजगार भी मिल जाएगा, और किसानों को एक अच्छा चीज मिल जाएगा, और बीज से बीज किसान बनाता चला जाएगा, तो किसान की खेती सस्ती होगी। और हमारे कुछ बीजों में आयरन जिंक की मात्रा 48 पॉइंट आया है, जबकि तमाम हिंदुस्तान के कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक जो बनाए हैं 39-40-41 पॉइंट है, हमारे में बना बनाया 48.5% है। ये लोग कई करोड़ खर्चा कर देंगे, 50-51% बनाने के तकनीकी में चल रहे हैं, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन हमारे में लैब टेस्ट हो चुका है, 48.5% आ गया है। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में,
0: अच्छा
1: अरे आनंद गुजरात में लैब टेस्ट हुआ था मेरे लिए,
0: जी,
1: ये
0: तो
1: सब ईश्वर की कृपा है।
0: प्रकाश
1: मैं
0: जी,
1: बाबा की
0: आपने
1: कृपा है।
0: आपने जितने सुंदर तरीके से कुदरत 17 और करिश्मा और कुदरत के करिश्मे के साथ साथ ईश्वरीय अनु

0: या प्रकृति माँ की अनुकंपा को अपने जीवन के साथ जिस तरीके से आपने जोड़ लिया है, ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय भी है, सराहनीय भी है, और साथ ही साथ हमारा भी दिल करता है कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो। लेकिन यहाँ बात आती है कि जहां जैसा आपने बताया कि कहाँ मैं एक अनपढ़ किसान और कहाँ ये विद्वान वैज्ञानिक, तो जब आप अपने कार्यक्रमों में जाते हैं और जब लोगों को बताते हैं कि भाई कैसे किसानी करनी है, कैसे बीजों का संरक्षण करना है आदि, तो क्या लोग आपको संशय की दृष्टि से देखते हैं या आपको पहले
1: नहीं,
0: पहले कैसे शुरुआत हुआ?
1: शुरुआत में तो ये था कि मैं जब वैज्ञानिकों के यहाँ जाते थे तो नजरअंदाज करते थे, कहते थे चलो ऐसे ऐसे बहुत लोग आते हैं, तो हमको तकलीफ होता था लेकिन हम निराश नहीं हुए। फिर हम कहे कि हमारे बीजों का प्रयोग तो किसान करेंगे, किसान बताएंगे, तब वही छोटी छोटी पुड़िया बना बना करके लगा फ्री में बीज बांटने देश भर के किसानों को। लाखों किसानों ने हमारे बीजों का सराहना किया। फिर इसके बाद नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, अनिल गुप्ता जी हमारे बारे में जाने, फिर वहां से टीम आई, वैज्ञानिक आए, हमारा इंटरव्यू लिए, फिर हमारे बीजों को ले गए, तमाम यूनिवर्सिटियों में भेजे, रिजल्ट रिपोर्ट अच्छा आया तो अपने आप वैज्ञानिकों ने सराहना किया। अब तो कृषि वैज्ञानिक हमारा बीज लगाते हैं। और एक पीएल गौतम, ये डायरेक्टर रहे पीपीएफआरए के, एक रवि प्रकाश जी हैं रिटायर हैं, और तमाम यूनिवर्सिटी के जो रिटायर्ड बड़े से बड़े वैज्ञानिक दुनिया के, ऐसे लोग कहते हैं रघुवंशी जी आपके साथ कुदरत है, प्रकृति है, आप एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं, आप जो है ज्यादा मत अपने बारे में बताइए, आपको दुनिया का हर वैज्ञानिक जानता है। और एक डॉक्टर महातिम सिंह जी थे, बनारस यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक थे, बचपन में मैं उनका भी ज्ञान सुना था, वो भी आज भी हमको याद है। और जो हमारे पूर्वज करते थे ना, तालाब की मिट्टी खेत में डालना, जाड़ के मेड़ के किनारे किनारे की मिट्टी को खेतों में डालना, और ये नोना कच्चे मकान के जो होते थे, जहाँ पशु बांधने जाते थे वहां कौआ बारा जाता था गाँव का जाड़े में, वो सब राख फेंकते थे, उसमें मल मूत्र जो पशु करते थे उसको ले जा करके खेत में, उससे बैक्टीरिया बढ़ते थे, जीवांश बढ़ते थे, प्राकृतिक केचुआ हमारे खेतों में होते थे। आज हमारे खेत में एक एकड़ में अगर खोदना हो तो 100-200 किलो प्राकृतिक केचुआ मिलेंगे, इतने बड़े बड़े जो है। केचुआ का काम क्या है? मिट्टी खाना, मिट्टी निकालना, मिट्टी खाना, मिट्टी निकालना, मल की शुद्धि मिट्टी से, मिट्टी की शुद्धि जल से, जल की शुद्धि पवन से, पवन की शुद्धि हवन से, ये श्रृंखला था। आए दिन जो है हवन यज्ञ होता था तो पर्यावरण शुद्ध होता था, तो प्रत्येक काम नियम से करती थी, तो समय से बरसात होती थी, समय से सब कुछ होता था। अब देखिए कहीं पहाड़ गिर रहा है तो कहीं बर्फ गिर रहा है, कहीं बादल फट रहा है, कहीं बिजली गिर रहा है, कहीं तूफान आ रहा है, ये सब क्या है? पर्यावरण जो है काम नियम से नहीं कर रहा है, पर्यावरण को हम आप सभी बिगाड़ दिए हैं। पाताल से हम लोग कोयला निकाल लिए, ऊपर पहाड़ काट दिए, तो क्या होगा? डिसबैलेंस तो हो ही गया है। अब हम तो कहेंगे तो सकता है हमारे ऊपर कोई कानून लागू हो जाए, कौन जानता है कि कहाँ कितना है बैलेंस भगवान की बनाई हुई व्यवस्था को। अब सूर्य का जो है वो सोलर वगैरह लगा रहे, हो सकता है उनके पास 5 किलो हो, 4 किलो खींच ले, वो भी धड़ाम हो जाए, चंद्र पर जा रहे। तो विज्ञान का जब जब विकास हुआ है तब तब विनाश भी हुआ है। लेकिन हम भी सब विवाद बात वाले नहीं करना चाहते, लेकिन बता रहा हूँ कि पाताल खाली हो गया, ऊपर का पहाड़ कट गया, और प्रकृति के साथ दुनिया भर का हम लोग दोहन कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल जला रहे हैं, कुल पर्यावरण प्रदूषित कर दिए हैं, एसी घर घर में लग गया, अंदर ठंडा है, बाहर एकदम गर्मी फेंक रही है, तो बीमारी के तमाम कारण है। गांव में देखिए कोरोना काल में, गांव में जंगल में पहाड़ में किसी को कोरोना नहीं हुआ, कोई नहीं मरा। शहरों में देखिए बहुत मृत्यु हो गई। तो स्वच्छ वातावरण के लिए अग्निहोत्र बहुत जरूरी है। एक नन्ही दीदी है भोपाल में, अग्निहोत्र चलाती है, वहां भी मैं गया हूँ लेक्चर वगैरह देने के लिए। हमारी छोटी बेटी थी वो सुबह शाम अग्निहोत्र करती थी, बहुत अच्छा होता था। और छोटी सी पोती है हमारी, छोटे बेटे की बेटी, उन्नति नाम है, 6 साल की है, उसको मैं सिखा रहा हूँ, अग्निहोत्र कर रही है। तो हवन यज्ञ से भी जो है बहुत कुछ है, जैसे कुल मिला जुला करके पवित्रता मन में लाइए, नियम सीएम नियम संयम बनाइए, अन्न शुद्ध खाइए। अन्न शुद्ध कैसे होगा? बस वही जैविक खेती से होगा। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, पर्यावरण शुद्ध होगा। यही सब है तरीका
0: जी। आपने बहुत ही सरल शब्दों में
1: जी जी
0: लेकिन बहुत गहिर रीति से ये समझा दिया कि किस प्रकार से छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हमारी दृढ़ता में है। भले जब आप शुरुआत में जाते थे, लोगों को समझाते थे कि भाई इस प्रकार से किसानी करनी है, इन बीजों को पालना है, इनका संरक्षण करना है, तो लोग आपको समझते नहीं थे। लेकिन आज वही लोग आपको पूछ रहे हैं, आपको निमंत्रण दे रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है ये मन की दृढ़ता की वजह से आया है। ये तो आपने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया। आपने ये भी बताया कि आप पूरे भारत देश का भ्रमण करते हैं, तो मेरे को आपसे ये जानने का मन करता है कि जब आप भारत के एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, भाषा बदल जाती है, बोली, पानी, भोजन, जो जो किसानी है, जो खेती है, उसका प्रारूप स्वरूप सब बदल जाता है, तो ऐसे में आपको कभी मुश्किलात आए, कभी मुश्किलें हुई कि उन तक कैसे बात पहुंचाए जो आपके प्रांत से नहीं है?
1: वो बता दिए ना कि चमत्कार करिश्मा, कोई ना कोई प्रकट हो जाता है, मिल जाता है हमको, हमारे बाप को उनको बताने के लिए। जैसे मैं इटली गया था 5 दिन के लिए, वहाँ 127 देश के लोग आए थे। तो हम हमारे साथ एक डॉक्टर यूपी सिंह है, बीएचयू के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको भी भेजा गया था मेरे साथ कि आप जाइए रघुवंशी जी के उसको जो है बताइएगा। तो वहां भी लोग हमको एक अलग ही तरीके से लोग देखते थे। तो कोई चाहता था ये जो पहने हो, कहाँ से लाए हो, क्या है, तो आप व्हाइट बहुत अच्छा लग रहा है। कोई कहते थे व्हाइट व्हाइट क्यों पहनते हो। हम जाते थे जो है एक आश्रम में, जो है वहीं पर सब सफेद पहनते हैं, तभी से मेरे मन में धारणा आ गई कि हम भी सफेद वस्त्र धारण करें। तो बहुत कुछ होता है हमारे, जैसे लगता है कोई तीसरी शक्ति हमारा साथ देता है हर काम में।
0: और ऐसे में जब आप भारत के अलग अलग जगहों पे जाते हैं, कौन सी एक बात आपको ऐसा लगता है जो पूरे भारत को भारत बनाती है, जोड़ती है? विविधता तो बहुत है, लेकिन पूरे भारत को एक करने वाली कौन सी एक खास बात है जो आपको नजर आती है?
1: बस प्रेम, प्यार, अपनापन, पवित्रता, यही सब है। ये सब सबके अंदर सब गुण आ जाए तो पूरा भारत एक है। हम सभी मानव प्राणी एक हैं, जीव जंतु और वनस्पति एक दूसरे के पूरक हैं, और इन सब तभी एक होंगे जब मन में पवित्रता आएगी, एक दूसरे के प्रति दया आएगी, अपनापन आएगा, तब आएगा। और करने वाले मुश्किल से एक मुट्ठी है
0: जी।
1: हेलो
0: जी, आप कह रहे थे मुट्ठी, मुट्ठी के बारे में बता रहे थे, बताइए।
1: एक मुट्ठी गलत लोग हैं धरती पर 10%, 90% अच्छे हैं, लेकिन उन 90% के अंदर जो है ये सब भाव जगाना पड़ेगा, उनके आत्मबल को बढ़ाना पड़ेगा, उनको प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा। जो है जो निराश है, परेशान है, हताश है, उनके अंदर जो है ये जो ज्यादा धन कमाने के लिए लुप्ता या दूसरे का दे करके बड़का बनने का भाव, ये सब जो है निकल जाए अपने आप, सब सुखी समृद्ध हो जाएंगे, संत प्रिय हो जाएंगे। और जैसे आज देख लीजिए मोदी जी को, पूरे विश्व के लोगों को नंगे पैर दिल्ली में गांधी आश्रम में घुमा रहे हैं, बता रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात
0: होगी। ये आपने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया जी, ये आपने काफी अच्छा उदाहरण दिया कि हम हमारे सभ्यता, हमारी संस्कृति को जितने दिल और जान से समझेंगे उतना ही दूसरों तक वो पहुंचेगा, और यही आधार है हमारे समृद्धि का भी। तो दोस्तों, जो आपने सुना भी, प्रकाश जी कह रहे थे कि पूरे विश्व भर में बहुत चंद लोग हैं जो बहुत नकारात्मक होते हैं। अक्सर हम सब अच्छे हैं लेकिन हम हमारी अच्छाई को समझ नहीं पाते, और इसलिए प्रकाश सिंह जी का जो कहना है कि जरूरत है हमारे भीतर की उस सोई हुई सकारात्मकता को जगाने की, उस जागरण की, और वो जागरण होता ही है जब हम सत के संग में आते हैं, अच्छे लोगों के संग में आते हैं, अच्छी चीजें सुनते हैं, जैसे कि आप। रेडियो मधुबन सुनते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। तो ये मुस्कुराने का जरिया जो रेडियो मधुबन आप तक लेके आता है, इसके लिए भी आपकी प्रेरणाएं, आपकी प्रशंसाएं, आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक हमें बड़ा मदद करते हैं। हम हमारी चर्चा को जारी रखेंगे। आप सुन रहे हैं 107.8 FM रेडियो मधुबन, यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं प्रकाश सिंह रघुवंशी। यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ हैं प्रकाश सिंह रघुवंशी जी। प्रकाश सिंह जी को पूरे भारत देश में किसान बाबा के नाम से जाना जाता है, जो कि अपने सफेद वस्त्रों में और एक काला चश्मा पहन करके, अगर आपने इनको YouTube में या Google में देखा है, तो ये वही प्रकाश सिंह जी हैं जिनसे आज हम बातचीत कर रहे हैं। प्रकाश जी, आपसे मेरा ये सवाल है,
1: जी
0: जो कि थोड़ा मैं समझता हूँ समसामयिक है, क्योंकि आज पूरा विश्व जो है कोरोना से बाहर आया है, और जब कोरोना से बाहर आया तो लोगों को ये उम्मीद थी कि लोगों का जीवन थोड़ा ज्यादा प्राकृतिक होगा, लोगों का जीवन थोड़ा सा बदलेगा, लेकिन वो कोरोना काल वापस खत्म होने के बाद लोग जैसे पुराने जीवनचर्या में वापस चले गए। दिनचर्या पहले से ज्यादा व्यस्त हो गई, खान पान पहले से ज्यादा ही अलग और बेतुकी होने लगी, जिनका कोई तुक नहीं बनता। ऐसे में जो हमारा वर्तमान है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको अगर कोई संदेश देना हो तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: संदेश देंगे कि तो बच्चे बहुत पढ़ लिख करके बेरोजगार भटक रहे हैं। अगर 2 एकड़ खेत है, अगर किसान गांव का है, तो 2 एकड़ में वो ऑर्गेनिक खेती करें, गाय पालें और उन्नत किस्म के बीज का उत्पादन करें, तो आराम से 5-6 लाख रुपए सालाना वो घर बैठे कमा सकते हैं, घर परिवार में भी रह सकते हैं, और 40-50 हजार रुपए महीने की उनकी घर बैठे अपने घर बैठे जो आय की स्रोत हो जाएगी। तो नौकरी से अच्छा है उत्तम खेती मध्यम बान इसी चाकरी भी था। उत्तम खेती का समय आ गया है, लेकिन आप अमृत उगाइए। भारत सरकार, राज्य सरकार, मोदी जी, योगी जी, सब लोग किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रयासरत है, सहयोग कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि जैविक खेती का सब्जी उगाइए, अनाज उगाइए और उन्नत किस्म का बीज उगाइए, बीज बेचिए, तो आपको 2 नहीं 4 गुना ज्यादा उत्पादन मिलेगा, 4 गुना लाभ मिलेगा। ये मैं वादा करता हूँ, मैं प्रशिक्षित करूंगा। आप लोग जो है शहर से गांव में वापस आइए और नशा पत्ती छोड़िए सब। मैं इतना ज्यादा बर्बाद हो गया था नशा करके कि मेरी जिंदगी नरक हो गई थी, मैं नशे में गुलाम हो गया था नशे का, लेकिन आज मैं आजाद हूँ, बहुत सुखी हूँ, शांति से हूँ, आराम से हूँ, आनंद से हूँ, पर सेवा पर उपकार के भाव में चल रहा हूँ। हाँ दीदी, हो सके तो एक आध प्रोग्राम मेरा मधुबन में रखिए, माउंट आबू मैं 2 बार जा चुका हूँ, वहाँ किसानों को अगर एक साथ 1,000, 2,000, 5,000 लोगों को अपना तकनीकी ज्ञान बताऊंगा तो वो देश के कोने कोने में और अच्छा जाएगा, या कहीं भी हमारे लायक सेवा होगी तो आप बताइएगा।
0: जी, प्रकाश सिंह जी का ये बड़ा दिल कि हम हर एक तक पहुंचे, हर एक को सेवा के द्वारा उनके जीवन को सुधारे, बदले, और उनका ये विजन दोस्तों कि आप उत्तम कृषि, मतलब आप खुद के मालिक बने, आपके पास अगर जमीन है या अगर आप किसी की जमीन पे भी अगर ये कर सकते हैं, तो साथी बन करके, उनके साथ मिलकर के, अगर आप जैविक पद्धतियों के द्वारा उत्तम उत्पादन करते हैं, तो वो न केवल आपके लिए अमृत है, लेकिन जो उसका सेवन करने वाले उनके लिए अमृत है, और माँ प्रकृति के लिए, धरती के लिए भी वो अमृत है। तो जो भी हमारे युवा साथी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, आपकी जमीन या आपके दादा परदादाओं की जमीन अगर आपके पास है, पुश्तैनी जमीन है, उसको यूं ही नहीं इस्तेमाल करें, सोच विचार समझ कर उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जमीन जो है अपने आप में एक जीवित शक्ति है। उस शक्ति का सही इस्तेमाल ही जीवन में जीवनदायिनी का काम करेगी, संजीवनी का काम करेगी। दोस्तों, हम रघुवंशी जी के साथ बात कर रहे हैं, और उन्होंने खुद को मधुबन आने के लिए या माउंट आबू आने के लिए बहुत अच्छी रुचि दिखाई है। मैं समझता हूँ भविष्य में जब भी प्रकाश सिंह रघुवंशी जी माउंट आबू में होंगे, आप सब उनसे रूबरू मिल सकते हैं, या कभी अगर आप बनारस जा रहे हैं तो बनारस के नजदीक में ही तांडिया गांव है, जहां पर प्रकाश सिंह जी का आश्रम है। उन्होंने अपने घर को आश्रम जैसा बना दिया है और वहां पर ही वो बीजों का संरक्षण और लोगों को कई प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। तो प्रकाश सिंह जी, अगर किसी को आपके घर आना हो तो कैसे आएंगे?
1: वो हम रेलवे स्टेशन से 22 किलोमीटर है, गूगल में डाल दें कुदरत कृषि शोध संस्था, वो राजा तलाब दखनी रोड, तो लोकेशन मिल जाएगा। रोड पर एक हनुमान जी का मंदिर है, पंपिंग सेट है पिताजी का बनाया हुआ, वहीं पर मेरा है। मैं 4-5 कमरा भी बना लिया हूँ, खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था, यथाशक्ति गाँव का जो सेवा है वो करता हूँ, और शुद्ध शुद्ध जो है अन्न खिलाऊंगा जैविक, जो
0: सुना
1: होगा
0: दोस्तों,
1: हमारे यहाँ
0: सुना दोस्तों,
1: पचासों देश के
0: प्रकाश
1: लोग
0: सिंह
1: आ
0: जी
1: चुके
0: आपको
1: हैं विदेशी।
0: प्रकाश सिंह जी आपको इनवाइट कर रहे हैं कि अगर आपको सीखने का मन है कि कैसे जैविक कृषि करके हम हमारे धरती माँ को वापस से हरित कर सके, सशक्त और शक्तिशाली बना सके, तो उसके लिए वो आपको इनवाइट कर रहे हैं। तो बस आपको जरूरत है एक थोड़ा सा दिल में इच्छा जगाने की और अपने आसपास के संसाधनों को जोड़ करके एक एक एक अच्छा सुंदर सा सपना संजोने की, जिसका साथ निभाने के लिए प्रकाश सिंह जी ने अपना वायदा दिया है कि वह हमेशा उपलब्ध है। उन्होंने शुरुआत में ही अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपके साथ शेयर किया था। प्रकाश सिंह जी, जाते जाते आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे, जिसमें हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और उसका जवाब आपको एक शब्द में या एक ही वाक्य में देना होगा। तो क्या आप तैयार हैं?
1: चलिए ठीक है, बोलिए।
0: जी, पहला सवाल, शांति क्या है?
1: शांति संतोष है, संतोष
0: बहुत
1: कर
0: सुंदर।
1: लिए शांति हो गई।
0: संतुष्टता या संतोष का साथ पकड़ेंगे तो जीवन में शांति बनी रहेगी, बहुत सुंदर। सेवा क्या है?
1: सेवा है जिसे पर सेवा, पर उपकार, पर हित में अगर हम काम करते हैं तो वो सेवा है, स्वार्थ न हो उसमें।
0: परोपकार, पर हित में जो भी हम करते हैं वो सेवा है, बहुत सुंदर। आध्यात्म क्या है?
1: अध्यात्म समझने की चीज है, तर्क वितर्क की चीज नहीं है। अध्यात्म में हम जाएंगे तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा।
0: आपका म्यूट हो गया है प्रकाश सिंह जी, कोई है आपके आसपास में जो फोन को अनम्यूट कर सके? हाँ जी,
1: हाँ, कोई
0: कृषि, कृषि क्या है?
1: व्हाट्सएप का किया है गया।
0: कृषि
1: जी,
0: क्या है?
1: कृषि संस्कृति है, पूर्वजों आदिकाल से जो चला रहा है, ये हमारी कृषि जो है संस्कृति है और
0: वाह,
1: प्रकृति है,
0: कृषि,
1: प्रकृति ने सब जी
0: वाह,
1: संस्कृति है।
0: कृषि संस्कृति है और प्रकृति की देन है। जी,
1: जी,
0: बीज क्या है?
1: लेकिन इसमें विकृतियां आ गई है।
0: संस्कृति में विकृति भी आ चुकी है। जी,
1: आ चुकी है, इसी से मानव प्राणी जो है अशांत, परेशान और बीमार हो गया है, विकृतियां आ गई। ये डीएपी, यूरिया, कीटनाशक, ये सब
0: बीज
1: दीदी
0: क्या है?
1: बताई थी कि अन्न का गहरा प्रभाव मन। बीज ब्रह्म है, बीज जीवन का प्राण है, बीज समाप्त हो गया तो ब्रह्मांड से जीवन समाप्त हो जाएगा, और बीज प्रकृति ने मनुष्यों को उपहार में दिया है, इसलिए बीज को बचाना बढ़ाना ये हम मानव प्राणी का, खास करके किसानों का धर्म और कर्तव्य बनता है। बीज ही उत्पत्ति है जीव जंतु वनस्पतियों का।
0: समाज क्या है?
1: समाज, अब समाज बहुत पढ़ाई का तो नहीं हूँ दीदी, समाज यही जो सगे संबंधी रिश्तेदार मनुष्य प्राणी है, यही एक समाज है।
0: और देश क्या है?
1: देश एक देश वही है तो है अपना देश, जिस देश में हम रहते हैं, जहां तक हम, जैसे हमारा भारत देश, तो भारत देश में जितने लोग हैं सब हम देशवासी हैं, वही एक देश है। फिर परदेश आता है, यही सब है।
0: एक शब्द में अगर आपको बोलना हो भारत क्या है आपके लिए?
1: भारत, भारत माँ है हमारी, भारत जगत जननी है, ये सब है भारत।
0: और एक शब्द में अगर बताना हो प्रकाश सिंह रघुवंशी कौन है तो
1: जी, प्रकाश
0: क्या कहेंगे?
1: सिंह रघुवंशी तो लौकिक में श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी हैं, लेकिन अलौकिक में मैं एक आत्मा हूं, परम पिता परमात्मा की संतान।
0: और आप अपना परिचय किस प्रकार से देना चाहेंगे कि जो आप काम करते हैं उस काम को अपने नाम के साथ अगर आप जोड़ते हैं तो उसे किस तरीके से आप देखते हैं अगर एक शब्द में देखना हो तो?
1: वो शरीर भान में आ करके मैं उसको अपना शोध खोज मानता हूँ या वैरायटी विकसित किया हूँ तो मैं उसको अपना जानता हूँ, लेकिन वह मिला है हमको प्रकृति से, गिफ्ट में, ईश्वरी कृपा से, उपहार में।
0: तो प्रकाश सिंह जी, आप हमें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे चुने हुए सुपात्र हैं जिनको ईश्वर ने और प्रकृति ने वो खजाना भेंट किया जिस खजाने को आप लुटा रहे हैं लोगों तक, और इस वजह से आज भी आपके पास उसकी उन्नति हो रही है। जब हम हमारे पास जो हमें तोहफे मिलते हैं उन तोहफों को, उन खजानों को, उन उपहारों को लोगों के साथ बांटते हैं, दिल खोल के बांटते हैं, तो वो उपहार भी अपने आप में उन्नति को पाते हैं, बढ़ता है। तो दोस्तों, किसी को देने में बिल्कुल हिचकिचाइएगा नहीं। जो भी आपके पास हुनर है, जो भी आपके पास उपहार है, चाहे वो आपका हुनर हो, चाहे वो कोई प्राकृतिक संसाधन हो, या कोई भी चीज जो ईश्वरीय देन है, उसको दूसरों तक पहुंचाने में, उन तक ले जाने में कभी भी हिचकिचाइएगा नहीं, क्योंकि उसमें ही बरकत है, उसमें ही उस की उन्नति है। और इसका एक जीता जागता मिसाल आज हमारे साथ यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के हमारे एपिसोड के अतिथि प्रकाश सिंह रघुवंशी जी हैं। प्रकाश सिंह रघुवंशी जी, जिन्हें पूरा देश किसान बाबा के नाम से जानता है, भारत के कई राष्ट्रपतियों के द्वारा अनेकों सम्मान से सम्मानित एक ऐसे शोधकर्ता किसान हैं जिन्होंने कुदरत के करिश्मे को देश के हर किसान तक पहुंचाया, और आज जिसके बदौलत देश के कई किसान अपनी उन्नति को अनुभव कर रहे हैं, उनके पास एक बहुत उम्दा उपजाऊ उपज तैयार हो रही है। आज देश प्रकाश सिंह रघुवंशी जी जैसे कई किसानों की तरफ आंख उठाकर, आज देश प्रकाश सिंह रघुवंशी जैसे कई किसानों की तरफ चाह भरी नजरों से देखता है कि क्या कोई ऐसा है जो सेवा भाव से प्रकृति की और पूरे देश की सेवा कर सके। दोस्तों, प्रकाश सिंह जी ने पहले भी आपको न्योता दिया है कि अगर आपको कृषि के संबंध में कुछ भी उनसे प्रश्न पूछना है तो आप उनके व्हाट्सएप नंबर पे उनसे संपर्क कर सकते हैं। प्रकाश सिंह जी, जाते जाते अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर दोबारा हमारे सभी साथियों को बताएं तो बड़ा ही अच्छा होगा।
1: जी दीदी, एक है 9580246411, दूसरा है 9839253974।
0: तो दोस्तों, आपको नंबर भी मिल गया है, आखिरी नंबर मुझे याद था, वो मैं अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9839253974, 9839253974। इस नंबर के जरिए आप रघुवंशी जी के साथ बने रह सकते हैं, उनसे आप अपने प्रश्नों के सवाल, इस नंबर के जरिए आप रघुवंशी जी के साथ बने रह सकते हैं, उनसे अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। आपके मन में अगर कोई किसी भी प्रकार की कृषि से संबंधित उत्सुकता है, उसका निदान प्राप्त कर सकते हैं। और हमेशा की तरह एक 107.8 FM पर रेडियो मधुबन के यशस्वी भारत कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोबारा आएंगे आपके सामने एक और खास मेहमान को लेकर के, अगली बार एक और नई शख्सियत, एक और नया जीवन, एक और नई प्रेरणा। दोस्तों, आप आज हमारे साथ बने थे। दोस्तों, आज के हमारे एपिसोड में आज सॉरी दोस्तों आज के हमारे एपिसोड में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार है प्रकाश सिंह जी आपका, जो आज आपने समय निकाल के हमारे साथ बातचीत की। उम्मीद करते हैं दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: थैंक यू सो मच भाई साहब, अच्छा लगा आपसे बात करके। और
1: जी, ठीक है दीदी।
0: कभी आपसे मुलाकात भी होगी, माउंट आबू आएंगे जब आप।
1: जी, आप बुलाएंगी दीदी तो मैं आऊंगा। हाँ, एक प्रश्न रह गया मेरा कि
0: जी
1: गेहूं कुदरत 9 और गेहूं कुदरत 17 जो वैरायटी है, इसमें आयरन जिंक की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जा रही है, जिससे कि इसका ब्रेड, पाव रोटी, बिस्कुट, दलिया अगर बनाना हो तो जो लोग टेबलेट टॉनिक इंजेक्शन ले रहे हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, उससे ज्यादा ये कारगर है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना एड्रेस हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, तो मैं आपको एक एक दो दो किलो भेज दूं। आप लैब टेस्ट करवा लीजिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं थोड़ा असमर्थ हूँ, हमारे पास लैब टेस्ट कराने के लिए जो यूनिवर्सिटियों में पैसा देना पड़ता है शुल्क, वो नहीं है मेरे पास। अगर आप लोग कराना चाहते हो तो मैं भेज दूंगा।
0: हमारे संस्था में जो कुछ लोग हैं जो किसानी और इस प्रकार के जो भी सेवाएं हैं उनसे जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत करके आपके
1: जी,
0: लिए कुछ व्यवस्थाएं करेंगे, है ना?
1: हाँ जी, तो हम ये बीज भेज देंगे, आप वहाँ के लैब टेस्ट में टेस्टिंग करवा के रिपोर्ट ले लीजिए, तो हमको सुविधा हो जाएगी और पूरे देश के काम आएगा। ये बहुत अच्छी चीज प्रकृति ने हमको दिया है, गेहूं कुदरत 9 और कुदरत 17। ठीक
0: जी,
1: ओम शांति।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी, प्रणाम।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: स्वागत है ज्ञान चिंतन में। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करते हैं। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपको चिंतन की एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं नीतू जैन हमेशा की तरह आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है भाग्य की कलम आपके हाथ पे। इस पर मैं आपसे अपना चिंतन शेयर करूँगी। मनुष्य का जीवन अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। कभी वह अपने भाग्य को कोसता है तो कभी अपनी मेहनत पर गर्व करता है। परंतु यदि हम गहराई से विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भाग्य की कलम वास्तव में हमारे ही हाथ में होती है। हम अपने भविष्य के लेखक स्वयं होते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं भाग्य और परिश्रम का आपस में क्या संबंध है? बहुत से लोग यह मानते हैं कि भाग्य पहले से तय होता है और उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन यह विचारधारा उन लोगों की होती है जो परिश्रम से बचना चाहते हैं। सच तो यह है कि भविष्य और भाग्य का गहरा संबंध है। जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है वही अपने भाग्य को सवारने में सफल होता है। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन को भी देख लीजिए। जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो उन्हें हजारों बार असफलता का सामना करना पड़ा। यदि वे यह सोचकर बैठ जाते कि उनका भाग्य खराब है तो शायद वे कभी सफल नहीं होते। परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत जारी रखी। इसी तरह अब्दुल कलाम जी ने गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद अपने परिश्रम से न केवल भारत के मिसाइल कार्यक्रम को दिशा दी बल्कि देश के राष्ट्रपति भी बने। ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि भाग्य की कलम हमारे हाथ में होती है। दोस्तों, चलिए जानें कैसे अपने आप को नकारात्मक सोच से बचाएं। कई बार हम असफलताओं से घबरा जाते हैं और अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। परंतु हमें यह समझना होगा कि असफलताएं हमारे सीखने और आगे बढ़ने के अवसर होते हैं। नकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यदि हम यह मान लें कि हमारी तकदीर खराब है तो यह मेहनत करने की इच्छा शक्ति ही खो देंगे। इसके विपरीत यदि हम हर परिस्थिति में सीखने का प्रयास करें और आगे बढ़ने की ठान लें तो भाग्य भी हमारे अनुकूल हो जाएगा। सही निर्णय का जीवन में क्या महत्व है? जीवन में सही निर्णय लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना परिश्रम करना। कई बार हम गलत निर्णयों के कारण असफल हो जाते हैं और इसे भाग्य का दोष समझ लेते हैं। लेकिन यदि हम सोच समझकर सही दिशा में प्रयास करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि एक छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले और परीक्षा में फेल हो जाता है तो क्या यह उसके भाग्य का दोष है? नहीं, यह उसकी लापरवाही और गलत निर्णय का परिणाम है। यदि वही छात्र नियमित रूप से पढ़ाई करता और सही रणनीति अपनाता तो निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त करता। इसलिए भाग्य को दोष देने की बजाय हमें अपने निर्णयों पर ध्यान देना चाहिए। इस चिंतन से यह निष्कर्ष निकलता है, हमारे जीवन की कहानी हम स्वयं लिखते हैं। यदि हम अपने भाग्य को दूसरों के हाथों में सौंप देंगे या इसे केवल परिस्थितियों पर निर्भर मानेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परिश्रम, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की क्षमता ही वह स्याही है जिससे हम अपने भाग्य की कलम को चला सकते हैं। इसलिए हमें अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करना चाहिए और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज के चिंतन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए चिंतन के साथ। बने रहिए हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। धन्यवाद।
1: ज्ञान चिंतन के आज के एपिसोड में बस इतना ही। प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का विषय आपके मन मस्तिष्क में नए विचारों का संचार करने में सफल रहा होगा। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगले कार्यक्रम में हम एक और रोचक विषय के साथ लौटेंगे। तब तक अपने विचारों को निखारते रहें और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।
3: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
4: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवरलास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
3: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो।

0: नमस्कार, मैं हूं पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: Awakening with ब्रह्मा कुमारी।
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। वेलकम सिस्टर।
3: ओम शांति।
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
3: थैंक यू सो मच
2: सिस्टर। एक बहुत ही स्ट्रांग लाइन मैंने पढ़ी कल और शेयर करना चाहूंगा। इट्स अ यूनिवर्सल लॉ। आई डोंट नो हु इज रिटन इट एंड व्हाई इट इज अ यूनिवर्सल लॉ, बट इनका कहना है इट्स अ यूनिवर्सल लॉ, इनटॉलरेंस इज द फर्स्ट साइन ऑफ एन इनएडिक्वेट एजुकेशन, ऑफ एन इनएडिक्वेट

0: education. An ill-educated person, an ill-educated person behaves with arrogant impatience, whereas truly profound education breeds humility.
1: बहुत स्ट्रॉन्ग है
0: कैसी ऐसा लिखता है
1: इट्स ट्रू ना
0: और बोलता है यूनिवर्सल लॉ भी बोलता है
1: यूनिवर्सल लॉ उसको क्यों कह रहा है क्योंकि इट मीन्स कि ये एक बहुत बेसिक चीज है कि जो हर आत्मा को पता ही होनी चाहिए कि टॉलरेंस कि हम सब अलग हैं अलग थे और अलग ही रहेंगे और इस भिन्नता के साथ ही हमें एक दूसरे के साथ चलना है ये एक बहुत ऑब्वियस चीज है यूनिवर्सल चीज है और इतनी भी बात न पता होना और न पता होने के कारण एरोगेंट और इम्पेशेंट बिहेव करना तो ये अज्ञानता की निशानी है अनएजुकेटेड पर्सन ही कॉल्स दैट पर्सन कि जिसको वो वाली डिग्री की एजुकेशन नहीं लेकिन जीवन के ज्ञान की एजुकेशन नहीं है नहीं समझ नहीं है तो कितनी पावरफुल ये लाइन है कि जो ज्ञानी है उसके अंदर ह्यूमिलिटी अपने आप होगी लेकिन जो अज्ञान में है इस बात से अज्ञान में है उसके अंदर एरोगेंस और इम्पेशेंस होगी तो जैसे हमने पिछली बार भी देखा कि जो हमारे साथ जैसा भी व्यवहार कर रहा है जिसको हम गलत बुरा लेबल करते थे हमारे से ज्यादा दर्द में वो आत्मा है जैसे आपने कुछ दिन पहले भी कहा कि कुछ लोग जानबूझ के मैनिपुलेट कर रहे हैं या माइंड गेम्स खेल रहे हैं उनके वो खेलने से हमें बुरा लगता है तो हमें लगता है दे आर द कॉज ऑफ आर पेन उनकी वजह से हम दर्द में हैं भले हम उनके उस व्यवहार की वजह से जब हर्ट होते हैं तो हमें थोड़ा सा दर्द होता है लेकिन एक्चुअली हमारे दर्द से कई गुना ज्यादा दर्द में वो आत्मा है
0: जो आत्मा जिद्दी है और आपके समझो पति पत्नी की बात नहीं सुनना चाहते हैं पत्नी पति की नहीं सास की बहू नहीं तो वो दर्द में है
1: वो दर्द में है क्योंकि उसकी आंतरिक खुशी और स्ट्रेंथ इसी पर डिपेंडेंट है कि वो अपना कहना मनवाते हैं और जितनी बार वो अपना कहना मनवा नहीं पाते तो वो खुश नहीं होंगे ऐसी आत्मा के अंदर हमेशा एक इनसिक्योरिटी होती है कि दुनिया मेरे अनुसार चलनी चाहिए जिद स्टबर्ननेस मीन्स थिंग्स शुड गो माय वे अंदर कितना डिस्टर्बेंस होगा जो एक इजी आत्मा होती है ना सहज है सरल है
0: हैप्पी सोल
1: सी रिजिड जो चीज होती है मतलब जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वो बेंड नहीं कर सकती एडजस्ट नहीं कर सकती अडेप्ट नहीं कर सकती उसको हर चीज अपने तरह से चाहिए ऐसी आत्मा रिजिड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हैप्पीनेस नहीं हो सकती है अब हमें अपने हर्ट से शिफ्ट होना है और शिफ्ट होकर हमें कंपैशन और हीलिंग की तरफ जाना है सो पावर टू टॉलरेट सहन शक्ति जिसको अब हम आज से सारा दिन यूज करेंगे जब कोई हमारे साथ कोई भी ऐसा व्यवहार करेगा जो अकॉर्डिंग टू अस कंफर्टेबल नहीं है तो हम एक मिनट के लिए साक्षी होकर पहले अपने आप से ये पूछेंगे कि ये जो ऐसा कर रहे हैं इसके पीछे इनके मन की स्थिति कैसी होगी विच इज एम्पथी विच यू सेड लास्ट टाइम गेटिंग इन टू द माइंड ऑफ द अदर पर्सन ये एक बहुत माइंड गेम ये है एक्चुअली ये माइंड गेम बहुत इंटरेस्टिंग होती है कि दूसरे के मन को समझने की कोशिश करना कि दूसरे का मन ऐसा क्यों कर रहा होगा इसको ऐसा करने का क्या कारण होगा इसके पीछे इसको ऐसा करके कैसा लग रहा होगा वेरी इंटरेस्टिंग ये करने से हम अपने भी दर्द में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें दूसरे की मन की स्थिति समझना शुरू हो जाएगा जैसे ही हम ये गेम खेलना शुरू करते हैं ना ये गेम खेलने की एक आदत पड़ जाएगी कोई भी ऐसा करेगा ना फटाफट से उनके मन में घुसना है और आपको थोड़े दिन के बाद इट विल बिकम एन आर्ट ये भी एक कला है कि दूसरे की क्या सोच चल रही होगी ये करने से वी विल शिफ्ट
0: क्या दर्द से गुजर रहा होगा
1: दर्द तो है जो भी आत्मा ओरिजिनल क्वालिटी में नहीं चल रही है वो डिजीज है. हेल्थ पे हम नहीं है तो डिजीज है. हैप्पी हम नहीं है तो हम दर्द में है. ये तो डेफिनेट है, लेकिन उसके माइंडसेट को समझने की कोशिश जब हम ये करेंगे तो फिर उस आत्मा के संस्कार को टॉलरेट करना.
0: फिर ऐसे लोग ये भी तो कहते हैं ना, क्या हम नेचुरल जीवन नहीं जिए, हम पिक्चर नहीं जाएं, हम घूमने नहीं जाएं, हम मतलब वाइन ना पिए, हम क्या ना करें. तो दे ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस इधर उधर दुनिया में. नेचुरल जीवन उसको कहते हैं, जैसे आपने कहा ना कि आपका नेचर जो ओरिजिनल है टू बी हैप्पी, पावरफुल, पीसफुल, लवफुल, जो भी है. लेकिन ये लोग जो होते हैं, मैंने कहा जैसे आपको कहा कि जो माइंड गेम खेलना चाहते हैं दूसरे को, ये वो सब ट्रिक्स, ये लोग हैप्पीनेस भी तो बाहर कहाँ कहाँ ढूंढते हैं बेचारे.
1: हम में से सभी मेजोरिटी हैप्पीनेस बाहर बाहर ढूंढ रहे हैं ना, किसी न किसी चीज में ढूंढ रहे हैं. जब हम ये सारी चीजें करना शुरू कर देंगे ना, देखो ये सारे खेल खेलते खेलते कुछ लोग ये खेल सी क्या चल रहा है,
0: खेल में भी तो हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं.
1: देखो
0: जैसे देखो मैंने इसको क्या कंट्रोल कर लिया. हाँ, देखो मैंने कितना वो कर लिया. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड.
1: दिस इज यू फील दैट यू आर पावरफुल, बट एक्चुअली इट्स नॉट गोइंग टू बी ट्रू. क्योंकि आपने किसी और को तंग किया, अगर पहली बात तो किसी और को तंग किया तो क्या वाइब्रेशन भेजी, सामने से कौन सी वाइब्रेशन मिली. ये सब करने के बाद हम खुश हो सकते हैं? हाँ, थोड़ी देर के लिए हमें ये लग सकता है कि सामने वाले ने हमारा कहना मान लिया, और जिस दिन सामने वाले ने हमारा कहना नहीं माना उस दिन तो मन कितनी देर अशांत रहने वाला है. तो ये संस्कार भी पढ़ना कि दूसरे मेरे अनुसार चलें, ये संस्कार अगर डलेगा तो जीवन तो बहुत फियर और इनसिक्योरिटी में रहेगी, क्योंकि हर समय तो सब लोग हमारा कहना मानने ही नहीं वाले, ये तो हो ही नहीं सकता. तो जितना हम ये सारे खेल खेल रहे थे, जो आपने कहा मैन्युपुलेशन या तंग करना या माइंड, तो अगर हम देखें कुछ लोग हैं जो ये खेल खेल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इस खेल की वजह से हर्ट हो रहे हैं. यही है ना, दो तरह में डिवाइड हो जाएगा. कुछ लोग डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग डोमिनेट होने की वजह से अपसेट हैं, कुछ लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. लेकिन दोनों ही, जो कर रहे हैं और जो हो रहे हैं, दोनों की आत्मिक शक्ति क्या होगी? दोनों ही घटती जाएगी, दोनों की ही घटती जाएगी. सो इट्स द नीड ऑफ द आवर. क्यों ये सहन शक्ति इतनी इम्पोर्टेंट है? एक, जो हमने कुछ दिन पहले देखा कि लोग और सिचुएशन हमारे अनुसार नहीं चल सकते, वो तो हमने फाइनली कर लिया. तो हम अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हमने रखी थी कि वो हमारी डेफिनेशन ऑफ सही से चले, उन एक्सपेक्टेशंस को अब हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं. इवन व्हेन वी गेट हर्ट, यू नो, हर्ट हो भी तो सिट बैक,
0: अच्छा
1: रिफ्लेक्ट. जितना भी हम अभी शेयर कर रहे हैं, मन कहता है, समझ रहा है धीरे धीरे, लेकिन एकदम से जाते ही तो कि हम हर्ट ही ना हो, ये तो एकदम से नहीं होगा. तो बात आएगी, कोई कुछ ऐसे करेगा हमारे साथ, फिर से कुछ खेल खेलेगा, हम हर्ट होंगे, सिट बैक. चिंतन तो हम करते ही हैं उसके बाद, लेकिन हम चिंतन पहले क्या करते थे, क्यों किया, ऐसे किया, ऐसे है. अब हम
0: वो नहीं, उससे ज्यादा करता था मैं तो. ये तो है ही ऐसा, ये कितना बुरा है, पता नहीं इसके माँ बाप ने क्या सिखाया, पता नहीं मेरे साथ उसको क्या तकलीफ है, मैं तो अच्छा ही करता हूँ, मैं तो इतनी मदद करता हूँ. अपने अच्छे अच्छे पॉइंट देख के दूसरे के बुरे बुरे चुनता हूँ.
1: तो अब भी हम चिंतन करेंगे, लेकिन अब चिंतन की धारा थोड़ी सी बदल जाएगी. अब चिंतन ये होगा, अपने आप को कहेंगे, लेकिन वो मेरे अनुसार तो नहीं चल सकते ना. अपने मन को प्यार से समझाना है कि वो आत्मा मेरे अनुसार तो नहीं चल सकती. जो बात मेरे लिए बहुत इजी और नेचुरल है, वो हो सकता है उस आत्मा के लिए बहुत डिफिकल्ट या शायद अभी तो इम्पॉसिबल है. वो संस्कार उस आत्मा के पास अभी है ही नहीं. तो मुझे क्या करना है, मुझे ये समझना है कि वो संस्कार उस आत्मा के पास अभी नहीं है, और उसके पीछे एक रीजन है कि वो आत्मा कहीं ना कहीं इस यात्रा में, जर्नी ऑफ लाइफ टाइम्स, इस यात्रा में कुछ ना कुछ ऐसे अनुभवों से गुजरी है जिस कारण उस आत्मा का संस्कार ऐसा बना है. कंपैशन. एंड थर्ड, हेल्प देम. हेल्प कैसे करेंगे उनके?
0: By being nice.
1: बाय बीइंग नाइस फ्रॉम हियर
0: फ्रॉम विद इन
1: हमारा सबसे बड़ा योगदान किसी के लिए, हमारा सबसे बड़ा सहयोग किसी को, वो यही है कि हम उनके लिए गलत नहीं सोचेंगे।
0: बट मैं अपने अगर ओरिजिनल सीट पे रहूं, आत्मा की कुर्सी पे, और अपने ओरिजिनल क्वालिटीज में रहूं, तो दैट इज मोर देन एनफ।
1: दिस इज ओनली व्हाट इट इज ना, ये चिंतन करते करते
0: नहीं, मैं बुरा भी ना सोचूं, असर भी ना हो, तो फिर उसके पास मेरा कोई वाइब्रेशन ही नहीं जाएगा।
1: हाँ, मैं बुरा भी ना सोचूं, असर भी मुझे ना हो,
0: तो ओरिजिनल
1: उसी के लिए ये चिंतन हम कर रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी हर्ट हुए तो चिंतन करके इस तरह से आत्मा फटाफट से क्या हो जाएगी, अपनी सीट पर पहुंच जाएगी, अपनी ओरिजिनल स्थिति पे पहुंच जाएगी।
0: और हम ऐसा नहीं सोच सकते कि ये जो बंदा मेरे साथ कर रहा है ये सही है। व्हाई? क्योंकि मैंने इतने जन्मों में कुछ किया होगा दैट आई डिजर्व इट। जो हो रहा है, अगर मेरे लिए बुरा भी सोच रहा है तो देन ऑल्सो दिस पर्सन इज राइट एंड द सिचुएशन इज राइट बिकॉज एवरीथिंग इज राइट बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मेरे पास्ट कार्मिक अकाउंट से।
1: वो तो है।
0: अगर मैं ये सोचूं और एक्सेप्ट कर लूं, चलो जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, इसका मेरा लेना देना, इसने आज जो था ये करके हमारा एक चीज खत्म तो हुई, एक कार्मिक अकाउंट बंद हुआ।
1: बस कार्मिक अकाउंट सिर्फ तब बंद होगा
0: तब जब मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँ ना,
1: बिल्कुल
0: गलत तरीके से।
1: और वो करते करते मैं आत्मा अपनी सहन शक्ति को बढ़ाता जाऊंगा, मुझे अपनी पावर्स को बढ़ाना है।
0: जैसे इसमें आप मुरली में आप अक्सर पढ़ती हैं और बताती हैं कि तू मुझे याद कर, एक सिंपल लाइन, बस बाबा याद करने में लगन हो जाती है, लगन में कनेक्शन हो जाती है, और जब कनेक्शन इतनी स्ट्रांग होती कि जैसे एक बड़ी लाइट के सामने छोटी लाइट, तो वो हम वही बन जाते, उसमें खो जाते हैं, तो एक हो जाते हैं, तो फिर आप अपने ओरिजिनल संस्कार में आ गए।
1: बिल्कुल। तो जैसे ही आत्मा अपने ओरिजिनल संस्कार में आ जाएगी, ये पावर्स ऑटोमेटिकली हमें अनुभव होंगी, और फिर सारा दिन उनको यूज करना बहुत इजी हो जाएगा। जब हम ऐसे टॉलरेट भी करेंगे, हमें फीलिंग नहीं आनी चाहिए अब कि हम टॉलरेट कर रहे हैं।
0: हाँ, जैसे कि मैं बोलो चलो यार पुराने जन्म में मैंने कुछ दुख दिया होगा, तो आज मुझे ये दुख दे रही है, दे रहा है,
1: राइट,
0: तकलीफ तो सहनी पड़ेगी,
1: ये टॉलरेंस नहीं,
0: ये वाली नहीं, ठीक है।
1: दिस वाज द टॉलरेंस। कई बार क्या होता है, दो तरह से आ जाती है। एक, कुछ लोग जो अपने आप को सुपीरियर फील करेंगे कि हाँ इसके अंदर तो ये नेगेटिव संस्कार है, ये है ये सब, पर क्या करें, अब इनके साथ रहना है तो इनको
0: ज्ञानियों के साथ जीना है।
1: सही बात,
0: मैं तो ज्ञानी हूँ,
1: तो मुझे इनको टॉलरेट तो करना पड़ेगा। ये एक टॉलरेंस हम समझते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति अपने आप को इन्फीरियर फील करता है कि मुझे तो इसके साथ रहना है लेकिन क्या करूँ, मेरे पास तो कोई और चॉइस है नहीं, कहीं और जा नहीं सकता, रहना तो इनके साथ ही।
0: बोला था इसे शादी मत करो, लेकिन क्या करो, मैं वहाँ भी नहीं रही, वहाँ घर वापस भी नहीं जा सकती, यहाँ भी नहीं रह सकती,
1: तो मुझे टॉलरेट तो करना ही पड़ेगा। ये टॉलरेंस नहीं है। टॉलरेंस में फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी या फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी नहीं आएगा, राइट और रॉन्ग नहीं फील होगा, आई एम बेटर देन देम ये फीलिंग नहीं आएगी, आई एम गुड दे आर नॉट ये फीलिंग नहीं आएगी। टॉलरेंस जो अंडरस्टैंडिंग और विजडम से आएगी, वो टॉलरेंस में सिर्फ एक थॉट आएगी, ये और मैं अलग अलग संस्कार हैं, और इन अलग अलग संस्कारों को इकट्ठे रहना है, ऐसी थॉट आएगी। जब ये थॉट आएगी ना, तो मन बिल्कुल नेचुरल रहेंगे हम उनके साथ, और अपने आप को हमें कैसे चलाना है उनके साथ, तो हम अपने संस्कारों पर वर्क करेंगे कि ये अगर ऐसा करेंगे भी, कुछ ऐसा करते भी है, हाउ डू आई हैव टू बी विद देम, फोकस इज ऑन मी। जैसे टॉलरेंस के सबसे ब्यूटीफुल एग्जांपल जो प्रकृति में है वो है वृक्ष। ये वृक्ष हमें सिर्फ देता देता और देता है,
0: तूफान में, बारिश में, धूप में, खड़ा
1: सब में
0: है।
1: देता है, सब में देता है। कोई आकर चाकू से इस पर कोई अपना नाम भी लिखना शुरू कर दे, काटना भी शुरू कर दे, तो भी वो उसको देता है। इसको पत्थर भी मारे तो भी वो उसको देता है। अगर कोई हमें पत्थर मारे, क्या हम उसको फल दे सकते हैं? वो हमें स्टोन मारे, हम उसको फ्रूट दे, यही वृक्ष कर रहा है ना। हमें भी वही करना है, लेकिन वो पत्थर क्यों मार रहा है? क्योंकि उसके पास अभी पत्थर है। हम वृक्ष को पत्थर भी मारे तो वृक्ष हमें पत्थर नहीं मार सकता, क्योंकि वृक्ष के पास पत्थर नहीं है, वृक्ष के पास सिर्फ एंड सिर्फ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स है। तो हम उसको जितना भी हिलाएंगे, अब देखो कई बार जाके हम वृक्ष को हिला ही देते हैं ऐसा, जितना जोर से हिलाएंगे उतने ज्यादा फल फूल नीचे गिरेंगे हमारे ऊपर। तो कोई आपको आकर अब हिलाए भी
0: तो उसे दुआएं देता रहता है,
1: दुआएं देता है, सिर्फ दुआएं देता है। तो हमें भी कोई हमें हिलाए भी तो हमें ये समझना होगा वो खुद किस स्थिति में है, इसलिए हमें ऐसा हिला रहा है, और हम अपनी स्थिति को इतना प्रोटेक्टेड रखें कि हम उसको सिर्फ क्या देते जाएंगे, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स जो हम अपनी मेडिटेशन में रोज इकट्ठी करेंगे। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, जो आत्मा डेली मेडिटेशन करेगी, डेली जैसे आपने कहा मेडिटेशन करके परमात्मा से कनेक्ट होगी, क्योंकि फ्रूट्स एंड फ्लावर्स मेरे पास होने चाहिए ना देने के लिए, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि लोग पत्थर मारे हम फल दे, लोग पत्थर मारे हम फल दे, ये उतना इजी नहीं है, प्रोवाइडेड हमने फल कहीं से ले ना ले। शक्ति भरनी पड़ेगी अपने अंदर पहले,
0: डेली फ्यूल,
1: डेली फ्यूल। तो जितना हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, अनकंडीशनल लव एंड पावर जस्ट भरता ही जाएगा अपने अंदर। सिर्फ 2 मिनट भी अगर दिन में बीच में साइलेंट हो जाए और उसको इस तरह से याद करें, अनकंडीशनल लव एंड पावर, फिर सारा दिन में लोगों को देना कुछ डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं लगेगा। ये अब हमें सारा दिन प्रैक्टिस करना है। हम किसी से सुपीरियर नहीं, हम किसी से इन्फीरियर नहीं, कोई गलत नहीं, सिर्फ वो हमारे से
0: अलग
1: है, संस्कार उसके अलग है। मेरा रोल है उसको क्या देना है, मुझे सिर्फ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स दे,
0: दुआएं,
1: सिर्फ दुआएं देनी है, सिर्फ आशीर्वाद देना है, क्योंकि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता, और हिलाएगा तो उसको वही मिलेगा जो मेरे अंदर भरा हुआ है,
0: क्योंकि मैं बीइंग शक्ति हूँ,
1: मैं बीइंग शक्ति। सी दैट इज व्हाई मेडिटेशन सिर्फ वो नहीं है जो हम सुबह करें, शाम को करें, या रात को सोने। मेडिटेशन मीन्स सारा दिन अपनी विचारधारा को कैसे बदलना है, जो हम कई बार देखते हैं ना कि हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट। तो कई बार भाई बहने कहते हैं हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट में करना क्या है उस 1 मिनट की, अगर 1 मिनट हम साइलेंस में बैठे भी, सब काम छोड़ के साइलेंट भी हो जाए, तो उस 1 मिनट में क्या करना है। उस 1 मिनट में अगर हम इतना भी अपने आप को याद दिलाएं, हर आत्मा का अपना अपना रोल है, मुझे किसी भी आत्मा के रोल के अंदर इंटेंगल नहीं होना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, मुझे किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये हमें अफर्मेशन, सी दीज आर अफर्मेशन वी हैव टू गिव टू आवर सेल्फ अगेन एंड अगेन। आज तो हम चलते चलते किसी के भी साथ इंटेंगल हो जाते हैं, उलझ जाते हैं ना, हम दूसरे की एनर्जी में उलझ जाते हैं।
0: ये किसी का वो व्हाट्सएप या मैसेज आ जाता है कि इसने ऐसे कैसे था उलझ गए, और दूसरे को भी देखो इसने ऐसे कैसे था, जानते नहीं, सोचते नहीं, कुछ नहीं, उलझ गए। कई बार चलता अच्छा इन्होंने ऐसा कर दिया, इतना बड़ा मंत्री, इतना बड़ा फलाना, इस औरत को ऐसा, उसका आदमी का ऐसा, इसका मर्डर कर दिया, उलझना तो
1: टप टप टप टप टप टप, पावर डिप्लीट, पावर डिप्लीट।
0: फिर हम साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, भाई मेरा दिमाग ये नहीं चल रहा, मुझे ये नहीं चल रहा, मुझे गुस्सा आता है, मुझे तकलीफ होती है, आई फील डिप्रेस्ड,
1: राइट।
0: कितना डिप्लीट ये करता है।
1: तो जीवन का लक्ष्य, मुझे किसी आत्मा की एनर्जी फील्ड में इंटेंगल नहीं होना, मुझे किसी के भी साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है। उस आत्मा का अपना रोल है, उस आत्मा के अपने संस्कार हैं, ये मुझे समझ आ गया। जब तक नहीं समझ आ रहा था हम उलझ रहे थे, फिर भी ठीक है, समझ आ गया ना, अब कोई चीज पता चल गई है ना। अब पता चलने के बाद उलझना, ये तो फिर वही हो गया ना जो आपने शुरू में पढ़ा कि अनएजुकेटेड, समझ आया तो भी यूज नहीं किया उस बात को। तो ये है मेडिटेशन, बार बार 1 मिनट साइलेंस में बैठ के, हर आत्मा का अपना रोल है, हर आत्मा का अपना रोल है, वेरी साइलेंटली वी हैव टू गिव दिस पावर टू आवर सेल्फ। ये है वो नए ग्रूव बनाना। पुराना ग्रूव कहेगा क्यों ऐसा किया, नया ग्रूव कहेगा हर आत्मा का अपना रोल है।
0: तो ये अच्छा आइडिया, एक घंटे के बाद एक अलार्म लगा लेना चाहिए एवरी आवर, और ये याद दिलाना चाहिए अपने आप को कि हर आत्मा
1: का अपना रोल है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे किसी भी आत्मा की एनर्जी में अब उलझना नहीं है।
0: दिस इज अ ब्यूटीफुल लाइन,
1: आई कांट अफोर्ड इट एक्चुअली।
0: उलझना, एंटेंगल करने में हम वैसे उस वक्त बन जाते हैं, उस मोमेंट के लिए
1: हम किस जिसकी एनर्जी फील्ड में जाएंगे
0: वैसे बन गए।
1: कैसे बन गए?
0: जैसे मैंने पहले कहा था कि हम अगर कनेक्ट करेंगे बाबा को,
1: परमात्मा से कनेक्ट,
0: परमात्मा को, तो इतनी बड़ी लाइट है और मैं छोटा सा बल्ब,
1: वैसे बन
0: उसके
1: जाएंगे।
0: सामने में बड़ी लाइट में खो गए, एक बन गया।
1: ब्यूटीफुल। अगर परमात्मा को याद करेंगे तो उनकी एनर्जी फील्ड में इंटेंगल हो जाएंगे, तो उन जैसा बन जाएंगे। जैसे आपने कहा, कभी हम संत महात्माओं से मिलने जाते हैं, उनकी एनर्जी फील्ड में जाते हैं, तो हमारी एनर्जी फील्ड उनकी एनर्जी फील्ड से इंटेंगल होती है, तो हम कहते हैं कितना पीसफुल लगा, कितना प्योर लगा। अब जो आत्मा दर्द में है उसकी एनर्जी फील्ड में इंटेंगल हो जाएंगे, तो फिर कैसा अनुभव होगा?
0: तो फिर हमको पीस और ये सब ढूंढने कहीं जाने की जरूरत ही नहीं,
1: कहीं भी नहीं।
0: खाली अपने इसको थॉट को चेंज करना है कि आई डोंट वांट टू गेट एंटैंगल्ड इनटू दिस,
1: तो हम अपनी ओरिजिनलिटी से कनेक्टेड होंगे। ये मेडिटेशन है, आई विल नॉट गेट एंटैंगल्ड, ये मंत्र है एक और। जैसे हम कहते हैं आई विल नॉट स्मोक, आई विल नॉट ड्रिंक, आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट गेट एंटैंगल्ड विद एनीवन्स एनर्जी। मुझे अपने आप को बताना है, वो अपने स्क्रिप्ट से चलेंगे, मुझे अपना स्क्रिप्ट अपनी चॉइस का लिखना है, मैं उनको चेंज नहीं कर सकती, ना वो मेरे जीवन का लक्ष्य है, पर्पज ऑफ माई लाइफ। पर्पज ऑफ माई लाइफ इज अपने को संभाल के चलना, और फिर पुरुषार्थ करते करते धीरे धीरे अपने जीवन का मंत्र बनाएंगे, मुझे तो हर आत्मा से प्यार करना है, आई लव एवरी सोल, I love every soul.
0: Why should we, instead of this, I can say कि I just radiate only love.
1: हाँ,
0: तो मेरे सिर्फ प्यार की दुकान है,
1: बस
0: मेरे पास और कुछ नहीं मिलता है।
1: कुछ आए भी तो मेरा रोल क्या है? Love every soul.
0: कोई भी कस्टमर आए ना, मतलब यहाँ तो सिर्फ प्यार बिकता है।
1: बिल्कुल, ये करते करते मन अपना ही है, जैसा कहेंगे वो वैसे ही बनने लग जाएगा। वेरी सिंपल एक्चुअली।
0: नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती, इज नॉट दैट सिंपल।
1: द मेहनत इज नथिंग कम्पेयर टू हाउ हार्ड वी वर्कड ऑन अदर थिंग्स इन लाइफ। हमने जीवन में बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करते हैं, उसके सामने ये मेहनत कुछ भी नहीं। बैठे बैठे एक मिनट साइलेंस में बैठे अपनी थॉट को चेंज कर लिया, कितनी मेहनत कह सकते हैं इसको? इसको मेहनत कम, अटेंशन ज्यादा कह सकते हैं।
0: अवेयरनेस,
1: अटेंशन एंड अवेयरनेस रखनी है। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू।
0: थैंक यू सो मच सर। एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं।
1: लेट्स सिट बैक कंफर्टेबल।
0: जी।
1: अपने आप को देखें। इस जीवन की यात्रा में, इस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर मैं आत्मा एक्टर, अनेक एक्टर्स के साथ अपना पार्ट प्ले कर रही हूं। हर एक का अपना अपना रोल, अपना स्क्रिप्ट है। हर एक का रोल और स्क्रिप्ट उनके जीवन के अनुभव और अनेक जन्मों के संस्कारों के आधार पर है। मुझे अपने स्क्रिप्ट पर अटेंशन। आज से ये पक्का है, मैं आत्मा किसी को नहीं बदल सकती। अटेंशन सिर्फ अपने ऊपर। आई विल नॉट गेट एंटैंगल्ड इन एनीवन एल्सेस एनर्जी फील्ड। आई लव एवरी सोल। I am a radiator of love. This is the purpose of my life. ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। Om Shanti.
0: Om Shanti.
1: Thank you.
0: Thank you so much. Om Shanti.
2: When we find sanskars of souls different from us, sanskars which we cannot understand, or we are not comfortable with, we label the soul as strange, wrong, or bad. Truth is, they are only different from us. When we find someone's behavior uncomfortable, first thing is to understand their mind. Try to get into their mind and understand what would they be feeling and thinking for them to behave in this manner. This is empathy. Even if we create hurt in response to someone's behavior, we need to sit back and gently counsel our mind. This is their sanskar. What is natural for me is right now difficult or impossible for them. They have experienced something because of which they have this sanskar. This is compassion. With empathy and compassion, we now create only pure and loving thoughts for that soul. And our behavior towards them is with humility, love, and care. This is healing for them and us. Like a tree only gives us fruits and flowers, even if we throw stones at it, shake it, or cut it, because the tree is full of fruits. Similarly, if we fill ourselves with love by connecting to God during meditation, then even if someone shakes us or throws stones at us, we will only give love. We need to always keep attention that we will not entangle with the energy field of any soul. We will not come in conflict with anyone. If we connect to God, we experience His powers. When we connect to spiritual masters, we experience peace and love. If we connect to the energy field of any soul carrying negative sanskars, we will experience negativity. Be with them, but not get entangled.
1: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 55 9 660.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद लुटा।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुणेरी आवाज।
1: ओ रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

भारत में आज 29 प्रदेश हैं, जिनकी अपनी अपनी भाषा और संस्कृति है। पर अब हम जहाँ की बात करने जा रहे हैं, वो जगह हर बोली हर त्योहार को दिल से अपना बनाने वाली यानी देश की राजधानी दिल्ली है।

दिल्ली एक महानगरीय क्षेत्र है। इसमें नई दिल्ली सम्मिलित है जो कि ऐतिहासिक पुरानी दिल्ली के बाद बसी थी। ऐतिहासिक महत्व वाला यह महानगरीय क्षेत्र महत्वपूर्ण व्यापारिक, परिवहन एवं सांस्कृतिक हलचलों से भरा है। दिल्ली देश के उत्तरी मध्य भाग में गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी यमुना के दोनों तरफ बसी है। दिल्ली भारत का तीसरा बड़ा शहर है। यहाँ के ऐतिहासिक तथा रमणीक स्थल अपने आप में विशेष हैं। पर्यटन एवं विकास के उद्देश्य से यह आगरा और जयपुर से जुड़ा है। दिल वालों का शहर कहे जाने वाली दिल्ली के इतिहास में संपूर्ण भारत की झलक सदैव मौजूद रही है।

अमीर खुसरो और गालिब की रचनाओं को गुनगुनाती हुई दिल्ली नादिर शाह की लूट की चीखों से सहम भी जाती थी। चांदनी चौक, जामा मस्जिद की संकरी गलियों से गुजरकर चौड़े राजपथ पर 26 जनवरी की परेड को निहारती हुई दिल्ली जनवरी को उन तीन गोलियों की आवाज को नहीं भुला पाती जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सीने में धंस गई थी।

दिल्ली ने दौलताबाद जाने के तुगलकी फरमानों को भी सुना और लाल किले से प्रधानमंत्री के अभिभाषणों पर तालियां भी बजाई। कभी रघुराय ने दिल्ली की रायसीना पहाड़ी को अपने कैमरे में कैद कर लिया, तो कभी हुसैन के रंगों ने दिल्ली को रंग दिया। दिल्ली कभी कुतुब मीनार की मंजिलों को चढ़ाने में पसीना बहाती रही, तो कभी हुमायूं के मकबरे में पत्थरों को तराशती रही। 9 बार लूटे जाने से भी दिल्ली के श्रृंगार में कोई कमी नहीं आई। आज भी दिल्ली विश्व के सुंदरतम नगरों में गिनी जाती है। अनुश्रुति है कि इसका नाम राजा ढीलू के नाम पर पड़ा, जिसका अधिपत्य ईसा पूर्व पहली शताब्दी में इस क्षेत्र पर था। बिजोला अभिलेखों में उल्लेखित ढिल्ली या ढिल्ल का सबसे पहला लिखित उदाहरण है। महाभारत काल में पांडवों द्वारा बसाया गया इंद्रप्रस्थ नगर आज हमारे देश का हृदय माना जाता है। एक मत के अनुसार दिल्ली का नामकरण फारसी शब्द दहलीज पर पड़ा है, जिसका अर्थ है प्रवेश द्वार। कुछ अन्य लोगों के मतानुसार 8वीं सदी में कन्नौज के राजा दिल्लू के नाम पर इसका नामांकन हुआ है। कई अवसरों पर दिल्ली ने कई साम्राज्यों के पतन में अपनी छाप छोड़ी है। ऐसे बहुरूपदर्शी भूतकाल में न केवल दिल्ली बल्कि विश्व के महानतम लोकतंत्र की खोज की जा सकती है। महाभारत काल से ही दिल्ली का विशेष उल्लेख रहा है। दिल्ली का शासन एक वंश से दूसरे वंश को हस्तांतरित होता गया। यहाँ यह मौर्यों से आरंभ होकर पल्लवों तथा मध्य भारत के गुप्तों से होता हुआ 13वीं से 15वीं सदी तक तुर्क और अफगान और अंत में 16वीं सदी में मुगलों के हाथ में पहुंचा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दिल्ली में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई। अब बढ़ते हैं कुछ और इतिहास की तरफ। 1911 में ब्रिटिशर्स द्वारा कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित होने पर दिल्ली सभी तरह की गतिविधियों का केंद्र बन गया। 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ। दिल्ली के इतिहास में 69वां संविधान संशोधन विधेयक एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 में लागू हो जाने से दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ। दिल्ली का पुरातात्विक परिदृश्य अत्यंत दिलचस्प है। सहस्त्राब्दियों पुराने स्मारक कदम कदम पर खड़े नजर आते हैं। नए या पुराने किलेबंद स्थान पर निर्मित 13 शहरों ने दिल्ली अरावली त्रिकोण के लगभग 180 वर्ग किलोमीटर के एक सीमित क्षेत्र में अपनी मौजूदगी के निशान छोड़े हैं। दिल्ली के बारे में यह किंवदंती प्रचलित है कि जिसने भी यहाँ नया शहर बनाया उसे इसे खोना पड़ा। सबसे पुराना नगर इंद्रप्रस्थ करीब 1400 ईस्वी पूर्व निर्मित किया गया माना जाता है और वेद व्यास रचित महाकाव्य महाभारत में भी इसका वर्णन पांडवों की राजधानी के रूप में मिलता है। इस त्रिकोण में निर्मित दिल्ली का दूसरा शहर है अनंगपुर या आनंदपुर, जिसकी स्थापना लगभग 1020 ईस्वी में तोमर राजपूत नरेश अनंगपाल ने राज निवास के रूप में की थी। यह शहर अर्धवृत्ताकार निर्मित तालाब सूरज कुंड के आसपास बना था। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो दिल्ली एक वन जल संभर पर स्थित है, जो गंगा तथा सिंधु नदी प्रणालियों को विभाजित करता है। दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति विशेषता पर्वत स्कंद रिज है, जो राजस्थान प्रांत की प्राचीन अरावली पर्वत श्रेणियों का चरम बिंदु है। अरावली संभवतः दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, लेकिन अब यह पूरी तरह वृक्ष विहीन हो चुकी है। उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण में फैला और तिकोने परकोट की दो भुजाओं जैसा लगने वाला यह स्कंद क्षेत्र 180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कछारी मिट्टी के मैदान को आकृति की विविधता देता है तथा दिल्ली को कुछ उत्कृष्ट जीव व वनस्पतियां उपलब्ध कराता है। यमुना नदी त्रिभुजा का

दिल्ली कला एवं हस्त कौशल की प्रचुर विविधता का केंद्र रहा है। मुगल काल में दिल्ली रत्न और आभूषण, धातु पच्चीकारी, कसीदाकारी, सोने की पच्चीकारी, रेशम और जरी का काम, मीनाकारी और शिल्प मूर्तिकला और चित्रकला के लिए विख्यात थी। दिल्ली का वर्तमान प्रशासकीय महत्व उस समय से है जब भारत का शासन न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया और ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी वाणिज्यिक और सेवा केंद्र के रूप में विकसित हो गई। दिल्ली में गेहूं, बाजरा, ज्वार, चना और मक्का आदि की प्रमुख फसलें हैं, लेकिन अब किसान अनाज वाली फसलों के बजाय फलों और सब्जियों, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, फूलों की खेती को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ये गतिविधियां खाद्यान्नों, फसलों के मुकाबले अधिक लाभदायक साबित हुई हैं।

यदि शिक्षा की बात करें तो दिल्ली भारत को एक उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। यहाँ के शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी भारत के सभी भागों से आते हैं। दिल्ली में उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान के अनेक केंद्र हैं, लगभग 11 विश्वविद्यालय, अनेक महाविद्यालय, अनगिनत प्राथमिक शिक्षा केंद्र पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं। यहाँ कई सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थान हैं, जो कला, वाणिज्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, विधि और प्रबंधन में उच्च स्तर की शिक्षा देने के लिए विख्यात हैं। उच्च शिक्षा के संस्थानों में सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली विश्वविद्यालय है, जिसके अंतर्गत कई कॉलेज एवं शोध संस्थान है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, टेरी ऊर्जा और संसाधन संस्थान एवं जामिया मिलिया इस्लामिया उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थान हैं।

अलिफ से बोलो क्या होता है।

0: बोलो, बाँस से क्या होता है?
1: बंदर।
0: बादूर।

0: अच्छा मुन्ना, बोलो तेज से क्या होता है?
1: तीतर।
2: तस्वीर।

कला के क्षेत्र में भी दिल्ली आगे रहा है। शुरुआत से देखें तो 16वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक दिल्ली की कला और वहां के रहन सहन पर मुगल सल्तनत का प्रभाव रहा। मुगलों के समय में तुर्की, फारसी और भारतीय कलाओं के मिश्रण ने एक नई कला को जन्म दिया। जामा मस्जिद और लाल किला इसी वक्त में बनाए गए थे। दिल्ली दुनिया की सबसे पुराने शहरों में से एक है, लेकिन 1911 में नई दिल्ली की स्थापना हुई और ब्रिटिश वास्तुकला ने दिल्ली के किलों और महलों के बीच अपनी जगह बना ली। एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन सहित नई दिल्ली को एक आधुनिक रूप दिया। दिल्ली के वैविध्यपूर्ण इतिहास ने विरासत में इसे समृद्ध वास्तुकला दी है। शहर के सबसे प्राचीन भवन सल्तनत काल के हैं और अपनी संरचना व अलंकरण में भिन्नता लिए हुए हैं।

प्राकृतिक रूपांकनों, सर्पाकार बेलों और कुरान केन के अक्षरों के घुमाव में हिंद राजपूत काल के कारीगरों का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। मध्य एशिया से आए कुछ कारीगर कवि और वास्तुकला की सेल्जुक शैली की विशेषताएं, मेहराब की निचली कोर पर कमल कलियों की पंक्ति, उत्कीर्ण अलंकरण और बारी बारी से आड़ी और खड़ी ईंटों की चिनाई है। जब खिलजी का शासनकाल आया तब तक इस्लामी वास्तुकला में प्रयोग तथा सुधार का दौर समाप्त हो चुका था और इस्लामी वास्तुकला में एक विशेष पद्धति और उपशैली स्थापित हो चुकी थी जिसे पख्तून शैली के नाम से जाना जाता है। दिल्ली एक आकर्षण का पर्यटन स्थल भी है। दिल्ली में मंदिरों से लेकर मॉल तक, किलों से लेकर उद्यान तक और अनेक ऐतिहासिक इमारतें और किले हैं जो इतिहास की जीवंत निशानियां हैं। प्रतिवर्ष लाखों सैलानी दिल्ली आते हैं और यहाँ की मिश्रित संस्कृति को जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली राज्य पर्यटन और परिवहन विकास निगम पर्यटकों को यहाँ के विभिन्न स्थानों की सैर कराने के लिए विशेष बस सेवाएं चलाता है। निगम ने पैरासेलिंग, पर्वतारोहण और नौकायन जैसी साहसिक गतिविधियों के लिए सुविधाएं विकसित की हैं। निगम ने दिल्ली हाट का विकास किया है जहां काफी और विभिन्न राज्यों की खाद्य वस्तुएं एक जगह उपलब्ध हैं। दिल्ली के विभिन्न भागों में ऐसी ही हाट बनाने की योजना है।

दिल्ली में कई बाग बगीचे हैं, जिनमें जापानी शैली में बना बुद्ध जयंती पार्क, कनॉट पैलेस के बीच में स्थित सेंट्रल पार्क, जो दुकानों में आने जाने के लिए छोटे मार्ग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट पार्क, लोधी गार्डन, महावीर जयंती पार्क, मुगल गार्डन, राष्ट्रीय गुलाब पार्क, एशिया का सबसे बड़ा नेशनल जूलॉजिकल पार्क क्यूडिशा बाग, रोशन आरा गार्डन आदि हैं। इसके अलावा दिल्ली में महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट, जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल शांतिवन एवं लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट को भी बगीचों का रूप दिया गया है। हर धर्म को दर्शाते कई स्थल यहाँ मौजूद हैं, जैसे कालकाजी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, झंडे वाला देवी मंदिर, आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च, बंगला साहिब गुरुद्वारा, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मजार, जामा मस्जिद आदि। इसके अलावा दिल्ली घूमने आने वालों के लिए यहाँ कई दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे कि अशोक के शिलालेख, गांधी स्मृति, हौज खास, पुराना सचिवालय, संसद भवन, बेगम सामरू का महल, कोतवाली, इंडिया गेट, तुगलकाबाद, प्रगति मैदान, दिल्ली हाट आदि। प्रगति मैदान 149 एकड़ क्षेत्र में फैला यह मैदान नए एशिया के सर्वोत्तम प्रदर्शनी स्थलों में से एक है। मथुरा रोड पर पुराने किले से आगे स्थित देश के इस सर्वोत्तम मैदान में 54,685 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले 15 विशाल प्रदर्शनी स्थल हैं। इसके अलावा यहां 10,000 वर्ग मीटर का खुला क्षेत्र है, जहां समय समय पर व्यापारिक प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। दिल्ली हाट, लिटिल इंडिया के दर्शन कराने वाला यह साप्ताहिक बाजार हस्तशिल्प है, व्यंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हस्तशिल्पी एवं भाग लेने वाले बदलते रहते हैं। प्रत्येक हस्तशिल्पी को 2 सप्ताह तक के लिए दी जाने वाली यहाँ कुल 62 स्टॉल हैं, जो क्रमिक रूप से बदलती रहती हैं, ताकि देश विदेश के अधिकतम हस्तशिल्पियों को यहाँ भागीदारी और अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिल सके। देश के लगभग सभी प्रांतों के हस्तशिल्पियों को यहाँ पर एक साथ देखा जा सकता है। दिल्ली के स्वाद में पूरा भारत कहीं न कहीं दिखाई देता है। दिल्ली में खाने पीने की बहुत सी दुकानें और भोजनालय हैं। अगर आप दिल्ली जाने वाले हैं तो देश के विभिन्न प्रांतों के व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए आप दिल्ली हाट का रुख कर सकते हैं। यहाँ देश के लगभग हर राज्य का भोजन मिलता है। कुल मिलाकर दिल्ली में हर तरह के भोजन का जायका लिया जा सकता है। दिल्ली में चांदनी चौक एक जगह है जो फ्रूट चाट, गोलगप्पों, पकौड़ों और बहुत सारी चीजों के लिए मशहूर है। दिल्ली की संस्कृति, यहाँ के लंबे इतिहास और भारत की राजधानी के रूप में ऐतिहासिक स्थिति से पूर्ण प्रभावित रही है। यह शहर में बने कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों से ज्ञात है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने दिल्ली शहर में लगभग 1200 धरोहर स्थल घोषित किए हैं, जो कि विश्व में किसी भी शहर से कहीं अधिक हैं। महानगर होने की वजह से दिल्ली में भारत के सभी प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम कुछ वार्षिक उत्सवों का आयोजन भी करते हैं। ये रोशन आरा उत्सव, शालीमार उत्सव, कुतुब उत्सव, शीतकालीन मेला, उद्यान और पर्यटन मेला, जहाँ खुसरो उत्सव तथा आम महोत्सव हैं। दिल्ली में बच्चों के मनोरंजन एवं शिक्षा के लिए भी बहुत कुछ है। यहाँ बच्चों के लिए मनोरंजन पार्क, विज्ञान केंद्र, प्लेनेटेरियम, संग्रहालय और चिड़ियाघर हैं। यहाँ बाल भवन कोटला रोड पर स्थित बाल भवन में बच्चों के लिए नियमित रूप से नाटक, संगीत, चित्रकारी आदि के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय बाल संग्रहालय एवं विज्ञान सेंटर आदि भी यहीं पर स्थित हैं। बच्चों के लिए पुस्तकालय, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, बीसी राय मेमोरियल वाचनालय, नेशनल बुक ट्रस्ट, ब्रिटिश काउंसिल पुस्तकालय इत्यादि यहाँ मौजूद हैं। दिल्ली राजधानी होने के कारण कई महत्वपूर्ण खेल कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देता आ रहा है।

यहाँ अनेक स्टेडियम भी मौजूद हैं, जैसे कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, सिरी फोर्ट कॉम्प्लेक्स, तालकटोरा स्टेडियम आदि। सन 2010 में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन भी दिल्ली में किया गया था, जिसे पूरे विश्व में जाना गया। विभिन्न खेलों के लिए आयोजित किए जाने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन रहा। भारत पूरे 3 दशकों बाद ऐसे किसी आयोजन का मेजबान बना। इससे पहले भारत ने 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी की थी।

दिल्ली का सफर यहीं पूरा हुआ। हमारे साथ यूं ही बने रहिए और चलते रहिए इसी तरह पूरे भारत को जानने, 29 राज्य एक राष्ट्र एक कहानी में। जय हिंद।

टूटे टिक्कड़ जैसे क्लेमर, कच्ची मूली के स्वाद की सी धूप, तुगलकाबाद के खंडहरों में घास और पत्थरों का संबनन, परछाइयों में कमान, कमान में परछाइयां, खिड़की मस्जिद आंखों को बेद कर सुई की मानन आर पार निकलती जामा मस्जिद की सीढ़ियों की कतार,

पेड़ की जड़ों से अन्न नली तक उठ खड़ा होता कुतुब। चारों ओर महक अनाज की, मांस की, खून की, जेल की, महल की, बीते हुए कल की, सदियों की, सदियों की सांस इस क्षण की आंख, आज की उड़ती है इतिहास में, उतरती है दरार में गालिब की मजार की, भटकती है खान खानान की अधखाई हड्डी की खोज में, ओढ़ जहां आरा की बदनसीबी को निकल पड़ती है मकबरा दर मकबरा। अभी भी धूल, अभी भी कोहरा, अब भी नहीं आया, अब भी नहीं आया कोई फर्क मांस और पत्थर में। लाल किले की पश्चिम कमान में सोई फाख्ता की योनी की छत से होती हुई घुपती है मेरी आंख में किरण एक सूर्य की।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ख्वाबों का सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम। ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका हम सफर सनी। तो आइए बात करते हैं आज पुराने 50s एंड 60s के गाने आप इस कार्यक्रम में सुनते हैं। तो आज हम लोग कुछ खास गाने आपको क यानी के अक्षर से शुरू होने वाले गाने पूरे ही एपिसोड में सुनाने की कोशिश करेंगे। और आज के शो में हमारे साथ नैना है जो कोरबा से पटारी है और वो हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे के अक्षर के खूबसूरत गाने उन्होंने अपने पास संजोए रखे हैं। तो एक एक करके गाना उनके द्वारा हम लोग सुनेंगे। तो आप सभी की तरफ से नैना का भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।

0: इस गीत में एक साधारण सी लड़की के दिल के भाव हैं, जिसे अचानक से कोई युवक बहुत पसंद आ गया है। ऐसा लगता है कि जैसे उस युवक ने उस पर कोई जादू ही कर दिया हो और वो उसकी दीवानी हो गई है। तो दीवानी होकर वो ये गीत गाता।
1: चलिए नैना, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और आइए, 1956 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का जो है विशेष कलाकार थे भरत भूषण, निम्मी और ओम प्रकाश जी। गीत आपने अभी सुना नैना के द्वारा, इसे शैलेंद्र साहब ने लिखा था, आशा भोसले और लता मंगेशकर ने गाया था, शंकर जयकिशन का संगीत। फिल्म थे बसंत बहार। जी हाँ, 1965 का ये बहुत ही खूबसूरत गाना, पॉपुलर गाना। आइए अभी हम लोग सुनेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना, 1965 का, शैलेंद्र साहब का लिखा, आशा भोसले लता मंगेशकर का गाया, शंकर जयकिशन का संगीत, बहुत ही खूबसूरत बसंत बहार का आपने गीत सुना। और इसमें भरत भूषण जो है एक कलाकार के रूप में काम कर रहे हैं, गायक के रूप में, उनके साथ है निम्मी और ओम प्रकाश। और इस फिल्म का विशेष कहानी इस प्रकार है, एक प्रेम कहानी है और भरत भूषण गोपाल नाम से इस फिल्म में कार्य करता है, अपने किरदार को निभा रहा है और वो संगीत में अपना नाम करना चाहता है। उसके लिए गोपाल को एक कंपटीशन में हिस्सा लेना होता है और वहाँ उसकी कंपटीशन के लिए जाता है तो उसमें उनके जो विरोधी पक्ष के लोग होते हैं तो उन्हें शरबत में कुछ मिला के जहर पिला देते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत गाना का आपने आनंद उठाया है। आगे बढ़ते हुए नैना, आप कौन सा गीत है आपके पास?
1: कारवा गुजर गया।
0: कारवा गुजर गया जी।
1: इस गीत के बारे में कुछ बताती हूँ। इस गीत में एक ऐसे इंसान की जिंदगी के हालात बयां किए गए हैं जिसके जीवन में सब कुछ सुधर गया है, बहुत समय के बाद अब लगता है कि जीवन में खुशियां आ गई हैं, मगर उन्हें जीने से पहले ही वक्त उसे छीन लेता है और वो इंसान निहत्था सा खड़ा रह जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो जैसे कि एक भूखा व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, जिसे लंबे अरसे के बाद खाना नसीब हुआ हो, मगर उसके निवाले को मुंह में डालने से पहले ही वो खाना किसी नाली में गिर जाए, तो जो उसकी हालत होगी वही इस गीत में बयां की गई।
0: थोड़ा सा गुनगुना के बताइए हमारे श्रोताओं को।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। यहाँ बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये गीत कहीं न कहीं एक जीवन का सत्य को उजागर करता है जो हम लोग जीवन जी रहे हैं। कारवां गुजर गया गुबार देखते रह गए, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना अभी। नई उम्र की नई फसल 1965 में ये फिल्म बनी थी। फिल्म के कलाकार थे तनुजा रही, गीतकार थे नीरज साहब ने इसे बहुत ही प्यार से लिखा था और मोहम्मद रफी साहब ने इस गीत को गाया था। रोशन साहब ने इसे संगीत से संवारा था। फिल्म का नाम आप सभी ने सुना ही, नई उम्र की नई फसल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। काफी अच्छे पुराने 50s and 60s के ओल्ड मेलोडीज हम लोग सुन रहे हैं और आप सभी को बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा। जो खुशी है वो अपने आप में आपकी बढ़ती जा रही होगी कि इतने पुराने मीठे मीठे गीत जो 50s and 60s के हैं वो हम लोग रेडियो प्रोग्राम खाबों के सफर में आपको सुनाने की कोशिश हमारी रहती है और आप लोगों का मैसेजेस और प्यार मिलता है तो और खुशी हमारी बढ़ जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और नैना हमारे साथ हैं। कौन सा एक और खूबसूरत गाना आपने कलेक्ट किया है के अक्षर वाला?
1: अगला गीत है कारे कारे बादरा।
0: कारे कारे बादरा, अच्छा इसका क्या अर्थ है, क्या भाव है इस गीत में, थोड़ा बताएंगे आप?
1: जी बिल्कुल, ये एक राग आधारित गीत है, राग वृंदावनी सारंग, एक बहुत ही खूबसूरत राग है और ये गीत कारे कारे बादरा इसी राग पर आधारित है। इस गीत में एक युवती है जो कि सो रही है और अपने आने वाले भावी जीवन के खूबसूरत सपने देख रही है, खो गई है उनमें, मगर तभी मौसम अपना रुख बदल लेता है और काले काले बादल गरजते हुए उसके घर के ऊपर आ जाते हैं। बादलों के गरजने से वो युवती जो कि अपनी सुध बुध खो कर सो रही थी हड़बड़ा कर और घबरा कर उठ जाती है और उसे इस बात का गुस्सा आता है कि मेरे इतने सुंदर सपनों को इस बादल ने तोड़ दिया। तो वो गुस्से से काले काले बादलों की ओर देख के उनसे शिकायत करना शुरू कर देती है और बोलती है कि

जी नैना, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया और अच्छे अंदाज में आपने सुनाया, बहुत ही अच्छा गीत है। आइए इस गीत का लुफ्त उठाते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: चलिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना। मुझे लगता है कि आप सभी को भी अच्छा लग रहा है। और नैना ने कहा कारे कारे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये गीत आपको भी अच्छा लग रहा होगा, तो खुशी होती है। और ये फिल्म जो है 1957 में बनी थी। ये फिल्म में एक छोटी सी कहानी जो हमारे घर की जैसे बताई गई है, दो भाइयों के बीच में लड़ाई होती है और लड़ाई के कारण एक अच्छा खासा घर का बंटवारा हो जाता है। तो इस फिल्म में यही चीज बताने की कोशिश की गई है। और फिल्म का नाम सुनकर आपको पता चलेगा, हाँ सही सही बताया आपने, भाभी 1957 में जो फिल्म आई थी उसका ये गीत आपने अभी सुना। उस फिल्म में ये कहानी बताई गई है। और जो गाना हमने सुना वो राजेंद्र कृष्ण साहब ने बड़े ही प्यार से लिखा था, लता मंगेशकर ने गाया था और चित्रगुप्त ने इसको संगीत से संवारा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ख्वाबों के सफर में। और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने जो है नैना के कलेक्शन में है। आशा करता हूँ अब अगला गाना भी धमाकेदार ही होगा।
1: जी बिल्कुल, अगला गाना है कारी बदरिया मारे लहरिया। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस गीत में भी बरसात के मौसम का ही वर्णन है। काले काले बादल गरज रहे हैं और जोर जोर से ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसके बीच में एक स्त्री घर पर अकेली है, अपने पति के घर आने का इंतजार कर रही है। इतने सुहावने सावन के मौसम में अकेली अकेली बोर हो रही है, बेचैन हो रही है और सोच रही है कि कहीं उसके पति के आने से पहले ही ये मौसम बीत ना जाए। ये उसकी बेचैनी है इस गाने में।

है ना, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है। ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है 1968 में जो रिलीज हुई थी, दिलीप कुमार, मनोज कुमार और वैदा रेमन पर पिक्चराइज किया गया था। ये इस फिल्म में एक बहुत ही जुनून युवक की कहानी बताया गया है, लेकिन अचानक सा उसकी जो है दुर्घटना हो जाती है, जिसकी वजह से वो व्हील चेयर तक सीमित हो जाता है। और तब पता चलता है कि उसके मंगेतर और उसके सबसे अच्छे दोस्त दोनों का प्रेम हो रहा है। इससे वो बहुत क्रोधित हो जाता है और उसकी मनसा जो है विद्रोह में बदल जाता है। तो ये कहानी इसमें क्लाइमेक्स लव स्टोरी बताई गई है। तो आइए, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया इस फिल्म का, आदमी, 1968 में रिलीज हुआ था। शकील बदाई साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, नौशाद साहब का संगीत से सजा ये गाना आपके लिए। अभी आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: और अब आगे कौन सा गीत आपके पास है?
1: अगला गीत है कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी।
0: अच्छा कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, ऐसा लगता है कि किसी के आने पर किसी को बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है।
1: जी बिल्कुल।
0: बताइए इसका भाव क्या है?
1: इसका भाव जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि जब कोई बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ व्यक्ति वापस मिल जाता है तो कुछ ऐसे ही भाव उत्पन्न होते हैं। खुशी के मारे इंसान पागल सा हो जाता है, ऐसे ही मतलब लगता है कि आज कितना बड़ा दिन है खुशी का।
0: तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है और हम सभी लोग इस गीत का आनंद उठाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा नैना आप थोड़ा सा गुनगुना दीजिए इस गीत को।
1: जी।

0: दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी, कौन आया? ये आप देखिए कि कौन आया।
1: जी हाँ नैना, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है, वक्त फिल्म का जो 1965 में रिलीज हुई थी। साहिर लुधियानवी साहब ने इस गीत को लिखा था, आशा भोसले ने गाया था और रवि साहब ने संगीत से सवारा था। ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी वक्त, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। सुनील दत्त, शशि कपूर, शर्मिला टैगोर व राजकुमार पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म। भूकंप आने से एक व्यक्ति अपनी पत्नी एवं अपने 3 बच्चों से बिछड़ जाता है और वर्षों बाद भाग्य का खेल उन्हें दोबारा फिर से मिला देता है, इस तरह का ये कहानी इसमें बताया गया है। तो चलिए, कहानी तो आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं फिल्मों में, लेकिन गाना अभी हम आपको सुनाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM, ख्वाबों का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबो खा सफर इस कार्यक्रम में। और बहुत ही खूबसूरत गाने आप 50s एंड 60s के सुन रहे हैं। आशा करता हूँ आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए आपकी खुशी को और बढ़ाते हैं नैना
2: जी। अगला गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे।
1: जी जी जी, कौन आया मेरे मन के द्वारे, बहुत ही खूबसूरत गाना है जी। बताइए इसका भाव क्या है।
2: इस गीत का कॉम्पोजिशन बहुत ही सुंदर है, आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। इस गीत की स्टोरी कुछ अजीब है। यहाँ पर एक युवक किसी युवती को पसंद करने लगा है, वो भी सिर्फ एक ही झलक में, मतलब कि इट्स अ काइंड ऑफ लव एट फर्स्ट साइट। मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि युवक उसे दिल से पसंद तो कर रहा है, मगर उसे उस युवती का चेहरा ही अच्छी तरह से याद नहीं है। उसका पागल मन उस युवती के साथ को पाने के सपने तक सजा चुका है, मगर कश्मकश ये है कि आखिर वो पसंद कर किसे रहा है।
1: ये फिल्म है देख खबीरा रोया, 1957 का ये फिल्म है। कौन आया मेरे मन के द्वार, ये गीत जो है राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा, मन्नाडे का गाया है, मदन मोहन साहब ने इसे संगीत से संवारा है। ये जो फिल्म है देख खबीरा रोया, ये अनिता गुहा और अनूप कुमार पर पिक्चराइज किया गया था। अनूप कुमार जो है एक कलाकार बनने के लिए संघर्ष करता रहता है, और इसी संघर्ष को इसमें, एक कलाकार बनने का जो संघर्ष है वो इस फिल्म में दर्शाया गया है। तो अमिया चक्रवर्ती का निर्मित ये फिल्म है। तो नैना थोड़ा सा गुनगुना दीजिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: खाबों का सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। काफी अच्छी बातें हो रही हैं और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना। आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा है। जैसे कि हम लोग कई बार कुछ चीजें इस तरह की जो गीत है सुनते हैं तो मन के भाव जो है उभर जाते हैं और हमारे अंदर जो है एक सकारात्मक ऊर्जा संचार करने लगता है। तो चलिए ऐसे ही आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नैना, कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छी हूँ।
1: आप कौन से गीत की तरफ आप ले जा रहे हैं हमें?
2: और अगला गीत है कौन है जो सपनों में आया, रफी साहब का गीत।
1: अच्छा, ये तो बड़ा मस्ती भरा गीत है। कौन है जो मेरे सपनों में आया?
2: ये ओल्ड क्लासिक्स का बहुत ही मशहूर गीत है, सभी जानते हैं। इसमें थोड़ा सा वेस्टर्न टच है, इसके अंदर पियानो का काफी इस्तेमाल किया गया है जो कि सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, मस्ती भरा लगता है। और ऊपर से रफी साहब की आवाज इस गीत में चार चांद तो लगा ही देती है। इसमें उस वक्त की खुशी को बयां किया गया है जब तमाम मुश्किलों के बाद या कहें सबके जमाने के विरोध के बाद आखिरकार जब किसी प्रेमी की जीत हो जाती है, उस समय उसे ऐसा लगता है कि आज मेरी जीत हो गई, सारा आसमान मेरे कदमों में झुक गया और मुझे मेरी जिंदगी का मकसद हासिल हो गया, अब कुछ भी पाना बाकी नहीं है। इस मस्ती में इस गीत को गाया गया है।
1: नैना, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है। और यहाँ पर इस जो ये जो फिल्म है ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, राजेंद्र कुमार, सायरा भानु और प्रेम चोपड़ा पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म, झुक गया आसमां, 1968 में ये रिलीज हुई थी। और बताया जाता है कि इस फिल्म की जो स्टोरी है वो डबल रोल वाली बताई गई है, दो शक्ल जो है एक व्यक्ति के बताया गया है। और संयोगवश गलती से एक मर जाता है और उसकी आत्मा को उसके हम शक्ल और अपराधी के शरीर में फिर से दोबारा बताया गया है। तो इस तरह का जो है हम शक्ल वाली जो चीजें हैं इस फिल्म में बताने की कोशिश की गई है और उसके वजह से किस तरह से मनोरंजन होता है और किस तरह के जो है स्टोरी में बदलाव हो जाता है वो सब चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो चलिए इस गीत का आनंद उठाते हैं। कौन है जो सपनों में आया, हसरत जयपुरी साहब का लिखा, मोहम्मद रफी का गाया, शंकर जयकिशन का संगीत। चलिए नैना थोड़ा सा गुनगुना दीजिए ताकि हमें अच्छा लगे। बहुत अच्छा आप गाते हैं
2: जी।

0: आशा करता हूँ सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। और खाबो खास सफर इस कार्यक्रम के आखिरी मोड पे हम लोग पहुँच गए हैं। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। तो चलिए एक बार नैना को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आकर। बहुत ही अच्छे अच्छे गीत आपने हमारे श्रोताओं को सुनाया।
1: थैंक यू।
0: चलिए नैना, हम फिर से आपको चाहेंगे कि वापस हम लोग कुछ नए एपिसोड बनाने वाले हैं इसी तरह के, तो उसमें भी आपको बुलाने की कोशिश करेंगे हम लोग, और आप आते रहिएगा। और चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही खाबों के सफर में। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर, और बहुत ही खूबसूरत गाने जो है आपको सुनाने की हमारी कोशिश है, जिससे आपकी खुशी बरकरार रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सलाम नमस्ते, खमा गणिसा। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: किसी की एक लाइन, मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चली होंगी। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है, सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: बन ठन के
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चले, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: बारिश हो रही है और ये छोटा सा पपी, ये तो बेचारा अकेले बैठा है यहाँ पे। इसको एक काम करती हूँ, यहाँ पे शेड में बैठा देती हूँ।
1: अरे वाह मनु, ये तो बड़ा अच्छा काम किया तुमने। इतनी बारिश हो रही थी, हमें इंसानों की तो क्या जानवरों की भी मदद करना चाहिए।
0: लेकिन पुराना स्तंभ जी, कुछ लोग तो जानवरों से भी बहुत बुरी तरह का बर्ताव करते हैं।
1: किसी से दुर्व्यवहार करना हमारा अपना ही व्यक्तित्व दर्शाता है।
0: लेकिन एक बात और कहूँ पुराना स्तंभ जी।
1: हाँ हाँ जरूर।
0: अगर हम किसी की मदद करते हैं तो लोग अक्सर हम पे ही उंगली उठाते हैं। 2 दिन पहले की बात है, मैंने एक बच्चे को भीख मांगते देखा तो उसकी मदद करने का मेरा दिल हुआ। मैंने सोचा उसको पढ़ाना चाहिए। मैं उससे बात कर रही थी कि उसके पिता ने आके बोला कि ये तो हमारी कमाई का साधन है, हमारा बच्चा है, हमें नहीं पढ़ाना इसे, तुम कौन होती हो?
1: देखो मनु, कभी कभी भलाई करना भी इतना आसान नहीं होता। ये लो, आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम खुद ही समझ जाओगी सब कुछ।
0: अच्छा ऐसी बात है, तो किसकी कहानी सुनेंगे आज हम?
1: आज मैं सुनाऊंगा ज्योतिबा फूले की कहानी। महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को

0: उसमें माँ की ममता और दुलार दिया। 7 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा को गांव के स्कूल में पढ़ने भेजा गया। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा और स्कूल छोड़ने के बाद भी उनमें पढ़ने की ललक बनी रही। सगुना बाई ने बालक ज्योतिबा को घर में ही पढ़ने में मदद की।
1: अच्छा,
0: घरेलू कार्यों के बाद जो समय बचता उसमें वे किताबें पढ़ते थे। ज्योतिबा पास पड़ोस के बुजुर्गों से विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। लोग उनकी सूक्ष्म और तर्कसंगत बातों से बहुत प्रभावित होते थे।
1: अच्छा,
0: उनके आयुष्य में महत्वपूर्ण बदलाव तब आया जब उनके मुस्लिम और ईसाई पड़ोसियों ने उनकी अपार बुद्धिमत्ता को पहचानते हुए ज्योतिराव के पिता को ज्योतिराव को वहाँ के स्थानीय स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में भर्ती करने के लिए राजी किया।
1: अच्छा,
0: थॉमस पेन की एक पुस्तक से प्रभावित होते हुए फूले जी ने सामाजिक न्याय के लिए और भारतीय जातिवाद के खिलाफ अपना एक दृढ़ दृष्टिकोण बना लिया। ज्योतिराव ने 1847 में अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त की
1: और फिर
0: स्कूल में उन्होंने महात्माओं के जीवन सार को पढ़कर दया, धर्म, प्रेम और सत्य का महत्व समझा था।
1: अच्छा,
0: धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार जब वो अपने मित्र की शादी में गए तो ब्राह्मण पुरोहित ने उन्हें शादी में सम्मिलित होने से रोक दिया। तब से उनके मन ने निचले वर्ग के लोगों के बारे में गहन चिंतन करना शुरू कर दिया था। धर्म पर टीका टिप्पणी सुनने पर उनके अंदर जिज्ञासा हुई कि हिंदू धर्म में इतनी विषमता क्यों है, जाति भेद और वर्ण व्यवस्था क्या है। वह अपने मित्र सदाशिव बल्लाल गोंडवे के साथ समाज, धर्म और देश के बारे में चिंतन किया करते थे।
1: अच्छा,
0: उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं सोचता था कि इतना बड़ा देश गुलाम क्यों है। गुलामी से उन्हें नफरत होती थी। उन्होंने महसूस किया कि जातियों और पंथों पर बटे इस देश का सुधार तभी संभव है जब लोगों की मानसिकता में सुधार होगा।
1: अच्छा,
0: उस समय समाज में वर्ग भेद अपनी चरम सीमा पर था। महिलाओं और दलित वर्ग की दशा अच्छी नहीं थी। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। ज्योतिराव को इस स्थिति पर बहुत दुख होता था। उन्होंने महिलाओं और दलितों की शिक्षा के लिए सामाजिक संघर्ष का बीड़ा उठाया।
1: अच्छा,
0: उनका मानना था माताएं जो संस्कार बच्चों पर डालती हैं, उसी में उन बच्चों के भविष्य के बीज होते हैं।
1: अच्छा,
0: इसलिए लड़कियों को शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। वे 19वीं सदी के एक बड़े समाज सुधारक, सक्रिय प्रतिभागी और विचारक थे। उनके जीवन काल में उन्होंने शिक्षा, कृषि, जाति प्रथा और समाज में महिलाओं के दर्जे में प्रभावशाली परिवर्तन लाने का बड़ा कार्य किया।
1: अच्छा,
0: वे जाति भेद में विश्वास नहीं रखते थे। उस समय अधिकांश समाज जातिवाद में बटा हुआ था। ऊंच नीच इस प्रकार के शब्द मानव को मानव से अलग कर रहे थे। ऐसे में ज्योतिबा फूले सभी से अलग सोच तो रखते ही थे, और तो और समाज में व्याप्त इस मानसिकता से लोहा लेने को भी तैयार थे।
1: अरे वाह,
0: वे निचली जाति के लोगों को पढ़ाना, महिलाओं को पढ़ाना चाहते थे, आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने किसानों और निचले वर्ग के लोगों के अधिकारों के लिए अथक प्रयास किए। महाराष्ट्र के उस सदी के समाज सुधारकों की सूची में ज्योतिबा फूले को एक विशेष स्थान प्राप्त है।
1: अच्छा,
0: महात्मा फूले ने अपने जीवन में हमेशा बड़ी ही प्रबलता और तीव्रता से विधवा विवाह की वकालत की। उन्होंने उच्च जाति की विधवाओं के लिए 1854 में एक घर भी बनवाया था।
1: अच्छा,
0: दूसरों के सामने आदर्श रखने के लिए उन्होंने अपने खुद के घर के दरवाजे सभी जाति और वर्ग के लोगों के लिए हमेशा खुले रखे। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कुएं का पानी बिना किसी पक्षपात के सभी के लिए उपलब्ध किया।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुणेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो।
1: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुणेरी आवाज 107.8 खुश रहो खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जीवन को जीते हुए बहुत सी चीजें हम देखते जाते हैं, बहुत कुछ बाहर देखा, बहुत कुछ अचीव करते जाते हैं। कई सपने होते हैं जो जीवन से जुड़े हुए होते हैं, परिवार को लेकर होते हैं, बच्चों से जुड़े हुए होते हैं, अपने करियर को लेकर होते हैं, उन्हें अचीव करते जाते हैं। हर अचीवमेंट हमें कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन देती है, एक खुशी का एहसास कराती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इसी जीवन में उन सभी आस्पेक्ट से गुजरते गुजरते कहीं ना कहीं वो खुशी कम होती जा रही है। खुशी मिली और फिर अगले ही पल चली भी गई और फिर मैं दोबारा खुशी को ढूंढने लग गई। इस पूरी श्रृंखला में हमारी कोशिश है कि खुशी क्या है उसे समझे। मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, क्या मैं जान पाता हूँ, मुझे कौन सी बातें हैं जो खुशी दे सकती हैं। यह खुशी कहीं बाहर से मिलेगी, किसी और के साथ रिलेशनशिप में मिलेगी, किसी अचीवमेंट में मिलेगी, या मेरे अपने ही अंदर है। बहुत सी ऐसी बातें जो खुशी से जुड़ी हैं, उन्हें हम जानने का प्रयास करते हैं और इस पूरी श्रृंखला में आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे साथ रहिए और हर बार चेक करिए कि आपका हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है। और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस श्रृंखला में हमें साथ दे रही हैं, हमें बताने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: शांति
0: सिस्टर शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू।
0: और जहां तक बात खुशी की करते हैं, मुझे गम पता है, मुझे सैडनेस पता है, मुझे पता है कि मैं कैसे परेशान हो जाती हूँ, कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे स्ट्रेस में ले आती हैं, कौन सी चीज है जो मुझे गुस्सा दिला देती है। पर खुशी जो है उसके बारे में अगर मैं सोचने बैठती हूँ तो कहीं ना कहीं मिलती है और फिर चली जाती है, मिलती है फिर चली जाती है। सर, क्या ऐसी बातें हैं जो खुशी से जुड़ी हैं?
1: That was a very beautiful sentence. Huh? खुशी कहीं ना कहीं मिलती है फिर चली जाती है, फिर मिलती है फिर चली जाती है। Now what we are trying to say is कि सारा दिन में हम जीवन में चल रहे हैं, situations आती हैं, क्योंकि what is the whole day? It is a series of situations. जैसे कि एक मूवी चल रही है, एक सीन के बाद दूसरा सीन, कोई सीन मेरे फेवर में जाएगा
0: तो मुझे खुशी मिलेगी,
1: कोई सीन मेरी फेवर में नहीं जाएगा, कोई व्यक्ति मेरी फेवर में चलेगा, मतलब जैसे मैं चाहती हूँ वैसे चलेगा, कोई नहीं चलेगा। नाउ बिकॉज माय हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन एंड द पीपल, तो इसलिए जो आपने अभी वोकैबुलरी भी यूज की, कोई मिलती है फिर जाती है, फिर मिलती है फिर जाती है, मतलब एक सीन आया, वेरी

0: नाइस बच्चे टाइम पर सुबह उठ गए, तैयार भी हो गए, खुशी मिली। दूसरा सीन, टाइम पर तो हो गए थे लेकिन बस ही नहीं आई उनको लेने के लिए, तो मुझे फटाफट भागना पड़ा गाड़ी निकालने की। तो वो सीन में खुशी थी लेकिन नेक्स्ट सीन में खुशी गायब हो गई। फिर नेक्स्ट सीन, टाइम पर फिर भी पहुंच ही गए स्कूल में, वेरी गुड। लेकिन नेक्स्ट सीन पहुंचते ही याद आया कि जो होमवर्क किया था वो नोटबुक तो घर पे ही रह गई थी। दिस इज जस्ट सीन्स, लेकिन क्योंकि हर सीन मेरी स्टेट ऑफ माइंड पर एक इफेक्ट डालता है, बिकॉज मैंने अपनी स्टेट ऑफ माइंड का कंट्रोल पूरी तरह से बाहर दिया हुआ है। एंड मैंने सोचा ये नॉर्मल ही तो है कि जैसे जैसे सिचुएशन लोग बदलते जाएंगे, मेरी थॉट्स मेरी फीलिंग्स उस अनुसार बदलेगी। एंड दैट्स व्हाई इट्स कमिंग लाइक दिस, कि मिलती जाती एंड हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज हाउ लाइफ इज, कि कभी कभी ठीक कभी कभी डिस्टर्ब। लेकिन वो तब तक भी ठीक था कि कभी कभी ठीक कभी कभी डिस्टर्ब, लेकिन फिर क्योंकि माइंड की पावर सिचुएशन को देते गए, सिचुएशंस दिन ब दिन थोड़ी थोड़ी चैलेंजिंग होती गई, तो कभी ठीक कभी डिस्टर्ब का जो परसेंटेज था, हाउ मच इट वुड इट बी टुडे,
1: वो ज्यादा बढ़ गया,
0: बढ़ता गया। तो फिर क्या हुआ, ज्यादा ज्यादा डिस्टर्ब, कम स्टेबिलिटी। फिर हमारी सर्च शुरू हुई कि वेयर एम आई हेडिंग, यू नो, मेरी लाइफ कहाँ है। एंड देन आई हैव रियली स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि सब कुछ तो हो रहा है, एवरीथिंग इज देयर, वेरी गुड हस्बैंड, वेरी गुड वाइफ, दोनों वर्किंग, एक्सीलेंट सैलरी पैकेज घर आ रहा है, 30-35 की एज में मेरा बहुत बड़ा ड्यूप्लेक्स बन चुका है, बाहर दोनों के लिए अलग अलग गाड़ियां खड़ी हैं, बच्चों के लिए अलग, व्हाट मोर टू डू, नथिंग मोर टू डू। लेकिन फिर भी अंदर वो एक थोड़ा सा वैक्यूम है। एंड देन द क्वेश्चन हैज स्टार्टेड कि हैप्पीनेस कहाँ है, where is that, and that's what we want to do through this program. Look for it where it is actually available.
1: Shwani, maine abhi meri kisi se baat ho rahi thi jinhone kaha ki main khushi se judi hui baat kar rahi thi, to unhone kaha ki mere ko is baat se to kuch lena dena nahi ki main khush hu ya sad hu, mujhe to pehle situations ko handle karna hai, kyunki situations bhi itni tezi se badal rahi hain, har pal kuch naya ho raha hota hai, har pal, jaisa aapne kaha ki chalo bacche taiyar to hue lekin wo bas hi nahi hai, again you know like us waqt डिसीजन एकदम से लेना, ये जो प्रॉब्लम है कि सिचुएशंस इतनी फास्ट हैं, या तो मैं अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचूं या फिर उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए अपनी अडैप्टेबिलिटी को करूं।
0: अच्छा, एक सेकंड, हैप्पीनेस को साइड पर रखते हैं, ये सब सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए फिजिकल भी स्ट्रेंथ चाहिए,
1: बिल्कुल
0: राइट। अगर मैं आज बीमार हूं तो देयर इज नो क्वेश्चन कि मैं उठकर गाड़ी लेकर जाऊं डॉक्टर। तो जब हम अपनी सब सिचुएशंस को हैंडल करते हैं लाइफ में, तो क्या हमारे माइंड में कभी ये क्वेश्चन मार्क उठता कि मैं अपने फिजिकल स्टैमिना को देखूं या सिचुएशन को हैंडल करूं? मुझे नहीं बॉदर करना फिजिकल स्टैमिना के बारे में, मुझे तो सारा कॉन्सेंट्रेशन सिचुएशन पर ही करना है। नो, मुझे ये पता है कि फिजिकल स्टैमिना से ही मैं सिचुएशंस को हैंडल करती हूँ। मैं ठीक ही नहीं हूँ तो वर्क जाएगा कौन, वर्क पे होगा क्या, वो तो सेकेंडरी, ऑफिस जाऊंगी कैसे। इसलिए सारे दिन के अंदर मैं ये जरूर ध्यान रखती हूँ कि मेरा शरीर ठीक ठाक चल रहा है,
1: भले आज के वक्त में,
0: हाँ, बट फिर भी थोड़ा सी अगेन कि आपको खाना खा तो लेना ना, आप चलो एक दिन मिस कर दोगे दो दिन, लेकिन कितने दिन मिस करोगे? सपोज आप भागते भागते भी खा रहे हो और जंक भी खा रहे हो, लेकिन कितने दिन,
1: हाँ,
0: स्किप भी अगर आपने आज कर दिया कि आज डेडलाइन है, नेवर माइंड, एक दिन ना, दो दिन, चार दिन, उसके बाद यू विल ईट, बिकॉज यू नो कि चार दिन की लाइफ नहीं है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस जर्नी दिस बॉडी हैज टू बी फिट, अदरवाइज आई विल कोलैप्स नेक्स्ट डे। तो इसलिए हम कभी उसको सेग्रीगेट नहीं करते, अपने जीवन से अपनी फिजिकल हेल्थ को सेग्रीगेट नहीं करते, हम बहुत क्लियर हैं, हेल्थ है
1: तो काम कर
0: तो सकते हम काम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल हेल्थ को हमने सेग्रीगेट कर दिया,
1: उसके बारे में बाद में सोचेंगे,
0: उसके बारे में बाद में देखेंगे। अगर उसको भी हम उतना ही प्रायोरिटी दे दें कि इमोशनल हेल्थ है तो जीवन की यात्रा में हम ठीक चल पाएंगे, जैसे आपने कहा कि ओहो मैं क्या करूं या मैं कोलैप्स हो गई, या एक है फिजिकल कोलैप्स और एक है जो इमोशनल कोलैप्स होते हैं। अब 5 मिनट पहले पता चला कि स्कूल छोड़ने जाना है, ओके, बट अगर मैं उस टाइम यू नो काम रहूं, स्टेबल रहूं, छोड़ने तो फिर भी जाना है, गाड़ी तो आपको फिर भी चलानी है, लेकिन किस स्टेट में चलाएंगे तो यू आर सेफर। सो अगर हम इमोशनल हेल्थ को भी उतना ही एम्फेसिस दें कि ये सब सिचुएशंस और इमोशनल हेल्थ ये सेपरेट नहीं है, इट इज अ पैकेज कि अगर मैं इमोशनली हेल्दी हूं तो मैं इन सिचुएशंस को क्रॉस कर सकती हूँ. इंस्टेड ऑफ सेइंग लेट मी फर्स्ट फेस द सिचुएशंस देन आई विल टेक केयर ऑफ माय इमोशनल हेल्थ. फिजिकल हेल्थ इमोशनल हेल्थ ये मेरा पैकेज है.
1: अभी तक तो हम, लेकिन शिवानी बहन यहाँ पे एक और बात आती है कि अभी तक तो हम इसी बात को बड़ी मुश्किल से समझ रहे थे. यू नो पार्क में जॉगिंग शुरू की थी या वॉक शुरू किया था कि फिजिकल हेल्थ इज नीडेड. यू नो ये भी एक हम स्ट्रेस की तरह ले रहे थे, इन द सेंस कि एक रियलाइजेशन होना शुरू हुआ था मैक्सिमम लोगों को अब हो रहा है कि क्या मैं खा रही हूँ, किस वक्त पे खा रही हूँ और कितनी वॉक कर रही हूँ, कितनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, वो जरूरी है.
0: Do you know something? Why we are having to take so much care of physical health today? क्यों इतना ध्यान रखने जा रहे हैं? हमें बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट वन जनरेशन पीछे. सिर्फ अपने पेरेंट्स को देखना है, कोई जॉगिंग नहीं करने गया मेरे पेरेंट्स में से, किसी ने मिनरल वाटर नहीं पिया सारा दिन में, किसी कोई इतना डाइट कॉन्शियस नहीं था, नॉर्मल खाना बनता था, नॉर्मल सब लोग खाते थे. आज इतना ज्यादा क्यों ध्यान रखना पड़ रहा है फिजिकल हेल्थ पे? क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस इतना ज्यादा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम शरीर के साथ चली ही जाती है. तो जो रूट है उसको नहीं ध्यान रखा, रूट की वजह से फिर जो क्रिएट हो रही है सारी प्रॉब्लम्स, अगर रूट पर भी ध्यान रख लें तो यहाँ इतना ज्यादा एम्फेसिस, इतना ज्यादा एफर्ट करना ही नहीं पड़ेगा. अब आज आप जॉगिंग करने तो जा रहे हो या दो लेडी, हाँ फास्ट फास्ट फास्ट, अच्छा फिर उसमें भी अगर दो तीन लोग इकट्ठे जॉगिंग कर रहे हैं, जॉगिंग तो कर रहे हैं, डिस्कशन की क्वालिटी क्या है?
1: कंटिन्यू, आई टेल यू, यू नो दिस इज अमेजिंग.
0: वॉकिंग कर रहे हैं सेहत के लिए, लेकिन अगर इतनी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होंगी वो चलते चलते, तो नेगेटिव थॉट्स सिर्फ माइंड पर नहीं ना, उसका इफेक्ट बॉडी पर भी है. तो हम फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन जब तक हम ये नहीं रियलाइज करेंगे कि फिजिकल हेल्थ पे भी हमारी इमोशनल हेल्थ का बहुत डीप इम्पैक्ट है, दोनों का ध्यान रखेंगे देन वी विल गेट दैट राइट, जिसको हम कहेंगे ना हेल्दी बींग, पूरी एक होलसम प्रोडक्ट हेल्दी होगा. आप एक फैक्टर पे ध्यान दो और दूसरे फैक्टर को और ही निग्लेक्ट करते जाओ, निग्लेक्ट करते जाओ,
1: और उसके ऊपर और स्ट्रेस क्रिएट करे जा रहे हो एक्चुअली,
0: तो फिर ये साइड पे क्या रिजल्ट निकलेगा? मेहनत ज्यादा और फिर भी रिजल्ट कम. आज डॉक्टर्स के पास इतने यंग प्रोफेशनल, स्पेशली यू नो जो प्रोफेशनल हमारे यूथ हैं, 30s की एज ग्रुप के अंदर है, कहेंगे मेरी लाइफस्टाइल ठीक है, नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, वेजिटेरियन फूड भी कई लोग ले रहे हैं, जॉगिंग मैं रोज जाता हूँ, फिर भी 30 की एज में आकर ये इलनेस क्यों? क्योंकि सिर्फ एक फैक्टर पे ध्यान नहीं रखा, बाकी सब चीजों पर ध्यान रखा, ये नहीं रखा कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या है सारा दिन. उसको तो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया या फिर उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट ही कर दिया, इसका कुछ नहीं हो सकता. टेंशन ये सब तो चलने ही वाला है, इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो बीमारियां हो रही हैं, उनका मैं इलाज करवा सकता हूँ.
1: सो व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ?
0: हैप्पीनेस
1: इज इमोशनल हेल्थ,
0: इज मेंटली हेल्दी. जिस क्षण आप खुशी का अनुभव नहीं कर रहे हैं उस समय
1: आप अनहेल्दी, मेंटली अनहेल्दी हैं.
0: तो ना अब आप अपना दिन का इंडेक्स चेक कर लेना कि कैसा बीत रहा है सारा दिन. क्योंकि क्यों, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? जब आप नॉर्मल फील कर रहे हैं, कंफर्टेबल फील, सपोज आई एम वॉकिंग, लेकिन वॉक करते करते मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है पैर में, एंकल में या नी में, लेकिन मैं उस दर्द के साथ भी तो चल ही लेती हूँ ना, चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं. कोई कहे डॉक्टर को दिखा, वहां दिखा लेंगे, टाइम नहीं है. धीरे धीरे मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ उस दर्द के साथ ही चलना. यू नो आई से आई डोंट हैव टाइम टू ट्रीट माई सेल्फ, या कौन जाए फिर डॉक्टर के पास. ओके, सो आई स्टार्ट वॉकिंग विद दैट पेन. So I accept that physical pain
1: as a part of my life. Yes.
0: And I say, it's okay, I will accept that. Lekin is that health? Is that a healthy foot, a healthy knee? Nahin. Maine us pain ko swikar kar diya, usko hi normal keh diya, lekin wo normal नहीं है.
1: उस वक्त हम अपने आप को क्या कहते हैं कि कहीं नेचुरली ठीक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा,
0: अपने आप ठीक हो जाएगा. सेम थिंग विद द स्टेट ऑफ माइंड. अच्छा दर्द है, टेंशन है, ये तो पार्ट है, चलते जाओ, घसीटते जाओ, इसको स्वीकार कर लिया. सभी को तो है, सिर्फ मुझे थोड़ी है. तो जो चीज सभी को है, यू नो व्हेन वी डू वर्कशॉप्स एंड ऑल, 100 लोग बैठे हो या 5000 लोग बैठे हो, जस्ट आस्क देम वन सिंपल क्वेश्चन, आपको टेंशन होती है? यू वोंट बिलीव, एक भी वर्कशॉप में आई हैव नॉट सीन कि कोई एक खड़े होकर कहे कि हाँ मुझे होती है. यूनानिमसली एवरीवन विल से सभी को
1: सबको होती
0: होती
1: है।
0: है,
1: हाँ
0: एंड इट्स सो ब्यूटीफुल टू सी द वे एवरीवन इज सेइंग सभी को होती
1: मतलब,
0: है।
1: और जवाब ऐसे आते हैं कि कौन है जिसको नहीं होती है।
0: एंड अगर कोई कहे भी दे ना इंडिविजुअली तो नो वन विल एक्सेप्ट। तो जैसे ही हमने कहा सभी को होती है, इट मेक्स मी फील अच्छा ठीक है,
1: आई एम पार्ट
0: तुम
1: ऑफ,
0: अजीब नहीं हो, ये बीमारी तो आजकल सभी को लगी है, और सभी को लगी होने से मैं उसको और स्वीकार कर लेती हूँ कि ये तो, और फिर हमने उसको ही नेचुरल उस, तो अगर हम अपने दर्द को शुरू होते ही चेक कर ले तो फिर हम क्या होंगे, इमोशनली अपना ध्यान रख सकेंगे। लेकिन दर्द है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, टेंशन हो रही है, चिड़चिड़ापन थोड़ा सा बढ़ता गया गुस्से में, हमने कहा कोई बात नहीं, चलते जाओ चलते जाओ, टाइम नहीं है रुक कर अपना ध्यान रखने के लिए। तो कैन वी कॉल दैट हेल्दी? कैन यू कॉल योर सेल्फ हेल्दी देन?
1: नो, यस, यू नो, बिकॉज इट्स वेरी वेरी
0: नेचुरल नहीं है,
1: इरिटेटिंग।
0: नेचुरल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, अंदर एक तकलीफ थोड़ी सी वो क्रिएट कर रहा है। तो इमोशनल हेल्थ मेरी किस लेवल पर है आज, ये पूछने के लिए मुझे किसी और के पास नहीं जाना है।
1: एक्चुअली, और उसे हम कुछ देर के लिए, जैसे दर्द को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं जब हम किसी और चीज में होते हैं, पर दर्द एक्चुअली फिर से स्पर्ट आउट हो जाती है।
0: जाता है तो हम कोई ना कोई सिचुएशंस या कोई ना कोई और तरीके ढूंढते हैं जिससे हम अपने माइंड को उससे डेविएट कर लें। सिमिलरली इमोशनल हेल्थ में भी कि हाँ है चलो कुछ ऐसा कर लें जिससे मैं थोड़ी देर इस बात को भूल जाऊं, शॉपिंग चले जाऊं, किसी से थोड़ी देर फोन पर बात कर लूं तो मैं अपने खालीपन को थोड़ी देर भूल जाऊं। लेकिन गया तो नहीं ना, सिर्फ उसको थोड़ी देर के लिए आपने साइड ट्रैक कर दिया, है अभी भी वहीं। सो कहीं ना कहीं बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ दैट वी आर ऑल लीडिंग, बट समवेयर वी आर नॉट एंजॉयिंग द ब्यूटी ऑफ इट जस्ट बिकॉज हम सिर्फ एक डायमेंशन को निग्लेक्ट कर रहे हैं। बाकी तो सबकी तरफ हमारा बहुत अच्छा ध्यान है, लेकिन जो फंडामेंटल डायमेंशन है जहां से सारा कुछ शुरू होता है, यू नो इट्स लाइक अ ट्री, सीड है, सीड की क्वालिटी को हम नहीं ध्यान रख रहे। हाँ बाकी ट्रंक बहुत अच्छा है, ब्रांचेस बहुत अच्छे हैं, लीव्स फ्रूट्स सब हम सहते हैं बहुत अच्छा, लेकिन सीड की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हर टाइम कुछ ना कुछ पर
1: कमी रह, तभी
0: प्रॉब्लम
1: तो
0: आते
1: कमी रह
0: जाए।
1: रही है, तभी तो हम ये नहीं कह रहे कि वो अच्छा है, हम उसको अच्छा बनाने का
0: हाँ
1: प्रयास
0: तो
1: कर रहे
0: क्योंकि
1: हैं।
0: इधर नहीं प्रयास कर रहे ना, हम सीड पर पानी नहीं डाल रहे तो हर एक पत्ते पर पानी डाल रहे हैं, हर एक फल पर पानी डाल रहे हैं, यहाँ डालते यहाँ तक पहुंचते ये सूख जाता, कहेगा बच्चों का ध्यान रखो या ऑफिस का करो, इनको खुश करो या इनको खुश करो, एफर्ट बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक कमजोर मन बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, कमजोर मन अपने को ठीक नहीं कर रहा लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा है। सपोज आज हम 10 घंटा काम करते लेकिन कल हम बीमार हैं फिजिकली और हम 10 घंटा काम करें, दोनों दिन में फर्क होगा या नहीं
1: बिल्कुल,
0: होगा? फर्क होगा, एक तो
1: हमारी
0: एफिशिएंसी
1: प्रोडक्टिविटी,
0: डाउन हो
1: हाँ
0: जाएगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है कर भी लेंगे लेकिन उस पूरे दिन को हम उतना ज्यादा इंजॉय नहीं करेंगे जैसे बाकी दिन को करते। इसलिए हम क्या करते हैं, आज तबीयत ठीक नहीं है ना, थोड़ा सा गैप लो, इसको ठीक करो ताकि फिर नेक्स्ट डे इट विल बी वेरी वेरी गुड। सिमिलरली अगर इसकी भी हेल्थ पर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो फिर हमें ड्रैग नहीं करना पड़ेगा अपने जीवन को, कर रहे हैं लेकिन बीमारी की हालत में कर रहे हैं, एंड तब सब कुछ करते हुए भी एक तो मेहनत लग रही है, एफर्ट लग रहा है, एंड समवेयर दैट फन और दैट एंजॉयमेंट इन लाइफ इज नॉट देयर, फिर एंजॉयमेंट के लिए और कुछ करना पड़ता है
1: ओ
0: बिकॉज
1: यस,
0: आई एम नॉट एंजॉयिंग लाइफ।
1: ओ यस, वेरी ट्रू। और वो एंजॉयमेंट के लिए हम क्या क्या करते हैं उस पर बात हम जरूर करेंगे, लेकिन आज जो आप बात समझ में आ रही है शिवानी बहन, वो ये कि और इनफैक्ट जहां आपने फिजिकल अनहेल्दीनेस की बात की, तो उसको ब्रेक हम सब देते हैं। यू नो आई नो वर्कहोलिक्स जो हैं वो कहते हैं एक किसी दिन गायब भी हो जाएंगे वो, दैट वी वांटेड टू टेक अ ब्रेक, यू नो, तो उनको फोन पर संपर्क करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दे सेड वी कुडंट फिजिकली गेट अप, यू
0: तो
1: नो।
0: आप देखो ना कि वो किस लेवल तक पहुंच जाते हैं एकदम, और फिर उनको टोटली डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। तो दोनों चीजें एक्चुअली बैलेंस्ड नहीं है, जो बहुत ज्यादा कर रहे थे वो भी बैलेंस्ड नहीं था, फिर एकदम से डिस्कनेक्ट कर देते हैं वो भी बैलेंस नहीं है, मतलब सडनली सबसे कट ऑफ हो जाते हैं। तो फिर वो एक्सट्रीम पर अपने जीवन को जैसे चला रहे हैं कि या तो बहुत ज्यादा उसके अंदर घुस गए हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और फिर वो कोलैप्स हो जाते हैं, तो फिर एकदम से उससे विड्रॉ करना पड़ता है।
1: आई थिंक यू, द वे यू हैव पुट इट एक्चुअली इज वेरी राइट, बिकॉज अभी तक हम ये मानते थे कि ये राइट तरीका है, क्योंकि क्योंकि आप काम करो तो खूब दबा के काम करो और जब रेस्ट लो तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट होके करो.
0: Absolutely, वो मशीन से भी जब काम करवाते हो, चलो ह्यूमन बींग तो छोड़ो, एक मशीन से भी अगर काम करवाते हो तो मशीन ठीक चल रही होगी तब तो वो आपका रिजल्ट देगी. वो कर कर कर कर करके आप उससे फिर भी आप बोलो नहीं आई विल नॉट स्टॉप टू ऑयल इट, आई विल नॉट स्टॉप टू मेंटेन इट, कितने दिन? फिर वो एक दिन एकदम बंद हो जाएगी और फिर उस दिन कहेंगे आज तो ये मशीन काम ही नहीं कर रही. जब वो मशीन ने थोड़ा सा ही सिग्नल देना शुरू किया था तभी अगर उसको ऑयल कर देते या ठीक कर देते, यू वुडंट कम टू दैट वन डे जिस दिन वो काम करना बंद कर देगी.
1: जब मैं काम कर रहा हूँ, चाहे मैं प्रोफेशन में हूँ, चाहे मैं अपने बच्चों की केयर कर रही हूँ, चाहे मैं मतलब कुछ भी जिस भी पर्पस में मैं हूँ, उस वक्त मैं अपने फिजिकल या मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर रह सकती हूँ.
0: ध्यान रखना, यू नो आजकल जैसे मेडिटेशन और ये सब बहुत अपकमिंग हो गया तो बहुत लोग कहते हैं ध्यान करना है, हमें ध्यान करना है. ऐसे ध्यान करना बहुत डिफिकल्ट है, उसको छोड़ो. ध्यान रखना है सिर्फ, यू नो ध्यान करना तो ऐसे फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज लगती है कि एकदम थॉटलेस हो जाएंगे,
1: मुझे टाइम सोचना पड़ेगा. ये
0: सारा दिन में सिर्फ अपना ध्यान रखना है. सबका ध्यान रख लेते हो, ऑफिस का, घर का, परिवार का, यहाँ तक कि अपनी गाड़ी का, अपने मोबाइल का, मतलब इवन एक अच्छी कार आपने ली है आप याद रखते हो कि हर महीने इस डेट पर इसको सर्विसिंग के लिए भेजना है. कितने महीने नहीं भेजेंगे और वो कितने महीने चलेगी बिना सर्विसिंग के, वी नो. सो इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ द कार एवरी मंथ आई विल सेंड इट फॉर सर्विसिंग. एवरीथिंग आई टेक केयर ऑफ, देन व्हाई डू आई जस्ट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ माय माइंड? That's all. I take care of everything. इसलिए ध्यान रखना हम सबको आता है. हमें कहीं से सीखने नहीं जाना है. We don't need to do anything. हमें कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है. सिर्फ हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है ये. किसी से भी आप पूछो किस किस का ध्यान रखते हो सारा दिन, फैमिली, ऑफिस, घर, यू नो बच्चे, परिवार, अपना, कहेंगे हाँ हम शरीर का ध्यान रखते हैं ना, इसको साफ रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं. तो अपना भी जब कहेंगे तो दे विल ओनली थिंक ऑफ कि इस बॉडी का ध्यान रखना, मन का ध्यान रखना.
1: और हम कितनी बार कहते हैं हमारा ध्यान तो वो रखेगा ना ऊपर.
0: पर जब हम ऊपर वाले के ऊपर भी डालते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम उसकी भी हेल्प इसी में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी सिचुएशंस में हमारा ध्यान रखेगा. मेरे मन का ध्यान, मेरी क्वालिटी ऑफ थॉट्स और फीलिंग्स का ध्यान, उसमें भी उसको तो नहीं याद करते बिल्कुल भी. आज आप सत्संग में जाओ, प्रवचन में जाओ, कुछ भी करो, वेरेवर, मंदिर जाओ, जहां भी जाओ, तो किस लिए जाते हैं? जाते हैं ताकि थोड़ी देर जाकर अच्छा लगेगा, पुण्य का खाता मेरा जमा होगा, मेरा वीक का अच्छा काम वाला कोटा हो जाएगा. हाउ मेनी ऑफ अस आर गोइंग विद द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग ऑन माई सेल्फ, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन? अपने थॉट्स, अपने संस्कारों के ऊपर काम करने के लिए हम सत्संग में जाते हैं क्या? हम सिर्फ वहां जाते हैं, एक घंटा दो घंटा बैठते हैं, बहुत अच्छी बातें सुनते हैं, सुनते सुनते यस वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके, सी यू नेक्स्ट फ्राइडे, दैट्स ऑल. एंड फिर ये फ्राइडे से नेक्स्ट फ्राइडे तक
1: भूल जाते
0: सेम लाइफ, सेम वैसे ही डिस्टर्बेंस, केओस, क्राइसिस, एवरीथिंग. फिर नेक्स्ट फ्राइडे गए, दो घंटा बैठे, किया. तो एम ऑब्जेक्टिव वहां भी ये नहीं है कि अपने मन का ध्यान रखना. तो कहीं ना कहीं सब चीजों का ध्यान रखते रखते इसको एक प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना है, क्योंकि सबका ध्यान रखने वाला ये मन है. ये शरीर भी नहीं है, ये शरीर भी आज बीमार थोड़ा होगा तो मैं चला लूंगी अगर मन खुश है. लेकिन सब कुछ ठीक होते भी अगर मैं इरिटेट होती गई, यू नो डिस्टर्ब होती गई, आई डोंट नो हाउ एफिशिएंट आई एम एट एवरीथिंग.
1: मेरे मन को खुश करने वाले तो दूसरे हैं, मेरा ध्यान रखने वाले तो दूसरे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, मेरे कलीग्स हैं, वो ध्यान रखेंगे मेरा, मेरे मन का तो कोई ध्यान रखेगा?
0: इसीलिए तो हाल फिर ऐसा हो गया ना आज, क्योंकि दूसरों पे डिपेंड किया. मेरे परिवार का ध्यान कौन रखता?
1: मैं
0: रखती हूँ. मेरे घर का ध्यान कौन रखता?
1: मैं
0: रखती हूँ. तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? मैं ही रखूंगी ना.
1: अपना ध्यान मैं कैसे रखूंगी? ये एक बात है जो हमें ये सीखनी पड़ेगी.
0: अपना में भी प्लीज लेट्स रिमेम्बर मन का, क्योंकि अपना कहते भी सिर्फ नहीं तो फोकस आता कि हाँ इस शरीर का ध्यान तो हम रखते ना, एक्चुअली सारा दिन तो इस शरीर के लिए ही चल रहा है. यू नो शरीर का कंफर्ट, शरीर का भोजन, शरीर के लिए गाड़ी, शरीर के लिए मकान, सब कुछ तो शरीर के लिए ही हो रहा है. मन का ध्यान और एक्चुअली जब अपने मन का ध्यान नहीं रख पाते तो किसी और के मन का ध्यान भी नहीं रख पाएंगे।
1: सच में देखें तो हाँ,
0: परिवार को भी अगर कहें, क्योंकि हम कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार का ध्यान रखना, परिवार के ध्यान में भी हम सिर्फ शरीर का ध्यान रख रहे हैं। बेस्ट स्कूल, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट ड्रेसिंग,
1: बेस्ट म्यूजिक टॉयज,
0: बेस्ट ऑल दिस, इमोशनल हेल्थ, बच्चों की इमोशनल हेल्थ का कौन ध्यान रख रहा है? कोई नहीं,
1: तो हमें पता ही नहीं ना। यस,
0: क्योंकि अपने ऊपर जो चीज नहीं हम प्रायोरिटाइज करेंगे। और मेन चीज ये है कि जहां बाकी ध्यान रखने की बात आती तो हम बिना अपना ध्यान रखे भी मैं आपका ध्यान रख सकती हूँ। सपोज मेरे पास आज दो ही फुलके पड़े हैं, दो ही चपाती पड़ी है, मैं बिना खाए आपको खिला सकती हूँ, तो इट्स ओके। मैं अपने लिए नए कपड़े नहीं लूंगी, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए नए कपड़े ले सकती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बिना खुश रहे औरों को खुशी नहीं दे सकती। दिस इज वन थिंग विच आई कैन नॉट गिव एनी वन एल्स टिल आई हैव इट।
1: गुड,
0: सो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट
1: अंडरलाइन
0: कि पहले मुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा, तब ऑटोमेटिकली औरों का ध्यान हो जाएगा। इफ आई एम इमोशनली स्ट्रांग, ऑटोमेटिकली मेरे बच्चे इमोशनली स्ट्रांग होंगे। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मैं ही सारा दिन डिस्टर्ब हूँ, मैं ही सारा दिन चिल्ला रही हूँ, मैं ही सारा दिन उनको गुस्सा कर रही हूँ, मेरी सेल्फ एस्टीम लो है तो उनकी सेल्फ एस्टीम
1: लो होती जाएगी। यस, आई थिंक यू वेरी राइट, और इस पर हमें बात, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे शिवानी आज की जो बातचीत हमने की है, एक अंडरलाइंड थिंग कि मैं सबका ध्यान बाकी चीजों में रख सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने अपना ध्यान, अपने मन का ध्यान नहीं रखा है तो किसी का भी ध्यान नहीं रख पाऊंगी। आई थिंक वेयर वी हैव स्टार्टेड, आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल, बिकॉज समवेयर दिस नीडेड टू बी यू नो अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। ओम शांति। अगर हम देखें तो सचमुच में हम ध्यान सबका रखते हुए अपना नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, कैसे रखना है इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत आसान है, हमें ध्यान रखना बेसिकली आता है, लेकिन कैसे रखना है ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आज जो हमें समझनी है, याद रखनी है, वो ये कि अगर मैंने अपने मन का ध्यान नहीं रखा, मैं किसी का ध्यान नहीं रख सकती, किसी के भी इमोशंस का, किसी के भी जो पूरे एस्पेक्ट्स हैं उनका ध्यान नहीं रख पाऊंगे। तो यहीं से आज शुरुआत करते हैं। हो सकता है आपके मन में कोई बात उठी हो, आपका हम स्वागत करते हैं। ये एक ऐसा मंच है जिस पर जीवन से जुड़ा कोई एस्पेक्ट है, कहीं कोई आपको लग रहा है कि मुझे हैप्पीनेस के बारे में ये बात करनी है, ध्यान रखने की बात करनी है, तो किस बात पर ध्यान रखना चाहते हैं, इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज शुरू कर रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स को जानने की। जी हाँ, खुशी का जो आंकना है वो कितना दिन भर में ऊपर नीचे होता है, वो कैसे रहेगा एक स्टेबल लेवल पर, इस बात का प्रयास हम करेंगे इस पूरी श्रृंखला में। आज शुरुआत है, आपसे अब विदा लेते हैं, लेकिन आने वाली कड़ियों में बहुत सी बातें जानेंगे। ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खास 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। हमारे चेहरे की मुस्कुराहट बताती है कि रास्ता हमें मिल गया है, लेकिन मुश्किल ये है कि उस रास्ते पर चलना कैसे है। और यही जानने के लिए कि किस तरह से जीवन के इस रास्ते को बेहतर बनाकर हैप्पीनेस की जो हम बात करते हैं, खुशी की जो बात करते हैं, उसे इस पूरी जर्नी में तराशना है। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ फिर हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत। ओम शांति। शिवानी, हमने बात ये की थी कि डेस्टिनेशन जो है वो खुशी नहीं हो सकती, हमारा जो पूरा रास्ता है, पूरा प्रोसेस है, जो जर्नी है, दैट शुड बी हैप्पीनेस। और हम जो खास मुद्दों पर जिन पर बात करते आ रहे हैं वो है ट्रस्ट। आज हमने पहले से ही सोचा हुआ था कि हम, क्योंकि जो बात हमने की थी वो थोड़ी सी आधी ये थी कि जब रिश्तों में विश्वास नहीं रहता तो किस तरह से उन्हें हैंडल किया जाए।
1: विश्वास हमारा खुशी का लेकिन एक बहुत बड़ा आधार है। यू नो, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस, ट्रस्ट इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। इट इज, बिकॉज जितना आई विल ट्रस्ट आई विल रिमेन इजी,
0: कंफर्टेबल,
1: बहुत कंफर्टेबल, और जीवन एकदम सरल बन जाती है एकदम, क्योंकि आपके पास वेस्ट थॉट की मार्जिन नहीं है ना। सी, थॉट्स जो सारे इतनी सारी चल रही हैं, वेस्ट थॉट्स बहुत चलती हैं, कहीं ये ऐसा ना कर दे, कहीं और किया कुछ भी नहीं होगा सामने वाले ने, कहीं ये ऐसा ना कर दे, ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं सच बोल रहे हैं, पता नहीं इसमें इनका फायदा तो नहीं है, मतलब इट्स अ चेन, अ चेन ऑफ थॉट्स।
0: कहां तक पहुंच जाता
1: बहुत
0: है
1: दूर,
0: वो थॉट,
1: बहुत दूर। एंड इतना सब टाइम में हम भारी हो गए, तो खुशी, व्हाट वी टॉक्ड अबाउट दैट डे, कि खुशी ऑलरेडी है, चाहिए नहीं, वो ऑलरेडी है, ये सारी चेन ऑफ थॉट्स क्रिएट की वो लीक हो गई। तो ये सारी जो छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस की है, दीज आर वेज इन विच वी कैन सस्टेन दैट हैप्पीनेस। उस चाहिए नहीं लेकिन वो है, उसको कायम रखने की विधि क्या है। तो विश्वास रखना लोगों पर, अपने आप पर, परमात्मा पर, यू नो, लाइफ कैन बिकम सो सिंपल। तो थॉट के ये कोई मुझे चीट नहीं कर सकता, क्यों मुझे कोई चीट करना चाहिए, व्हाट इज अ लॉजिकल रीजन, कोई रीजन ही नहीं है। तो जीवन बहुत सरल बन जाती है उससे।
0: जीवन की सरलता की बात की तो सचमुच गुत्थियां उलझाने में जितना वक्त लग जाता है सुलझाने में, तो अगर वो सरल है, सिंपल है, सीधी राह है, तो उस पर चलना आसान हो जाता है। लेकिन हम जो एक पूरा प्रोसेस में अगर हम देखें तो हम ये देखते आ रहे हैं कि एक थॉट जो है वो जनरेट करता है डेस्टिनी को, और नेगेटिव बिलीफ्स, यू नो। तो हमने ट्रस्ट से जुड़ी हुई जो बिलीफ्स की बात की थी कि विश्वास तो किया ही नहीं जा सकता,
1: आज दुनिया विश्वास के लायक नहीं है, यू नो, दिस इज अ बिलीफ। लोग धोखा देते ही हैं, लोग हैं ही वैसे, तो ये बिलीफ है। तो
0: और अगर आप विश्वास करो तो आंख बंद करके विश्वास ना करो, एक आंख खोल के विश्वास करो।
1: वो फिर वही है कि गुस्सा मुझे नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा गुस्सा चाहिए, तो थोड़ा और ज्यादा की कोई मार्जिन ही नहीं है। अगर वो है तो है, तो अगर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। देयर इज नो सच थिंग एज, यू नो, एक आंख से डाउट करो और एक आंख से ट्रस्ट करो।
0: लास्ट टाइम, यू नो, इफ यू रिमेम्बर, वी हैड टेकन एन इशू वेयर एक जो एमएनसी में काम कर रहे थे और उनको अपने बॉस पे विश्वास नहीं था, उनको लगा था कि उनका विश्वास टूटा है। ऐसे अगर हम आज बात करें तो पति पत्नी के रिश्ते में, अभी तक ये कहा जाता था कि मेरी पत्नी बहुत डाउट करती है, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं होता मुझ पे कि, और पत्नियां मतलब एक वो मजाक का विषय, हमेशा एक जोक होता था कि मतलब मुझ पे विश्वास नहीं करती है, सारी कितनी कविताएं भी बनाई गई हैं इसके ऊपर। लेकिन आज सचमुच में पति हो या पत्नी हो फर्क नहीं रह गया है, विश्वास का जो एक इतना प्यारा मधुर रिश्ता था वो कहीं एक पूरा का पूरा डोर जो है ना वो टूट गई है। ये एक बात, इस पे मैं जानना चाहूंगी कि क्या हुआ है। दूसरा एक बात ये भी कही जाती है कि रहीमन धागा प्रेम का, कि अगर एक बार वो गांठ पड़ गई तो वो नहीं खुल सकती, ये
1: भी एक बिलीफ है।
0: हाँ
1: ये भी एक बिलीफ है कि एक बार अगर वो गांठ बंद गई तो फिर नहीं खुल सकती।
0: नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है।
1: और हम उस प्रोसेस में क्या कर देते हैं कि एक गांठ तो बंद गई, हम और इतनी सारी गांठें बांध देते हैं उसके अंदर। कितना सरल होता अगर हम उस एक गांठ को खोल देते, लेकिन हमने सोचा एक बार विश्वास टूटा, अब नहीं फिर हो सकता। Why?
0: क्यों नहीं हो सकता?
1: Why? Talk it out, sort it out, and it's back to normal. आखिर वो सामने वाला वही तो है इंसान जिसपे मैंने कितना विश्वास किया था। हो सकता है परिस्थिति कुछ और बनी, हो सकता है कुछ उसके मन में आया, कोई भी बात हो, लेकिन एक घटना से या एक परिस्थिति से हमारा वो विश्वास इतना कमजोर तो नहीं होना चाहिए ना कि वो बिल्कुल इतना इजीली टूट जाए।
0: और सबसे बड़ी बात है, हो सकता है मेरी तरफ से कुछ ऐसा रिस्पांस रहा हो,
1: राइट,
0: जब तक मैं बात नहीं करूंगा या करूंगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि हो सकता है मेरा कुछ ऐसा रिस्पांस।
1: एब्सोल्युटली, जिसने वो, और कभी कभी हो सकता है कि एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये मेरे अपने मन की परसेप्शन है। हम जैसा सोचते हैं कि दूसरा कर रहा होगा, हम बस उसको उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। आप देखिए, दुनिया में कहते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड ट्रस्ट एंड वेरी इजी टू ब्रेक इट। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ट्रस्ट, इट टेक्स अ सेकेंड टू ब्रेक इट। मतलब हम बहुत समय एक व्यक्ति को परखने के बाद उस पर विश्वास करते हैं।
0: I think we should reverse it.
1: Beautiful. That's exactly what it is. Yeah. It should be actually the opposite. It's not that it should be, but it's beautiful if it is.
0: Yeah.
1: It should be easy to trust and very difficult to break it.
0: Yes. You know, like,
1: आप easily trust कीजिए, करते जाइए, आपको in return trust मिलता ही जाएगा. It is a law of karma. ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो एनर्जी आप देते हैं वही एनर्जी आपको रिटर्न में मिलती है। ये हो सकता है कि आई गिव यू समथिंग, मेरे को आपसे कुछ डिफरेंट मिले, लेकिन दैट्स बिकॉज देन आई हैव गिवन दैट टू समवन एल्स, यू नो। दैट्स व्हाई मैंने पहले भी आपसे जो शेयर किया कि सभी के साथ वो एक ही लेवल ऑफ वो रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 10 लोगों को बहुत मिसट्रस्ट करें, एक को जाके बहुत ट्रस्ट कर दें और फिर एक्सपेक्ट करें कि वो इन रिटर्न बहुत ट्रस्ट करें। दैट वोंट वर्क। मेरी नेचर वो बन जानी चाहिए,
0: you know, trusting yes, the other human being,
1: yeah,
0: जिस भी being से मैं मिल रही हूँ,
1: right,
0: it's again a beautiful human being because absolutely. I am a beautiful human
1: absolutely.
0: being.
1: अगर हम वही सोच लेकर चलेंगे कि that everybody is beautiful, you know, हर एक इंसान में कितनी अच्छाइयाँ भरी हुई है, उनको अच्छाइयों को देखते जाएं, उन पर विश्वास करते जाएं, तो ऑटोमेटिकली जिनसे भी हम मिलेंगे उनको एक अच्छी वाइब्रेशन हमारे साथ आएगी। और जब वो अच्छी वाइब्रेशन किसी को मिलती है तो अगर उसकी नेचर है भी धोखा देने की, वो आपको धोखा नहीं दे पाएगा।
0: That's a great trust actually. Yeah. You also have, you know,
1: yeah,
0: each individual.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: यहाँ एक ईमेल मैं लेना चाहती हूँ, हैदराबाद से हमें ये ईमेल आया है और राजीव मल्होत्रा ने मेल भेजा है, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मेल। ही सेज कि मेरे वाइफ और मेरी मैरिज को 5 years हो चुके हैं, वी गॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप, वी बीन मैरिड फॉर 5 years, और उससे पहले का हमारा अफेयर भी था 3-4 साल का। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो ऐसी ही वाइफ से शादी करना चाहता था, ऐसी लड़की से जो कि प्रोग्रेसिव है, जो अपनी नौकरी करती रहे और आगे ग्रो करे, और मैं ऐसा ही बना भी रहा, बनने की कोशिश भी करता रहा। लेकिन अब प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं आज तक अपनी वाइफ को भी नहीं कह पाया कि मैं अंदर से उसको लेके इनसिक्योर रहता हूँ। एंड कहीं ना कहीं कभी कभी मुझे लगता है कि वो लेट क्यों आती है, वो यू नो जहाँ पे होना चाहिए ऑफिस की पार्टी में भी क्यों चली जाती है, बट आई कांट टेल इट टू हर बिकॉज आई फील कि वो कहेगी कि आप बड़े ट्रेडिशनल हैं, कन्वेंशनल हैं, यू आर नॉट लाइक दिस। एंड उसमें क्या होता है, फिर मैं कोल्ड हो जाता हूँ। आई एम रियलाइजिंग माई ओन प्रॉब्लम बिकॉज देर इज नथिंग एल्स, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं ट्रस्ट उसको नहीं कर पा रहा हूँ बहुत ज्यादा। तो क्या मैं गलत हूँ, क्या मुझे उसको कह देना चाहिए? क्योंकि अगर मैं कहूंगा तो मुझे ये लगता है कि वो समझेगी नहीं, और दूसरी तरफ ये हमारे रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं कोल्ड हो गया हूँ।
1: वो तो नेचुरल रीजन नहीं देने दे वाले को तुरंत पता चल जाएगा।
0: लेकिन ये दिस इज अ प्रॉब्लम आई थिंक विद टुडेज मेट्रोसेक्सुअल मेन, यू नो, कि वो कहीं ना कहीं ग्रो तो करना चाह रहे हैं, जो आज औरत की आजादी है। दिस इज व्हाट आई फील अबाउट दैट शी हैज बिकम इंडिपेंडेंट, यू नो, वो अपनी इंडिपेंडेंट, दे आर हैप्पी विद इट। उसके साथ कंधा कंधा देने की कोशिश कर रहे हैं,
1: right.
0: उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन अपनी इनसिक्योरिटी
1: right.
0: वो क्यों नहीं शेयर कर पाते? दिस इज व्हाट आई फील।
1: ट्रू, बट दिस इज अ टिपिकल केस के जहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, यू नो। कोई तो केस है कि जहाँ आपको एक्चुअली पता चल जाए कि योर वाइफ और योर हस्बैंड इज डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट अग्रीएबल विद यू, एंड तब आप मिसट्रस्ट करें। अब ये तो एक्चुअली सिर्फ अपना ही वहम है, कुछ भी नहीं है।
0: नहीं, लेकिन क्योंकि ये बात नहीं करते हैं,
1: दैट्स
0: व्हाट ही सेज कि मैं इतना मेजर डिप्रेशन में चला जाता हूँ, किसी से बात नहीं करता, और क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसे बात करूँ।
1: ट्रू,
0: लेकिन मैं ये जानते हुए भी कि मुझे
1: लेकिन इस पर्टिकुलर केस में इसका सोल्यूशन सिर्फ इनके पास है। इनकी वाइफ इनकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक्चुअली उसने कुछ किया नहीं है। यू नो, इट्स माई ओन सेल्फ क्रिएटेड assumption के हो सकता है, नहीं भी हो सकता, पता नहीं क्या है। तो अगर हम सामने वाले से जाकर बात भी कर ले और वो व्यक्ति कह भी दे कि जी ऐसा तो बिल्कुल कुछ नहीं है, इट वोंट मेक टू मच ऑफ अ डिफरेंस
0: एक्चुअली डीप विद इन ही नोस कि ऐसा कुछ
1: क्योंकि उसे ये भी पता है कि एक्चुअली कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि एक एलिमेंट ऑफ डाउट ये जो अंदर बैठ गया है, इसका सोल्यूशन किसी और के पास नहीं है. उनकी वाइफ पे अगर वो बात भी करें तो इट विल अननेसेसरली आई थिंक ट्रिगर ऑफ अनदर एपिसोड, क्योंकि बहुत ज्यादा इस केस में रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि वाइफ की अश्योरेंस उनके डाउट को नहीं खत्म कर सकती है, क्योंकि उसके पास कुछ प्रूफ करने के लिए है ही नहीं. यू नो शी नीड्स टू प्रूव इट नाउ, तो उनके पास प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं है. शी कैन ओनली से कि देयर इज नथिंग लाइक दैट. अब आपके पास चॉइस है, आप बिलीव करना चाहें तो आप कीजिए.
0: विद दिस केस तो आई थिंक अगर वो वाइफ नौकरी भी छोड़ देगी ना, तब भी इनको वापस नहीं आ पाएगा.
1: एंड एक्चुअली दैट्स नॉट द सॉल्यूशन. सी जो आपने कहा अर्लियर केस में भी, जब वाइफ्स घर पे होती थी और हस्बैंड बाहर जाते थे, तब वाइफ हस्बैंड पे डाउट करती थी, क्योंकि सारा दिन एक सोच है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, पता नहीं किन किन लोगों से मिलते हैं. नाउ वो चीज दोनों पर एप्लीकेबल है, क्योंकि दोनों वर्किंग है, तो दोनों सोच रहे हैं पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं. इसका इलाज किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ मेरे अपने पास है. क्या रीजन है, मुझे अपने आप से पूछना पड़ेगा, व्हाट इज द रीजन दैट आई एम डाउटिंग द अदर पर्सन. क्यों? आई हैव टू गिव एन आंसर. एंड अगर आई एम नॉट एबल टू गिव माई सेल्फ एन आंसर, आप कितने भी दिन लगा दीजिए अपने साथ, बार बार अपने साथ पूछिए क्या रीजन है, सामने वाले ने ऐसी कौन सी चीज की है जिससे मेरे मन में ये क्वेश्चन उठा है. अगर आपको कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, आप उसको बात करके क्लैरिफाई कर लीजिए. लेकिन अगर आपको कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, देन पुट योरसेल्फ इन द अदर पर्सन्स प्लेस, कि अगर आपकी वाइफ आपके बारे में ऐसा सोच रही होती, आप कैसे कन्विंस करते?
0: कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते एक्चुअली.
1: और आपको अगर कन्विंस करना पड़ता, आप कैसे कन्विंस करते? सेम कन्वेंशन अपने आप को दीजिए कि वाई, अगर मुझे कोई रीजन नहीं मिल रहा है, उसने कुछ भी ऐसी एक भी एक्शन नहीं की है जिससे कुछ लगे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, व्हाई एम आई डाउटिंग, दैट्स माय नेगेटिविटी. मेरे अंदर ट्रस्ट की कमी है, सामने वाले की कोई गलती नहीं है. और ज्यादातर ऐसा होता है कि इफ ही टेल्स हिज वाइफ नाउ, द वाइफ हैज नथिंग टू प्रूव
0: एंड शी विल नॉट लाइक इट. द दूरियां और बढ़ती जाएंगी
1: एंड यू नो एट अ पॉइंट पर्सन कैन से कि आपकी चॉइस है, आप ट्रस्ट करना चाहें करें, नहीं करना चाहें नहीं करें, आई एम दिस वे, यू नो. एंड अगर जितनी देर आप नहीं करते, आप खुद ही अंदर घुटते रहते हैं. एक्सेप्ट कीजिए. और ये जो अभी डाउट का सीड जो ग्रो हो रहा है, इसको जितना जल्दी वो निकाल कर फिनिश कर देंगे, नहीं तो अगर कुछ नहीं भी था, अब हो जाएगा.
0: यस, यू नो. एंड इनफैक्ट ये जो आज के व्यक्ति,
1: क्योंकि नॉर्मल जैसे उन्होंने कहा कि कोल्डनेस आ रही है, मतलब आप दो लोग दूर हो रहे हो. जहां आप दो जने दूर होने लगे, वो वाइफ और लोगों से फ्रेंडशिप छोड़ेगी. वो कहेगी जी घर जाके क्या करना है, वही बातें, वही झगड़ा, मेरे से तो बात भी नहीं करते हैं. मतलब नथिंग रॉन्ग, बट शी विल स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम इन द ऑफिस, शी विल स्टार्ट सोशलाइजिंग मोर, because there is nothing to look forward to when she goes home.
0: Achha, in fact, same thing can happen to him, you know, because he is going into his own shell.
1: Right.
0: Somebody comes in his life who is able to break that,
1: Bilkul.
0: He'll go with her.
1: Because he will emotionally bend ho jayenge na dusre ki taraf. तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो सीड को ग्रो होने नहीं दो एंड रियलाइज कि मेरी लाइफ का ये सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है.
0: बट आई थिंक फर्स्ट स्टेप ही हैज टेकन इज एटलीस्ट ही हैज एक्नॉलेज्ड एंड हैज रिटन.
1: एब्सोल्युटली. तो मोस्ट ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी डन.
0: यस, यू नो, बिकॉज़ इट मींस द मोमेंट यू एक्नॉलेज इट देयर इज समथिंग रॉन्ग, इट मींस यू गो ऑन द.
1: और उनको खुद ही रियलाइजेशन, ये जो मेल से लग रहा है कि उनको ऑलरेडी रियलाइजेशन है कि ये कुछ भी नहीं है, ये मेरा वहम है. तो अपने आप से बात करनी पड़ेगी कि ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें आधारित है, मेरा जीवन आधारित है. क्या मैं अपने वहम की वजह से इसको सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूँ, अपनी खुशी को पूरा त्याग करने के लिए रेडी हूँ? और फिर भी अगर चाहिए, फिर भी अगर कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा, देन गो एंड टॉक. Go and talk to her. And अगर आप एक पॉजिटिव इंटेंशन से, ना अगेन हियर द इंटेंशन, यू नो, एक है मैं आपसे आकर बात करूं, ऐसा कुछ है? आप क्या करते हो? आप लेट क्यों आते हो? क्या जरूरत है पार्टी में जाने की? अटैकिंग मोड, यू नो, आप दूसरे को अटैक कर रहे हो, आप दूसरे को ये बताने की कोशिश कर रहे हो, आई एम चेकिंग यू, यू नो, यू आर रॉन्ग. द अदर पॉजिटिव इंटेंशन विल बी, यू नो आई नो योर नाइस, आई नो देर इज नथिंग रॉन्ग, मुझे पता है कि आप बिल्कुल मतलब कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, बट पता नहीं मेरी अपनी क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही है, कैन यू हेल्प मी, द होल एटीट्यूड विल चेंज एंड द वाइफ विल वॉन्ट टू हेल्प द हस्बैंड.
0: In fact, and I think he's one of the nice men.
1: Yeah,
0: you know,
1: बिल्कुल. Like, तो, but वो जो conversation करने से पहले intention को ठीक कर ले. If he's understood कि problem वहाँ नहीं, problem यहाँ है, he will have to accept that in front of the wife. कि you're absolutely fine, but you know,
0: problem.
1: You're my partner, and मुझे ये थोड़ी सी तकलीफ है. And I think the only person who can help me right now is you. You're my friend. तो बाहर किसी और friend से मैं जाके बात करूँ? इससे अच्छा बिफोर माई वाइफ या माई फ्रेंड. यू नो एक फ्रेंडशिप का जो रिलेशनशिप अगर पार्टनर्स में ये डेवलप हो जाए, यू डोंट नीड अनदर फ्रेंड.
0: डेफिनेटली. एंड द वे
1: एंड एक्चुअली हस्बैंड वाइफ के बीच में आई डोंट थिंक दे नीड अनदर फ्रेंड.
0: यस डेफिनेटली.
1: योर पार्टनर शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड बिफोर बीइंग योर लाइफ पार्टनर, ही शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड.
0: यस एंड इनफैक्ट ये कहा भी गया है पहले भी, यू नो कि पति पत्नी के बीच में कोई नहीं आ सकता कभी भी, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं.
1: एब्सोल्युटली. लेकिन जहां हम अपनी मन की बात या अपने घर की बात फिर अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें लगता है कि हमें किसी और से करनी पड़ेगी, एंड पता नहीं फिर दूसरा जना क्या राय दे उसके लिए, एंड Maybe the whole thing will go absolutely astray.
0: In fact, यहाँ तो शिवानी एक हमारे पास ये केस था जहाँ कुछ भी नहीं
1: कुछ
0: था,
1: भी नहीं था
0: और उसके बावजूद मिस्ट्रस्ट थी जो इन्हीं को अपने एक शेल में लेकर जा रही है.
1: Right.
0: एक और हमें एक बच्चे ने कॉल किया. That's again amazing, you know, 11th class का वो स्टूडेंट है. I don't want to take his name. बहुत अच्छे स्कूल में दिल्ली में पढ़ रहा है. He says that when I was in 9th, मैं एक बुरी आदतों में पड़ गया था. मतलब क्योंकि मेरी मम्मी शी इज अ यू नो समवेयर वाइस प्रेसिडेंट है, विदेशों में बहुत जाती है. मेरे फादर इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, आईटी सेक्टर में है. आई हैव गॉट अ यंगर ब्रदर ऑल्सो, तो वी बोथ यूज्ड टू बी अलोन विद द मेट. तो मेरी कंपनी ऐसी हो गई थी कि मैंने यू नो ड्रिंक्स की तरफ चला गया था, स्मोकिंग की तरफ चला गया था, एंड आई वॉज इन टू यू नो लाइक ऑल दोज नेगेटिविटी. सो समवेयर मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई से खत्म हो गया था. तो जब तक मम्मी को एहसास हुआ इस बात का तब तक मैं काफी डीप में जा चुका था. बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेक्टिंग विद माई मदर, बट स्टिल शी इज माई बेस्ट फ्रेंड. ही वॉज वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स हिज मदर. यू नो One thing I really liked about when he called up was that he was very positive towards his parents. नहीं तो usually क्या होता है कि बच्चे negative हो चुके होते हैं. But he said that I was in the negative thing, but I was hiding. Yeah, I was into girls and everything. So when my mother came to know about it, she talked to me and she tried. तब तक 10th के boards आ गए थे, ये हो गया था, और मेरे boards में exam result बहुत अच्छा नहीं आया. अब मेरी माँ के साथ बातचीत के बाद एंड यू नो मैंने खुद भी रियलाइज किया कि कहीं मेरा रिजल्ट ही इतना खराब आ गया तो मेरी जिंदगी आगे कहाँ जाएगी. एंड आई एम सपोज टू बी वेरी इंटेलिजेंट गाय, दिस इज व्हाट ही सेड. अब मैं अच्छा बन गया हूँ लेकिन मेरी माँ को अभी भी विश्वास नहीं है. अब मेरे को मुझे फ्रस्ट्रेशन शुरू हुई है. कहते हैं मेरे को उस पूरे दौर में मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज माई मॉम हेल्प्ड मी आउट. लेकिन नाउ व्हेन आई एम बिकमिंग गुड, आई एम ट्राइंग टू डू थिंग्स राइट. You know, whatever is said, right.
1: True.
0: I don't believe in it ki right hai ya wrong hai. Lekin because my mom says ki aap raat ke 11 baje tak nahi bahar rahi hai, toh main maan leta hoon. Chaliye, drinks aur booze aur ye sab kuch bhi nahi kar raha hoon. Apne doston ko bhi batlaya maine. But my mother doesn't, you know, believe in me. अब उस ट्रस्ट को मैं कैसे पा सकता हूँ? और मैं फ्रस्ट्रेट होने लग गया हूँ. और फिर मुझे लगता है कि फिर अगर यही है तो फिर मैं वही चीज़ें क्यों ना करूँ? हाँ, this is a major. जब तक वो प्रॉब्लम में था,
1: right.
0: तब उसने यू नो ऐसी कोई काउंसलिंग की उसे जरूरत नहीं पड़ी.
1: वो इट्स अ टिपिकल केस ना कि ट्रस्ट टूट गया. ये वो टिपिकल केस है ना जो हम कहेंगे कि टूट गया, अब इसको जुड़ने में
0: वही
1: बहुत
0: वो गांठ बस पड़ गई,
1: अब वो गांठ बनती जा रही है.
0: समवेयर आई थिंक मदर नीड्स टू बी
1: एक्चुअली अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी ये जो ट्रस्ट फैक्टर है आज वो थोड़ा सा, मतलब रिसेंटली हमने सुना कि आजकल डिटेक्टिव्स को पेरेंट्स एम्प्लॉय कर रहे हैं या हायर कर रहे हैं कि वो डिटेक्टिव उनके बच्चे के पीछे सारा दिन घूमते हैं. क्योंकि और फिर रात को एक फोन कॉल करके एक पूरी रिपोर्ट मिलती है, आपका बेटा या बेटी यहाँ गए, इनसे मिले, ये किया, वो किया, इतनी देर इनके साथ स्पेंड किया, व्हाटएवर द चाइल्ड्स entire day routine,
0: My
1: the detective
0: God.
1: is supposed to come and tell the parents. Of course, it's still in the very higher class families who can afford to hire these services. But the fact is, the trend has begun.
0: Paisa kitna kama bhi to rahe hain.
1: Right.
0: You know, middle class has actually grown.
1: True. Lekin wo kamane ke process mein wo bonding nahi hui, to us paise ko is tarah se use karna pad raha. To एक बच्चे से हम डायरेक्टली नहीं पूछ पा रहे हैं कि आपका आज का सारा दिन कैसा रहा, और अगर वो बता भी देता है तो हम सोचते हैं पता नहीं सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, और उसके लिए हम एक थर्ड पर्सन को यूज कर रहे हैं जो सारा दिन, मतलब दिस इज वेरी सैड बिकॉज इट शोज के वेयर वी आर हेडिंग, यू नो, क्योंकि अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से ज्यादा ब्यूटीफुल
0: एंड प्योर कोई नहीं,
1: कोई और रिलेशनशिप
0: का रिलेशनशिप तो, एंड लाइक आई वाज रियली टच्ड बिकॉज ही वाज वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स हिज मदर, सो ही इज सो हर्ट नाउ,
1: राइट, बट नाउ व्हाट ही विल हैव टू डू इज कि ही विल हैव टू अंडरस्टैंड ना थोड़ा सा आपको अपने, क्योंकि अगेन द थिंग इज कि हम मदर को नहीं चेंज कर सकते, यू नो, अगर हम उनसे बात कर रहे हैं ही हैज टू अंडरस्टैंड ही कांट चेंज हिज मदर, ही कांट गो एंड टेल हर यू नो स्टार्ट ट्रस्टिंग मी, ट्रस्ट डिमांड करने से नहीं मिलेगा, आप किसी को बोलो मुझे ट्रस्ट करो मुझे ट्रस्ट करो, ये नहीं होने वाला है, दूसरे की चॉइस है, मेरी चॉइस है कि मुझे उन्हें ट्रस्ट करना है, सो आई एम ट्रस्टिंग, उन्होंने मुझे कहा है लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन कंडक्ट, अब ये मेरी चॉइस है कि मैंने उसको एक्सेप्ट किया है, द थिंग इज कि जब हम कुछ करना शुरू करते हैं लेट अस अंडरस्टैंड दैट वी चोज इट, यू नो, लेट्स नॉट ट्राई एंड टेल अदर पीपल हम आपकी वजह से कर रहे हैं बिकॉज वी नॉट रियली, वी नॉट, हम कभी भी किसी और की वजह से नहीं कर रहे होते हैं, भले अगर मैं ये भी आपको कहूं कि मैं आपके लिए कर रही हूं लेकिन फिर भी ये मैंने चूज किया ना आपके लिए करना, आपने फोर्सफुली जब तक मेरे से आप नहीं करवाते, और कोई भी किसी से कुछ फोर्सफुली तो करा ही नहीं सकता, तो ये सारा दिन दूसरों पर जताना कि हम आपके लिए कर रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं, इट्स नॉट ट्रू, हम भले इंस्ट्रूमेंट हुए लेकिन हम फिर भी अपने लिए कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है उनके लिए ये करना,
0: अपनी वजह से कर रहे हैं,
1: दैट्स ऑल आई हैव टू अंडरस्टैंड, तो जब मुझे ये समझ में आ जाएगा कि दिस इज माय चॉइस, नाउ आई लाइक टू लिव दैट वे, यू नो, अगर वो सोचेगा कि वो रात को 11 बजे अपनी मम्मी की वजह से आ रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू लाइक द आइडिया, यू नो, वो अंदर ही अंदर फिर ये चॉइस रहेगी कि मैं माइट एज वेल फिर 1 बजे आऊं, That's not the solution. आप खुद चूज कीजिए, अगर आपको लगता है कि ये करके यू आर गिविंग समथिंग टू योर मदर, यू नो, यू आर मेकिंग हर हैप्पी और व्हाटएवर, सो यू चूज, अगर आपने चूज कर लिया इट्स योर डिसीशन, अपने डिसीशन को रिग्रेट नहीं कीजिए, ये आपका डिसीशन है, ये नहीं फिर एक्सपेक्ट कीजिए कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आई विल गो बैक टू द अदर चॉइस, ये तो मतलब ये तो अननेसेसरली अंदर फ्रस्ट्रेशन है,
0: लेकिन वो फिर उसको क्या करना,
1: यू हैव चोजन टू कम बैक एट 11, you have chosen not to drink or smoke or whatever for whatever reason, even if it's your mother, lekin choice aapki hai, ab aapki mummy in return aapko abhi trust kare ya nahi kare, give her some time, after all humne kuch ek choti moti galtiyan ki bhi to hai na, unka mistrust without reason nahi hai abhi, lekin hum unke liye kuch karna chahte hain agar to just go on doing it unconditionally, that's very important, it's not ki do din mein you should expect ke samne wala change ho jaye, give the other person time, aur aapko jo acha lag raha hai aap wo kijiye, agar aapko acha lag raha hai nahi drink karna tab aap kijiye, aur agar aap wo soch kar karenge to aapke paas ye option nahi hai ki agar unhone trust nahi kiya to might as well main drink karna shuru kar do, ye to koi solution hi nahi hua, to aap apni choice se kijiye and you know, remain in that positive state ki I'm doing this for myself, it's good for me, and continue doing it and wait for her to change.
0: And she will change.
1: She will.
0: The way we said unconditional trust, you know, unconditional love.
1: Absolutely.
0: These are the aspects which condition ki wo aisa karega to main aisa karunga, to main utna pyar kar sakta hu,
1: right.
0: To main, agar wo mujh pe vishwas wapas kar le tabhi main
1: to main karu, to nahi hum kare तब वो विश्वास ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. अभी हमारे रिलेशनशिप्स हमेशा इस चीज पर बेस्ड है कि अगर मैं रिसीव कुछ करूंगा तो मैं गिव करूंगा, मुझे आपसे प्यार मिलेगा तो मैं आपको प्यार दूंगा, आप मुझे रिस्पेक्ट करेंगे तो मैं आपको रिस्पेक्ट करूंगी. कीप ऑन वेटिंग, कीप ऑन वेटिंग, इट इज नेवर एंडिंग. द सिंपलेस्ट थिंग इज आप देते जाइए विदाउट एक्सपेक्टिंग लेने का, आप देते जाइए, लॉ ऑफ नेचर आपको वापस मिलेगा.
0: ब्यूटीफुल.
1: आप रिस्पेक्ट देते जाइए
0: एंड
1: देते जाइए
0: एंड ऑलवेज रिमेम्बर दैट ये दे हम अपने कारण रहे.
1: एंड ये भी याद रखें कि मैं रिस्पेक्ट अपने लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उन्हें रिस्पेक्ट करना, मैं कर रहा हूँ, नॉट दैट मैंने तो दिया लेकिन उन्होंने तो नहीं किया, तो आप मत कीजिए फिर. आप उनसे लेने के लिए रिटर्न में कर रहे थे? नहीं, आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है उनसे रिस्पेक्ट करना. ये जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है अपनी हर थॉट की और फीलिंग की, दिस कैन मेक माई लाइफ वेरी सिंपल एंड इट कैन मेक माई लाइफ विदाउट एक्सपेक्टेशंस.
0: ब्यूटीफुल. एंड इन फैक्ट द वे वी हैव यू नो, ये सारी जो गलत मान्यताएं हैं कि मैं ये कर रहा हूँ ताकि वो ऐसा करे या मैं ऐसा इसलिए कर रहा ताकि उन्होंने कहा है,
1: right.
0: ये कंसेप्ट एक्चुअली बहुत क्लियर हो जाना चाहिए.
1: अपनी सोच और अपने बिहेवियर को चूज करके चलिए. इसलिए नहीं चले उन्होंने ऐसा किया तो मैंने बदल दिया, वो ऐसा करेंगे तो मैं बदल जाऊंगा. नहीं, माय बिहेवियर शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर पर्सन्स बिहेवियर. दिस इज मी, दिस इज माय बिहेवियर. यू कैन बी व्हाट यू वांट बट आई विल बी व्हाट आई वांट.
0: एंड दिस इज द वे आई हैव बिकम द मास्टर ऑफ माय डेस्टिनी
1: एंड आई एम मास्टर ऑफ माय ओन सेल्फ फर्स्ट,
0: यू नो,
1: दैट इज व्हाट इट इज.
0: सो बहुत बहुत शुक्रिया. आज हमने एक्चुअली दो ऐसे रियल लाइफ केसेस लिए जो एक जहां हमने ये देखा कि कुछ है ही नहीं तब भी मिसट्रस्ट है, और जहां एक ट्रस्ट टूटी तो अब वो जो हैंकरिंग है कि मेरी वो ट्रस्ट वापस लौटे तो उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा. थैंक यू सो मच शिवानी. जी हाँ, हमें बहुत कुछ ऐसा पता चल रहा है जिन पर हम अभी तक बिलीव करते आ रहे थे, जिन्हें मान रहे थे कि यही सही है, वो मिथ्स टूटते जा रहे हैं. इसी से हमारा पॉजिटिव जो एटीट्यूड है, पॉजिटिव थॉट्स का जनरेशन होगा. लेकिन उसे किस तरह से प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट करना है, कंटिन्यूस अपने आप को याद दिलाते रहना है, क्या छोटे छोटे वो तरीके हैं जो जिंदगी में अपना सकते हैं, यही रहेगा हमारा मुद्दा अगली कड़ी का. तो आप भी हमारे साथ बने रहिए. अगर आपके पास भी कोई ऐसी बात है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, किसी सवाल का जवाब तलाशना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं. फोन कीजिए 9873666555 पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो इसी के साथ वक्त है कि आज आपसे विदा लें, लेकिन इस दुआ के साथ और इस वादे के साथ कि जिन मूल्यों पर, जिन पॉजिटिव थॉट्स पर हम आज तक बात करते आ रहे हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और मैं अपना मास्टर, अपना मालिक खुद बनूंगा. अब दीजिए इजाजत. नमस्कार.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: दस्तंबू नामक अहम दस्तावेज में 1857 के महासमर के वाकयात को अपनी शायरी में ढाला है। उन्हें ये काम खुद बहादुर शाह जफर ने सौंपा था। गालिब की कलम ने 11 मई 1857 से लेकर 20 सितंबर 1857 तक के अंतराल का सफर तय किया था, यानी क्रांतिकारियों के दिल्ली में दाखिले से लेकर विप्लव के दमन तक। गालिब इतिहासकार नहीं थे, इसलिए दस्तंबू में तथ्यों और घटनाओं से ज्यादा जज्बात मिलते हैं। अमन पसंद इस शायर के लिए खून खराबा सिर्फ खून खराबा ही था, फिर चाहे वो क्रांतिकारियों का हो या अंग्रेज सैनिकों का। गालिब की शायरी में अनचाहे ही दोनों तरफ का दर्द समा गया। गालिब द्वारा लिखे गए क्रांति के रोजनामचा में क्रांतिकारियों के व्यवहार, दिल्ली तख्त पर उनका कब्जा और अंग्रेजों द्वारा विप्लव को कुचले जाने की घटनाओं का विवरण मिलता है। ये दस्तावेज उन लोगों के लिए खास अहमियत रखता है जो स्वतंत्रता संग्राम पर शोध करने के इच्छुक हैं या उसमें दिलचस्पी रखते हैं। जिसने भी दस्तंबू को पढ़ा सिर्फ इतना ही कहा, यूं तो है दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और।
1: अरे काका, चाय के साथ क्या क्या सुनाने वाले हो भाई?
2: अरे बेटा, आज हम आपको सुनाएंगे मिर्जा गालिब के बारे में।
1: ओहो, मिर्जा गालिब, वाह काका, क्या बात है।
2: तो सुनोगे ना?
1: कैसी बात करते हो काका।
2: ध्यान से सुनना बेटा, बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ।
1: अरे आपकी हर बात जरूरी होती काका।
2: बात है सन 1857 की। शहर दिल्ली, तख्त पर बैठा था मुगल खानदान का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर।
1: हाँ, बहादुर शाह जफर।
2: सेहत के साथ जिसकी सियासत भी कमजोर हो गई थी बेटा।
1: अच्छा।
2: मुल्क में बगावत की आग सुलग रही थी। उस वक्त कानपुर, बिठूर, लखनऊ, बैरकपुर, मेरठ सभी जगहों पर हिंदुस्तानी फौजियों ने कंपनी राज के खिलाफ बगावत कर दी थी। और इस दौर का चश्मदीद गवाह बना उर्दू का अजीम शायर मिर्जा असदुल्ला खान।
1: मिर्जा असदुल्ला खान?
2: अरे बेटा, जिसे हम सभी गालिब के नाम से जानते हैं।
1: अच्छा,
2: मिर्जा गालिब साहब।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
2: उर्दू का अजीम शायर बेटा, गालिब ने उस दौर का ब्यौरा तारीख दर तारीख अपने अंदाज में दर्ज किया है।
1: क्या बात है काका, ये सब तो पता ही नहीं था हमको।
2: अरे तो बेटा, मैं बता तो रहा हूँ। और सुनो, जो तारीख का एक बेहद अहम दस्तावेज है। हाँ।
1: अरे वाह काका यार, मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। पर एक आध चाय और हो जाती तो।
2: अरे नहीं बेटा, अभी लो। अरे टिल्लू, चाय वाय तो पिलवाओ बेटा, कितनी देर हो गई, क्या है यार?
3: अभी आया।
1: सच में काका, आपकी चाय के साथ तो

0: का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, अब किसी बात पर नहीं आती। हम वहां हैं जहां से हमको भी, हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती, कुछ हमारी खबर नहीं आती। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, शर्म तुमको मगर नहीं आती।
1: ओहो, अब ये इस बेवक्त कौन आदम का?
0: दरवाजा खोलिए, जान जाएंगे जनाब।
1: आज आपने जरा भी आराम नहीं किया है। हम कह देते हैं, हम ये लापरवाही सेहत के मामले में बर्दाश्त ना करेंगे मिर्ज़े।
0: अरे जाइए, पहले दरवाजा तो खोलिए।
1: आते हैं आते हैं।
2: मिर्ज़ा घर पर है?
1: जी हैं, तशरीफ लाइए।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कहिए मियां हरगोपाल, इस वक्त कैसे जहमत की?
2: इधर से गुजर रहा था, सोचा आपका दीदार करता चला।
0: अच्छा किया मियां आपने, हम तो मियां बस हवेली में कैद होकर रह गए हैं।
2: कैसी बात करते हैं मिर्ज़ा।
0: मियां कैद नहीं है तो और क्या है, हमारी गली तो उजड़ गई। अभी आते हुए आपने देख ही लिया होगा। बस बचे हैं हम जैसे चंद लोग।
2: हाल तो पूरे शहर का बेहाल है मिर्ज़ा, जिधर देखो सन्नाटा पसरा रहता है।
1: अरे बाजार में दबी जबान से लोगों को बातें करते सुना है मैंने कि मेरठ छावनी से बागी कभी भी दिल्ली में घुस सकते हैं।
2: हे भगवान, पहले ही ये हाल है दिल्ली का, तब न जाने क्या होगा। मुझे तो आज शाम ही मेरठ लौट जाना है, वहाँ पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा।
0: अरे यही ठीक होगा जनाब, मुसीबत के समय घर वाले आपकी और आप घर वालों की फिक्र करें, इसमें क्या तुक है।
2: आप मेरे उस्ताद हैं, इसलिए आपकी फिक्र लगी रहती है। आपको खत लिखता रहूंगा, ये कुछ रुपए लेकर आया हूँ, अब मना मत कीजिएगा।
0: मियाँ वक्त ने हमें इस लायक ही नहीं छोड़ा है कि मना करें।
2: अच्छा इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज।

0: आधा बजा लाता हूँ हुजूर, पर आज ये इतनी मायूसी क्यों है जनाब?
1: खुश होने की कोई वजह कहाँ बची है शहर में जनाब?
0: हुजूर, अंग्रेजों ने तो दरिंदगी की हद कर दी।
1: हाँ, कल असलम साहब आए थे, उनसे पता चला कि अंग्रेजों ने शहर में दाखिल होते ही कत्लेआम मचा दिया, आदमी औरत तमाम बेसहारा और मजलूम लोगों को काट डाला।
0: रे जनाब, मकान दुकान जहाँ जहाँ से गुजरे सभी को जला दिया एक कमबख्तों ने।
1: अरे छोड़ो मियाँ, चलिए कल रात कुछ नए शेर कहें।
0: इरशाद।
1: बेदरो दीवार सा एक घर बनाना चाहिए।
0: वाह वाह, वल्ला वल्ला, घर बनाना चाहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह।
1: बेदरो दीवार सा एक घर बनाना चाहिए, कोई हमसाया ना हो और पासबा कोई ना हो।
0: सुभान अल्लाह मिर्जा साहब, पासबा कोई ना हो।
1: रहिए अब ऐसी जगह चलकर, गौर कीजिए, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो।
0: वाह वाह,
1: हम सुखन कोई ना हो और हम जुबां कोई ना हो।
0: वाह वाह मिर्जा साहब, बहुत खूब, बहुत उम्दा ख्याल है, बहुत उम्दा ख्याल है।
1: हम जुबां कोई ना हो, और कहते हैं बेदरो दीवार सा एक घर बनाना चाहिए।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब।
1: कोई हमसाया ना हो और पासबां कोई ना हो।
0: कोई ना हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मिर्जा साहब।
1: पड़िए अगर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार।
0: वाह वाह वाह,
1: और अगर मर जाइए तो नोख्वा कोई ना हो।
0: आह, बहुत बहुत खूबसूरत ख्याल है, बहुत खूबसूरत ख्याल है मिर्जा साहब।

0: मिर्जा, कैसे नजारे देखने पड़ रहे हैं।
1: मिर्जा साहब, बेशुमार औरतों और मर्दों के ठट के ठट, अमीर भी और गरीब भी शहर छोड़कर भाग गए हैं। अमीर जादों को भी बदहवास भागते देखा है हमारी आंखों ने।
0: हाँ, हमारी गली से भी ज्यादातर लोग घर छोड़कर जा चुके हैं।
1: कंपनी बहादुर की घुड़सवार फौज जवान औरतों के साथ,
0: अल्लाह,
1: और शहर के बाहर जो छोटी छोटी बस्तियां और मकबरे हैं, वहाँ जाकर बेसहारा और लाचार लोगों ने पनाह लिए जनाब।
0: मई की इस चिलचिलाती धूप में तवे सी तपती जमीन और आसमान से परस्ती आग के बीच दोजख में है जिंदगी।
1: सुना है हिंदुस्तानी फौजी बहुत जल्दी मेरठ से कूच करके दिल्ली पहुंचेंगे।
0: क्या लगता है आपको, इससे हालात बदल जाएंगे? हालात और बिगड़ने का अंदेशा पैदा हो जाता है।
1: या अल्लाह, देखें क्या होता है।
0: यही ठीक रहेगा जनाब, ना हम उन्हें न्योतने गए और ना ही वे हमसे इजाजत लेकर दिल्ली में घुसेंगे।

0: अरे काका, दिल घबराने लगता है सच में। क्या हालात रहे होंगे उस समय?
1: दिल्ली के हालात हर दिन और भी ज्यादा संगीन होते जा रहे थे। जर्रे जर्रे पर दहशत तारी है। गालिब उस दौर के हर दिन का बारीक से बारीक वर्णन दर्ज करते जा रहे थे। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के वो शायरी के उस्ताद तो थे ही, दोस्त भी थे। बादशाह गालिब की सबसे ज्यादा इज्जत करते थे। खुद तंगहाली में थे, फिर भी गालिब की पेंशन शाही खजाने से जाती थी।
0: ओहो,
1: दरअसल गालिब को इतिहास लिखने का काम बादशाह ने ही सौंपा था।

0: हुजूर, गली के लोगों ने गली का दरवाजा बंद करके पत्थर चुन दिए हैं।
1: अरे बाल मुकुंद, हर आदमी अपने बचने की सूरत ढूंढ रहा है।
0: अरे पर इस तरह हम घर के अंदर कैद होकर रह जाएंगे मिर्जा साहब, रसद पानी कहाँ से आएगा? गली में कोई कुआं भी तो नहीं है।
1: अरे भाई बाल मुकुंद, इस तरह सोच सोच कर मरने से अच्छा है कि जब तक है खाना पीना और मस्त रहना।
0: मिर्जा साहब, सोचता तो मैं भी यही हूँ, पर मुमकिन कहाँ हो पाता है, हम आपके जैसे आलिम फाजिल तो है नहीं।
1: मिया ये खूब कही आपने। अरे भाई, गोरों ने इल्म हासिल करके क्या कर लिया, दरिंदगी के नए नए तरीके सीख लिए। लगता है मिया कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। आइए दरवाजा खोलिए।
2: गजब हो गया मिर्जा साहब।
1: अरे ठहरो मियां, अरे क्या हुआ जो इस कदर तुम्हारी दंगा तुड़ी हुई है?
2: अरे मैंने आपको मेरठ छावनी के बारे में कुछ बताया था ना?
1: हाँ बताया तो था पिछली मुलाकात में।
2: अरे जनाब, बागी हिंदुस्तानी फौजी दिल्ली में घुस गए हैं और शहर में अंग्रेजों का कत्लेआम चल रहा है, भाग रहे हैं गोरे दिल्ली छोड़ छोड़ कर।

0: शहर में बागी फौजियों ने चप्पे चप्पे पर कब्जा कर लिया है और सुना है कि गोरे दिल्ली छोड़कर भाग गए हैं।
1: जी हाँ, गोरों से लूटा हुआ तमाम चांदी सोना उन्होंने शाही खजाने में जमा कर दिया।
2: अरे मिर्जा, कल तो बागियों के सरदारों ने बादशाह से मुलाकात की। सभी की ख्वाहिश है कि वो बागियों के सरपरस्त बने इस मुहिम में।
0: बादशाह ने क्या कहा, कबूल कर ली उनकी दरख्वास्त?
1: अब पूरी खबर तो नहीं है मिर्जा, पर सुना है इस मसले पर बादशाह पशुपेश में है।
0: मैं एक 82 साल के कमजोर और बूढ़े हो चुके शख्स से क्यों ये उम्मीद लगाई जा रही है?
2: मिर्जा साहब, बागी आज भी उन्हें हिंदुस्तान का बादशाह मानते हैं।
0: अरे मियां, वो हैं आज, पर कुदरत भी तो कोई चीज है। इस उम्र और सेहत के साथ जंग लड़ना मुमकिन नहीं होता है।
1: अरे मिर्जा साहब, बागी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं, उन्होंने तो बादशाह को सलामी भी दे दी है।
0: अरे तो ये खुशी की बात है, खुदा बादशाह को लंबी उम्र अता फरमाए।
2: मिर्जा साहब, इस मौके पर कुछ शेर तो कहिए।
1: हाँ हाँ मिर्जा साहब,
0: जरूर जरूर, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, और कीजिएगा।
1: जी हाँ जी,
0: कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं आज गालिब गजल सरा सरा ना हुआ।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है मिर्जा, क्या बात है मिर्जा।
0: जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ।
1: वाह वाह मिर्जा वाह, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। वाह मिर्जा वाह वाह वाह,
0: है खबर गर्म उनके आने की, और कीजिएगा। है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह इरशाद।
0: क्या वो नमरूद की खुदाई थी?
1: मिर्जा एक बार और, एक बार।
0: क्या वो नमरूद की खुदाई थी कि बंदगी में भी मेरा भला ना हुआ।
1: वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह मिर्जा सुभान अल्लाह।

0: अरे बड़ी तकलीफ होती है काका दिल को।
1: बागियों द्वारा बहादुर शाह जफर को बादशाह जैसी इज्जत देने से गालिब के मन में बागियों के प्रति काफी सहानुभूति थी, पर मिजाज से अमन पसंद गालिब को खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं था।
0: क्या बात है काका।
1: फिर चाहे वो विद्रोह के लिए हो या विद्रोह को दबाने के लिए, दस्तंबू में बागियों के व्यवहार और उनके द्वारा बादशाह की सत्ता की स्थापना और अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को फिर से हत्या लेने की घटनाओं को लिखते हुए गालिब के अंदर का शायर कह उठता था।

0: वो अपनी खून ना छोड़ेंगे, हम अपनी बज्म क्यों बदलें। सुबुख सर बन के क्या पूछें कि हमसे सरगिरा क्यों हूं, कि हमसे सरगिरा क्यों हूं।
1: अगर वो अपनी आदत नहीं बदलते तो हम अपने तौर तरीके नहीं बदलें। कमजोर है तो गुस्सा करने की जरूरत क्या है।

0: Bandit.
1: Fire!
2: गजब हो गया हुजूर, गजब हो गया। गोरो ने फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया है, फिर से हमला किया है।
1: लाहौल विला कुवत।
3: इस बार दोगुनी फौज और असला लेकर आए हैं सुना है।
2: अरे साहब, शहर मैदान जंग बना हुआ है।
3: मालिक खैर करे, कुछ भी ठीक नहीं है। कब कहां क्या हो जाए।
1: हमारी गली के लोगों के पास खाना खत्म हो चुका है।
2: अरे मिर्जा साहब, एक बूंद पानी नहीं है। दो दिन रात से सब लोग भूखे प्यासे।
3: आज तो आपकी गली का दरवाजा भी खुला मिला।
1: अरे तो मियाँ क्या करेंगे, पानी की तलाश में निकले हैं मर्द। बिश्ती कहाँ बचा है बस्ती में। अब
2: मिर्जा साहब, आस पास मीठा पानी मिलने का सवाल ही नहीं था। बारूद बनाने में काम आने वाला शोरा मिला। नमकीन पानी पीकर प्यास बुझा रहे हैं।
1: अभी उस दिन जब पानी बरसा तो एक चादर बांध कर उसके नीचे मटका रखकर हमने पानी हासिल किया। ये हाल है हमारी गली का।

0: कोई है घर पे? अरे खोलो, दरवाजा खोलो।
1: जी कौन है?
0: अरे मिर्जा है घर पर।
1: ठहरो, खामोश, कोई है, कोई है, मैं देखता हूँ। जी कौन है?
0: अरे मैंने कहा मिर्जा है घर पर।
1: हुजूर कोतवाली से आए हैं?
0: हुजूर की औलाद बाजीवाट, ए तुम सब लोग घर में घुसो और तलाशी लो, चलो।
1: अरे अरे मियाँ, ये क्या है वाकत है?
0: खामोश खामोश रहिए आप।
1: अरे आप इस तरह बदसलूकी नहीं कर सकते।
0: अरे घर में कौन कौन है?
1: अब हमारे अलावा हमारे दोनों बच्चे और चंद नौकर हैं।
0: आपको हमारे साथ चलना होगा।
1: कहाँ चलना होगा?
0: लगता है आपको सवाल करने की बहुत बुरी लत है, हैं? सवाल करते हो?
1: अरे मियाँ, पर हमें ये जानने का हक है।
0: कुतुबुद्दीन सौदागर की हवेली में।
1: वहाँ क्या है?
0: कहाना, अभी सवाल न करें। वहाँ कर्नल ब्राउन मुकाम किए हुए हैं, उनके सामने आप सबको पेश होना है। चलिए।
1: ठीक है मियाँ, चलो
0: सवाल करते हैं। सवाल
2: तुम्हारा नाम?
1: मिर्जा असदुल्ला खान।
2: ओ, मुसलमान है?
1: जी हुजूर।
2: तुम क्या करता है?
1: शायर हूँ हुजूर।
2: ओ, तो तुम पोइट्री करता है?
1: जी हुजूर, उर्दू पोइट्री।
2: हम थोड़ा थोड़ा उर्दू पोइट्री जानता है। आई लाइक उर्दू पोइट्री।
1: शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया।
2: कोटवाल।
3: जी हुजूर।
2: खान साहब और उनकी फैमिली को छोड़ दो।
3: जी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: आइए मियां हरगोपाल आइए।
1: सुना कोतवाल आपको मैं खानदान के ले गया तो मैं भागा भागा चला आया मेरठ से।
0: खैर और सुनाइए।
1: पहले आप सुनाइए, सब खैरियत तो है?
0: कोई कर्नल ब्राउन है, उनके सामने पेश होना था, हो लिए, भला आदमी निकला, हमें फौरन छोड़ दिया।
1: भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं अभी शहर के बाहर कैद खाना और भीतर हवाला देखकर आ रहा हूँ।
0: सुना है बुरा हाल है वहाँ का?
1: हुजूर कुछ न पूछिए, बेशुमार बेगुनाह वहाँ ठूंस दिए गए हैं, कितनों को फांसी चढ़ा दिया कोई नहीं जानता।
0: या अल्लाह या अल्लाह, दिल्ली में अब शायद बमुश्किल 1000 मुसलमान बचे हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, बाकी सबको गोरों ने मार डाला। या अल्लाह,
1: शहर पूरा उजड़ गया, सारे लोग जो बच गए वे कहाँ हैं?
0: शहर के इर्द गिर्द दो दो चार चार कोस पर टीलों गड्ढों और छप्परों पर टिके हुए इंतजार कर रहे हैं वक्त के सुधरने का।
2: पूरा दिल्ली शहर उजड़ा तैयार था। उस उजड़े शहर के बित्ते बित्ते का हाल गालिब के खास अंदाजे बयां में मिल जाता है उनके रोजनामचे में। सन 1857 के उस दौर की दिल्ली की काफी मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने आती है उस रोजनामचे दस्तंबू में। इसीलिए तो गालिब ने खुद के बारे में खुद ही कहा है,
0: हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां और पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकनी है मेरी तबा तो होती है रवां। या रब ना वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो ना दे मुझको जबां।
3: निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

सर्दियों में सर्दी ज्यादा। कहा जाता है इसका कारण आइटम बम के टेस्ट हैं। अभी चीन ने एटम बम बनाकर दूसरा टेस्ट किया। सूचना ये भी मिली है कि फ्रांस ने भी एटम बम बना लिया है। भारत का अटल फैसला है कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे संसार के नष्ट होने का भय हो। आइटमी दौर में रूस और अमरीका सबसे आगे हैं

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मी मोनाली सावगत। तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: Awakening with ब्रह्मकुमारीज।
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मकुमारीज। वेलकम सिस्टर।
3: ओम शांति।
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
3: थैंक यू सो मच
2: सिस्टर। एक बहुत ही स्ट्रांग लाइन मैंने पढ़ी कल और शेयर करना चाहूंगा। It says it's a universal law. I don't know who's written it and why it is a universal law, but inka kehna hai. It's a universal law. Intolerance is the first sign of an inadequate education. An ill-educated person. An ill-educated person behaves with arrogant impatience, whereas truly profound education breeds humility.
3: बहुत strong है।
2: कैसी कैसा लिखता है?
3: It's true ना?
2: और बोलता है universal law भी बोलता है।
3: Universal law उसको क्यों कह रहा है? क्योंकि it means कि ये एक बहुत basic चीज है कि जो हर आत्मा को पता ही होनी चाहिए कि टॉलरेंस कि हम सब अलग हैं, अलग हैं, अलग थे और अलग ही रहेंगे और इस भिन्नता के साथ ही हमें एक दूसरे के साथ चलना है। ये एक बहुत ऑब्वियस चीज है, यूनिवर्सल चीज है और इतनी भी बात न पता होना और न पता होने के कारण एरोगेंट और इम्पेशेंट बिहेव करना तो ये अज्ञानता की निशानी है। अनएजुकेटेड पर्सन ही कॉल्स दैट पर्सन, कि जिसको वो वाली डिग्री की एजुकेशन नहीं लेकिन जीवन के ज्ञान की एजुकेशन नहीं है, नहीं समझ नहीं है। तो कितनी पावरफुल ये लाइन है कि जो ज्ञानी है उसके अंदर ह्यूमिलिटी अपने आप होगी, लेकिन जो अज्ञान में है, इस बात से अज्ञान में है, उसके अंदर एरोगेंस और इम्पेशेंस होगी। तो जैसे हमने पिछली बार भी देखा कि जो हमारे साथ जैसा भी व्यवहार कर रहा है, जिसको हम गलत बुरा लेबल करते थे, हमारे से ज्यादा दर्द में वो आत्मा है। जैसे आपने कुछ दिन पहले भी कहा कि कुछ लोग जानबूझ के मैनिपुलेट कर रहे हैं या माइंड गेम्स खेल रहे हैं, उनके वो खेलने से हमें बुरा लगता है, तो हमें लगता है दे आर द कॉज ऑफ आर पेन, उनकी वजह से हम दर्द में हैं। भले हम उनके उस व्यवहार की वजह से जब हर्ट होते हैं तो हमें थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन एक्चुअली हमारे दर्द से कई गुना ज्यादा दर्द में वो आत्मा है।
2: जो आत्मा जिद्दी है और आपके समझो पति पत्नी की बात नहीं सुनना चाहता है, पत्नी पति की नहीं, सास की बहू नहीं, तो वो दर्द में है।
3: वो दर्द में है क्योंकि उसकी आंतरिक खुशी और स्ट्रेंथ इसी पर डिपेंडेंट है कि वो अपना कहना मनवाते हैं, और जितनी बार वो अपना कहना मनवा नहीं पाते तो वो खुश नहीं होंगे। ऐसी आत्मा के अंदर हमेशा एक इनसिक्योरिटी होती है कि दुनिया मेरे अनुसार चलनी चाहिए। जिद, स्टबर्ननेस मीन्स थिंग्स शुड गो माय वे। अंदर कितना डिस्टर्बेंस होगा। जो एक इजी आत्मा होती है ना, सहज है, सरल है,
2: हैप्पी सोल।
3: सी रिजिड जो चीज होती है, मतलब जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो बेंड नहीं कर सकती, एडजस्ट नहीं कर सकती, अडेप्ट नहीं कर सकती, उसको हर चीज अपने तरह से चाहिए। ऐसी आत्मा रिजिड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हैप्पीनेस नहीं हो सकती है। अब हमें अपने हर्ट से शिफ्ट होना है और शिफ्ट होकर हमें कंपैशन और हीलिंग की तरफ जाना है। सो पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति, जिसको अब हम आज से सारा दिन यूज करेंगे, जब कोई हमारे साथ कोई भी ऐसा व्यवहार करेगा जो अकॉर्डिंग टू अस कंफर्टेबल नहीं है, तो हम एक मिनट के लिए साक्षी होकर पहले अपने आप से ये पूछेंगे कि ये जो ऐसा कर रहे हैं इसके पीछे इनके मन की स्थिति कैसी होगी, विच इज एम्पथी विच यू सेड लास्ट टाइम। गेटिंग इन टू द माइंड ऑफ द अदर पर्सन. ये एक बहुत माइंड गेम ये है एक्चुअली. ये माइंड गेम बहुत इंटरेस्टिंग होती है कि दूसरे के मन को समझने की कोशिश करना कि दूसरे का मन ऐसा क्यों कर रहा होगा, इसको ऐसा करने का क्या कारण होगा इसके पीछे, इसको ऐसा करके कैसा लग रहा होगा. वेरी इंटरेस्टिंग. ये करने से हम अपने भी दर्द में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें दूसरे की मन की स्थिति समझना शुरू हो जाएगा. जैसे ही हम ये गेम खेलना शुरू करते हैं ना, ये गेम खेलने की एक आदत पड़ जाएगी. कोई भी ऐसा करेगा ना, फटाफट से उनके मन में घुसना है. और आपको थोड़े दिन के बाद इट विल बिकम एन आर्ट. ये भी एक कला है कि दूसरे की क्या सोच चल रही होगी. ये करने से वी विल शिफ्ट.
2: क्या दर्द से गुजर रहा होगा?
3: दर्द तो है, दर्द तो है. जो भी आत्मा ओरिजिनल क्वालिटी में नहीं चल रही है वो डिजीज है. हेल्थ पे हम नहीं है तो डिजीज है. हैप्पी हम नहीं है तो हम दर्द में है. ये तो डेफिनेट है. लेकिन उसके माइंडसेट को समझने की कोशिश जब हम ये करेंगे तो फिर उस आत्मा के संस्कार को टॉलरेट करना.
2: फिर ऐसे लोग ये भी तो कहते हैं ना, क्या हम नेचुरल जीवन नहीं जिए, हम पिक्चर नहीं जाए, हम घूमने नहीं जाए, हम मतलब वाइन ना पिए, हम क्या ना करें. तो दे ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस इधर उधर दुनिया में. नेचुरल जीवन उसको कहते हैं जैसे आपने कहा ना कि आपका नेचर जो ओरिजिनल है टू बी हैप्पी, पावरफुल, पीसफुल, लवफुल, जो भी है. लेकिन ये लोग जो होते, मैंने कहा जैसे आपको कहा कि जो माइंड गेम खेलना चाहते हैं दूसरे को, ये वो सब ट्रिक्स, ये लोग हैप्पीनेस भी तो बाहर कहाँ कहाँ ढूंढते हैं बेचारे.
3: हम में से सभी मेजोरिटी हैप्पीनेस बाहर बाहर ढूंढ रहे हैं ना, किसी न किसी चीज में ढूंढ रहे हैं. जब हम ये सारी चीजें करना शुरू कर देंगे ना, देखो ये सारे खेल खेलते खेलते कुछ लोग ये खेल सी क्या चल रहा है.
2: खेल में भी तो हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं.
3: देखो
2: जैसे देखो मैंने इसको क्या कंट्रोल कर लिया. हाँ, देखो मैंने कितना वो कर लिया. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड.
3: दिस इज यू फील दैट यू आर पावरफुल बट एक्चुअली इट्स नॉट गोइंग टू बी ट्रू. क्योंकि आपने किसी और को तंग किया, अगर पहली बात तो किसी और को तंग किया तो क्या वाइब्रेशन भेजी, सामने से कौन सी वाइब्रेशन मिली. ये सब करने के बाद हम खुश हो सकते हैं? हाँ, थोड़ी देर के लिए हमें ये लग सकता है कि सामने वाले ने हमारा कहना मान लिया. और जिस दिन सामने वाले ने हमारा कहना नहीं माना उस दिन तो मन कितनी देर अशांत रहने वाला है. तो ये संस्कार भी पढ़ना कि दूसरे मेरे अनुसार चलें, ये संस्कार अगर डलेगा तो जीवन तो बहुत फियर और इनसिक्योरिटी में रहेगी. क्योंकि हर समय तो सब लोग हमारा कहना मानने ही नहीं वाले, ये तो हो ही नहीं सकता. तो जितना हम ये सारे खेल खेल रहे थे, जो आपने कहा मैनिपुलेशन या तंग करना या माइंड, तो अगर हम देखें कुछ लोग हैं जो ये खेल खेल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इस खेल की वजह से हर्ट हो रहे हैं. यही है ना, दो तरह में डिवाइड हो जाएगा. कुछ लोग डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग डोमिनेट होने की वजह से अपसेट हैं, कुछ लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. लेकिन दोनों ही, जो कर रहे हैं और जो हो रहे हैं, दोनों की आत्मिक शक्ति क्या होगी? दोनों ही घटती जाएगी, दोनों की ही घटती जाएगी. सो इट्स द नीड ऑफ द आवर. क्यों ये सहन शक्ति इतनी इम्पोर्टेंट है? एक जो हमने कुछ दिन पहले देखा कि लोग और सिचुएशन हमारे अनुसार नहीं चल सकते. वो तो हमने फाइनली कर लिया. तो हम अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हमने रखी थी कि वो हमारी डेफिनेशन ऑफ सही से चले, उन एक्सपेक्टेशंस को अब हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं. इवन व्हेन वी गेट हर्ट, यू नो, हर्ट हो भी तो सिट बैक, रिफ्लेक्ट. जितना भी हम अभी शेयर कर रहे हैं, मन कहता है, समझ रहा है धीरे धीरे, लेकिन एकदम से जाते ही तो कि हम हर्ट ही ना हो, ये तो एकदम से नहीं होगा. तो बात आएगी, कोई कुछ ऐसे करेगा हमारे साथ, फिर से कुछ खेल खेलेगा, हम हर्ट होंगे. सिट बैक, चिंतन तो हम करते ही हैं उसके बाद. लेकिन हम चिंतन पहले क्या करते थे, क्यों किया, ऐसे किया, ऐसे हैं. अब हम
2: वो नहीं, उससे ज्यादा करता था मैं तो. ये तो है ही ऐसा, ये कितना बुरा है, पता नहीं इसके माँ बाप ने क्या सिखाया, पता नहीं मेरे साथ उसको क्या तकलीफ है, मैं तो अच्छा ही करता हूँ, मैं तो इतनी मदद करता हूँ. अपने अच्छे अच्छे पॉइंट देख के दूसरे के बुरे बुरे चुनता हूँ.
3: तो अब भी हम चिंतन करेंगे, लेकिन अब चिंतन की धारा थोड़ी सी बदल जाएगी। अब चिंतन ये होगा, अपने आप को कहेंगे लेकिन वो मेरे अनुसार तो नहीं चल सकते ना, अपने मन को प्यार से समझाना है कि वो आत्मा मेरे अनुसार तो नहीं चल सकती, जो बात मेरे लिए बहुत इजी और नेचुरल है वो हो सकता है उस आत्मा के लिए बहुत डिफिकल्ट या शायद अभी तो इम्पॉसिबल है, वो संस्कार उस आत्मा के पास अभी है ही नहीं। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये समझना है कि वो संस्कार उस आत्मा के पास अभी नहीं है और उसके पीछे एक रीजन है कि वो आत्मा कहीं ना कहीं इस यात्रा में, जर्नी ऑफ लाइफ टाइम्स, इस यात्रा में कुछ ना कुछ ऐसे अनुभवों से गुजरी है जिस कारण उस आत्मा का संस्कार ऐसा बना है, कंपैशन। एंड थर्ड, हेल्प देम। हेल्प कैसे करेंगे उनके?
2: बाय बीइंग नाइस।
3: बाय बीइंग नाइस फ्रॉम हियर,
2: फ्रॉम विद इन।
3: फ्रॉम विद इन हमारा सबसे बड़ा योगदान किसी के लिए, हमारा सबसे बड़ा सहयोग किसी को वो यही है कि हम उनके लिए गलत नहीं सोचेंगे।
2: बट मैं अपने अगर ओरिजिनल सीट पे रहूं, आत्मा की कुर्सी पे, और अपने ओरिजिनल क्वालिटीज में रहूं, तो दैट इज मोर देन एनफ।
3: दिस इज ओनली व्हाट इट इज ना, ये चिंतन करते करते
2: नहीं, मैं बुरा भी ना सोचूं, असर भी ना हो, तो फिर उसके पास मेरा कोई वाइब्रेशन ही नहीं जाएगा।
3: मैं बुरा भी ना सोचूं, असर भी मुझे ना हो,
2: तो
3: उसी के लिए ये चिंतन हम कर रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी हर्ट हुए तो चिंतन करके इस तरह से आत्मा फटाफट से क्या हो जाएगी, अपनी सीट पर पहुंच जाएगी, अपनी ओरिजिनल स्थिति पे पहुंच जाएगी।
2: और हम ऐसा नहीं सोच सकते कि ये जो बंदा मेरे साथ कर रहा है ये सही है। व्हाई? क्योंकि मैंने इतने जन्मों में कुछ किया होगा दैट आई डिजर्व इट। जो हो रहा है, अगर मेरे लिए बुरा भी सोच रहा है तो देन ऑल्सो दिस पर्सन इज राइट एंड द सिचुएशन इज राइट, बिकॉज एवरीथिंग इज राइट, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मेरे पास्ट कार्मिक अकाउंट से।
3: वो तो है।
2: अगर मैं ये सोचूं हाँ। और एक्सेप्ट कर लूं, चलो जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है हाँ। इसका मेरा लेना देना इसने आज जो था ये करके, हमारा एक चीज खत्म तो हुई, एक कार्मिक अकाउंट बंद हुआ।
3: बस कार्मिक अकाउंट सिर्फ तब बंद होगा
2: तब जब मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा
3: बिल्कुल
2: गलत तरीके से।
3: और वो करते करते मैं आत्मा अपनी सहन शक्ति को बढ़ाता जाऊंगा, मुझे अपनी पावर्स को बढ़ाना है।
2: जैसे इसमें आप मुरली में आप अक्सर पढ़ती हैं और बताती हैं कि तू मुझे याद कर, एक सिंपल लाइन, बस बाबा याद करने में लगन हो जाती है, लगन में कनेक्शन हो जाती है, और जब कनेक्शन इतनी स्ट्रांग होती है

0: मैंने कुछ दुख दिया होगा तो आज मुझे ये दुख दे रही है, दे रहा है, तकलीफ तो सहनी पड़ेगी।
1: ये टॉलरेंस नहीं,
0: ये वाली नहीं, ठीक है। दिस वॉज द
1: टॉलरेंस। कई बार क्या होता है, दो तरह से आ जाती है। एक, कुछ लोग जो अपने आप को सुपीरियर फील करेंगे कि हाँ इसके अंदर तो ये नेगेटिव संस्कार है, ये है ऐसा, पर क्या करें, अब इनके साथ रहना है तो इनको
0: ज्ञानियों के साथ जीना है।
1: सही बात,
0: मैं
1: है,
0: तो ज्ञानी हूँ,
1: तो मुझे इनको टॉलरेट तो करना पड़ेगा। ये एक टॉलरेंस हम समझते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति अपने आप को इन्फीरियर फील करता है कि मुझे तो इसके साथ रहना है लेकिन क्या करूं, मेरे पास तो कोई और चॉइस है नहीं, कहीं और जा नहीं सकता, रहना तो इनके साथ ही है।
0: बोला था इसे शादी मत करो, लेकिन क्या करूं, मैं वहां वहां भी नहीं रही, वहां घर वापस भी नहीं जा सकती, यहाँ भी नहीं रह सकती,
1: तो मुझे टॉलरेट तो करना ही पड़ेगा। ये टॉलरेंस नहीं है। टॉलरेंस में फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी या फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी नहीं आएगा। राइट और रॉन्ग नहीं फील होगा। आई एम बेटर देन देम, ये फीलिंग नहीं आएगी। आई एम गुड, दे आर नॉट, ये फीलिंग नहीं आएगी। टॉलरेंस जो अंडरस्टैंडिंग और विजडम से आएगी, वो टॉलरेंस में सिर्फ एक थॉट आएगी, ये और मैं अलग अलग संस्कार है और इन अलग अलग संस्कारों को इकट्ठे रहना है, ऐसी थॉट आएगी। जब ये थॉट आएगी ना, तो मन बिल्कुल नेचुरली नेचुरल रहेंगे हम उनके साथ। और अपने आप को हमें कैसे चलाना है उनके साथ, तो हम अपने संस्कारों पर वर्क करेंगे कि ये अगर ऐसा करेंगे भी, कुछ ऐसा करते भी है, हाउ डू आई हैव टू बी विद देम, फोकस इज ऑन मी। जैसे टॉलरेंस का सबसे ब्यूटीफुल एग्जांपल जो प्रकृति में है वो है वृक्ष। ये वृक्ष हमें सिर्फ देता देता और देता है,
0: तूफान में, बारिश में, धूप में, खड़ा
1: सब में देता है, सब में देता है। कोई आकर चाकू से इस पर कोई अपना नाम भी लिखना शुरू कर दे, काटना भी शुरू कर दे, तो भी वो उसको देता है। इसको पत्थर भी मारे तो भी वो उसको देता है। अगर कोई हमें पत्थर मारे, क्या हम उसको फल दे सकते हैं? वो हमें स्टोन मारे, हम उसको फ्रूट दे, यही वृक्ष कर रहा है ना। हमें भी वही करना है, लेकिन वो पत्थर क्यों मार रहा है? क्योंकि उसके पास अभी पत्थर है। हम वृक्ष को पत्थर भी मारें तो वृक्ष हमें पत्थर नहीं मार सकता, क्योंकि वृक्ष के पास पत्थर नहीं है। वृक्ष के पास सिर्फ एंड सिर्फ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स है। तो हम उसको जितना भी हिलाएंगे, अब देखो कई बार जाके हम वृक्ष को हिला ही देते हैं ऐसा, जितना जोर से हिलाएंगे उतने ज्यादा फल फूल नीचे गिरेंगे हमारे ऊपर। तो कोई आपको आकर अब हिलाए भी
0: तो उसे दुआएं देता रहता है, वो
1: दुआएं देता है, सिर्फ दुआएं देता है। तो हमें भी कोई हमें हिलाए भी, तो हमें ये समझना होगा वो खुद किस स्थिति में है, इसलिए हमें ऐसा हिला रहा है, और हम अपनी स्थिति को इतना प्रोटेक्टेड रखें कि हम उसको सिर्फ क्या देते जाएंगे, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स जो हम अपनी मेडिटेशन में रोज इकट्ठी करेंगे। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। जो आत्मा डेली मेडिटेशन करेगी, डेली जैसे आपने कहा मेडिटेशन करके परमात्मा से कनेक्ट होगी, क्योंकि फ्रूट्स एंड फ्लावर्स मेरे पास होने चाहिए ना देने के लिए, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि लोग पत्थर मारे हम फल दे, लोग पत्थर मारे हम फल दे, ये उतना इजी नहीं है, प्रोवाइडेड हमने फल कहीं से ले ना ले। शक्ति भरनी पड़ेगी अपने अंदर पहले,
0: डेली फ्यूल,
1: डेली फ्यूल। तो जितना हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, अनकंडीशनल लव एंड पावर जस्ट भरता ही जाएगा अपने अंदर। सिर्फ 2 मिनट भी अगर दिन में बीच में साइलेंट हो जाए और उसको इस तरह से याद करे, अनकंडीशनल लव एंड पावर, फिर सारा दिन में लोगों को देना कुछ डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं लगेगा। ये अब हमें सारा दिन प्रैक्टिस करना है। हम किसी से सुपीरियर नहीं, हम किसी से इन्फीरियर नहीं, कोई गलत नहीं, सिर्फ वो हमारे से
0: अलग
1: अलग है, संस्कार उसके अलग हैं। मेरा रोल है उसको क्या देना है, मुझे सिर्फ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स देने,
0: दुआएं,
1: सिर्फ दुआएं देनी है, सिर्फ आशीर्वाद देना है, क्योंकि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता, और हिलाएगा तो उसको वही मिलेगा जो मेरे अंदर भरा हुआ है,
0: क्योंकि मैं बीइंग शक्ति हूँ,
1: मैं बीइंग शक्ति। सी दैट इज व्हाई मेडिटेशन सिर्फ वो नहीं है जो हम सुबह करें, शाम को करें या रात को सोने। मेडिटेशन मीन्स सारा दिन अपनी विचारधारा को कैसे बदलना है, जो हम कई बार देखते हैं ना कि हर एक घंटे के बाद

0: एक मिनट, तो कई बार भाई बहन कहते हर एक घंटे के बाद एक मिनट में करना क्या है उस एक मिनट की, अगर एक मिनट हम साइलेंस में बैठे भी सब काम छोड़ के साइलेंट भी हो जाए तो उस एक मिनट में क्या करना है। उस एक मिनट में अगर हम इतना भी अपने आप को याद दिलाएं, हर आत्मा का अपना अपना रोल है, मुझे किसी भी आत्मा के रोल के अंदर इंटेंगल नहीं होना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, मुझे किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये हमें अफर्मेशन, दीज आर अफर्मेशन वी हैव टू गिव टू आर सेल्फ अगेन एंड अगेन। आज तो हम चलते चलते किसी के भी साथ इंटेंगल हो जाते हैं, उलझ जाते हैं ना, हम दूसरे की एनर्जी में उलझ जाते हैं।
1: ये किसी का वो व्हाट्सएप या मैसेज आ जाता है कि इसने ऐसा किया, ऐसा उलझ गए और दूसरे को भी देखो इसने ऐसा किया, इसने ऐसा, जानते नहीं, सोचते नहीं, कुछ नहीं, उलझ कर कई बार चलते, अच्छा इन्होंने ऐसा कर दिया, इतना बड़ा मंत्री, इतना बड़ा फलाना, इस औरत को ऐसा, उसका आदमी का ऐसा, इसका मर्डर कर दिया, उलझना तो
0: टप टप टप टप टप टप, पावर डिप्लीट, पावर डिप्लीट।
1: फिर हम साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, भाई मेरा दिमाग ये नहीं चल रहा, मुझे ये नहीं चल रहा, मुझे गुस्सा आता है, मुझे तकलीफ होती है, आई फील डिप्रेस्ड,
0: राइट।
1: कितना डिप्लीट ये करता है
0: तो जीवन का लक्ष्य, मुझे किसी आत्मा की एनर्जी फील्ड में इंटेंगल नहीं होना, मुझे किसी के भी साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है। उस आत्मा का अपना रोल है, उस आत्मा के अपने संस्कार हैं, ये मुझे समझ आ गया। जब तक नहीं समझ आ रहा था हम उलझ रहे थे, फिर भी ठीक है, समझ आ गया ना, अब कोई चीज पता चल गई है ना, अब पता चलने के बाद उलझना, ये तो फिर वही हो गया ना जो आपने शुरू में पढ़ा कि अनएजुकेटेड, समझ आया तो भी यूज नहीं किया उस बात को। तो ये है मेडिटेशन, बार बार एक मिनट साइलेंस में बैठ के, हर आत्मा का अपना रोल है, हर आत्मा का अपना रोल है, वेरी साइलेंटली वी हैव टू गिव दिस पावर टू आवर सेल्फ। ये है वो नए ग्रूव बनाना। पुराना ग्रूव कहेगा क्यों ऐसा किया, नया ग्रूव कहेगा हर आत्मा का अपना रोल है।
1: तो ये अच्छा आइडिया, एक घंटे के बाद एक अलार्म लगा लेना चाहिए एवरी आवर, और ये याद दिलाना चाहिए अपने आप को कि हर आत्मा का अपना
0: रोल है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुझे किसी भी आत्मा की एनर्जी में अब उलझना नहीं है।
1: दिस इज अ ब्यूटीफुल लाइन,
0: आई कांट अफोर्ड इट एक्चुअली।
1: उलझना, एंटेंगल करने में हम वैसे उस वक्त बन जाते हैं, उस मोमेंट के लिए
0: हम किस जिसकी एनर्जी फील्ड में जाएंगे
1: वैसे बन गए,
0: वैसे बन गए।
1: जैसे मैंने पहले कहा था कि हम अगर कनेक्ट करेंगे बाबा को,
0: परमात्मा से कनेक्ट,
1: परमात्मा को, तो इतनी बड़ी लाइट है और मैं छोटा सा बल्ब,
0: वैसे बन
1: जाएंगे। उसके सामने में बड़ी लाइट में खो गया, एक बन गया।
0: ब्यूटीफुल, अगर परमात्मा को याद करेंगे तो उनकी एनर्जी फील्ड में इंटेंगल हो जाएंगे, तो उन जैसा बन जाएंगे। जैसे आपने कहा कभी हम संत महात्माओं से मिलने जाते हैं, उनकी एनर्जी फील्ड में जाते हैं, तो हमारी एनर्जी फील्ड उनकी एनर्जी फील्ड से इंटेंगल होती है, तो हम कहते हैं कितना पीसफुल लगा, कितना प्योर लगा। अब जो आत्मा दर्द में है उसकी एनर्जी फील्ड में इंटेंगल हो जाएंगे तो फिर कैसा अनुभव होगा?
1: तो फिर हमको पीस और ये सब ढूंढने कहीं जाने की जरूरत ही नहीं,
0: कहीं भी नहीं,
1: खाली अपने इसको थॉट को चेंज करना है कि आई डोंट वांट टू गेट एंटेंगल्ड इनटू दिस,
0: तो हम अपनी ओरिजिनलिटी से कनेक्टेड होंगे। ये मेडिटेशन है, आई विल नॉट गेट एंटेंगल्ड, ये मंत्र है एक और, जैसे हम कहते हैं आई विल नॉट स्मोक, आई विल नॉट ड्रिंक, आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट गेट एंटेंगल्ड विद एनीवन्स एनर्जी। मुझे अपने आप को बताना है, वो अपने स्क्रिप्ट से चलेंगे, मुझे अपना स्क्रिप्ट अपनी चॉइस का लिखना है, मैं उनको चेंज नहीं कर सकती, ना वो मेरे जीवन का लक्ष्य है, पर्पज ऑफ माई लाइफ। पर्पज ऑफ माई लाइफ इज अपने को संभाल के चलना, और फिर पुरुषार्थ करते करते धीरे धीरे अपने जीवन का मंत्र बनाएंगे, मुझे तो हर आत्मा से प्यार करना है, आई लव एवरी सोल, आई लव एवरी सोल।
1: इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन से कि आई जस्ट रेडिएट ओनली लव,
0: तो
1: मेरे सिर्फ प्यार की दुकान है,
0: बस
1: मेरे पास और कुछ नहीं मिलता है,
0: कुछ आए भी तो मेरा रोल क्या है, लव एवरी सोल।
1: कोई भी कस्टमर आए ना, मतलब या तो सिर्फ प्यार बिकता है,
0: बिल्कुल। ये करते करते मन अपना ही है, जैसा कहेंगे वो वैसे ही बनने लग जाएगा। very simple actually.
1: नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ती is not that simple.
0: The mehnat is nothing compared to how hard we worked on other things in life. हमने जीवन में बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत करते हैं उसके सामने ये मेहनत कुछ भी नहीं बैठे बैठे एक मिनट साइलेंस में बैठे अपनी थॉट को चेंज कर लिया कितनी मेहनत कह सकते हैं इसको मेहनत कम अटेंशन ज्यादा कह सकते हैं
1: अवेयरनेस
0: अटेंशन एंड अवेयरनेस रखनी है दैट्स व्हाट वी हैव टू डू
1: थैंक यू सो मच सिस्टर एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं
0: लेट्स सिट बैक कंफर्टेबल अपने आप को देखें इस जीवन की यात्रा में इस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर मैं आत्मा एक्टर अनेक एक्टर्स के साथ अपना पार्ट प्ले कर रही हूं हर एक का अपना अपना रोल अपना स्क्रिप्ट है हर एक का रोल और स्क्रिप्ट उनके जीवन के अनुभव और अनेक जन्मों के संस्कारों के आधार पर है मुझे अपने स्क्रिप्ट पर अटेंशन आज से ये पक्का है मैं आत्मा किसी को नहीं बदल सकती अटेंशन सिर्फ अपने ऊपर आई विल नॉट गेट एंटैंगल्ड इन एनीवन एल्सेस एनर्जी फील्ड आई लव एवरी सोल आई एम अ रेडिएटर ऑफ लव दिस इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ ये मेरे जीवन का लक्ष्य है Om Shanti.
1: Om Shanti.
0: Thank you.
1: Thank you so much. Om Shanti.
2: When we find sanskars of souls different from us, sanskars which we cannot understand or we are not comfortable with, we label the soul as strange, wrong, or bad. Truth is, they are only different from us. When we find someone's behavior uncomfortable, first thing is to understand their mind. Try to get into their mind and understand what would they be feeling and thinking for them to behave in this manner. This is empathy. Even if we create hurt in response to someone's behavior, we need to sit back and gently counsel our mind. This is their sanskar. What is natural for me is right now difficult or impossible for them. They have experienced something because of which they have this sanskar. This is compassion. With empathy and compassion, we now create only pure and loving thoughts for that soul. And our behavior towards them is with humility, love and care. This is healing for them and us. Like a tree only gives us fruits and flowers, even if we throw stones at it, shake it or cut it, because the tree is full of fruits. Similarly, if we fill ourselves with love, by connecting to God during meditation, then even if someone shakes us or throws stones at us, we will only give love. We need to always keep attention that we will not entangle with the energy field of any soul. We will not come in conflict with anyone. If we connect to God, we experience His powers. When we connect to spiritual masters, we experience peace and love. If we connect to the energy field of any soul carrying negative sanskars, we will experience negativity. Be with them, but not get entangled.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Rajyoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन, नाउ इवन अगर कल बीत गया, इट डजंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: ओरे माझी ओ मेरे माझी।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है प्रकृति के प्रति क्षमा याचना व सम्मान। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि प्रकृति हमारे जीने का मूल आधार है। प्रकृति न हो तो मनुष्य का जीवन हो ही नहीं सकता। अगर प्रकृति हमारा साथ ना दे तो हम एक पल भी इस धरा पे नहीं जी सकते हैं, क्योंकि ये पांच तत्वों से बना ये तन प्रकृति की ही देन है। तो प्रकृति की रक्षा करना, उसे सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। तो प्रकृति के जो पांचों तत्व हैं, जैसे पशु पक्षी जीव जंतु आदि सब मानव जीवन एवं सृष्टि की संतुलित एवं सुखद बनाने के लिए आवश्यक है। जगत के सभी प्राणी एक दूसरे के पूरक हैं। वर्तमान समय मनुष्यों की असंतुलित जीवन शैली जो है अमर्यादित आचरण, अशुद्ध भोजन और तामसिक प्रवृत्ति की दुखद अशांति एवं पीड़ा के कारण बने हुए हैं। अब हम देखते हैं कि आवश्यक जो चीजें हैं उसे हम यूज तो करते हैं अपने जीवन में, उसे मूलाधार भी बनाते हैं, लेकिन उसके प्रति हमारी जो लगाव है, उसके प्रति जो सम्मान है, वो हम देखते हैं उसमें कुछ कमियां आ गई हैं। तो अनावश्यक दोहन से प्राकृतिक जो है उसे के प्रकोप में आ जाती है, और स्वार्थ एवं लालच ने मानव को मूल्यों और मर्यादाओं के साथ साथ मर्यादाओं से विमुख कर दिया है। भौतिकता की अंधी दौड़ में दौड़ता हुआ वह सुख शांति एवं समृद्धि की प्राप्ति से दूर निराशा बेचैनी हताशा एवं मानसिक तनाव का शिकार होता जा रहा है। उसने प्रकृति का अनावश्यक दोहन कर उसे असंतुलित कर दिया है। इसी कारण हमें अनेक बार प्राकृतिक प्रकोप एवं वायरस जनित बीमारियों का दुखद सामना करना पड़ता है। इन सब के पीछे मानव के अपने कर्म ही उत्तरदायी हैं। अब हम देखते हैं कि कर्म सिद्धांत के अनुसार हम अच्छा या बुरा जैसे भी कर्म करते हैं उसका यथाफल हमें अवश्य ही मिलता है। इस अर्थ में हम प्रकृति के साथ ही इनके साथ भी जैसा बर्ताव करेंगे प्रतिफल हमें वैसा ही मिलेगा। अतः हम देखते हैं कि सभी की जिम्मेदारी है कि अपने श्रेष्ठ आचरण एवं सत्कर्मों के बल पर इस धराधाम एवं प्रकृति को पुनः उसके उच्चतम स्वरूप में पहुंचाए। मानव सृष्टि का सर्वोत्तम बुद्धिजीवी प्राणी जो है परमात्मा ने मानव को सृष्टि का सर्वोत्तम बुद्धिजीवी प्राणी बनाया है। इस अर्थ में दूसरों का अधिकार और जीवन छीनने का नहीं, दूसरों को अधिकार दिलाने एवं जीवन की रक्षा करने का भार हमें सौंपा गया है। आज हम देखते हैं जाने अनजाने मानव से अनेकों भूल और दुखदायी कर्म होते रहते हैं। ऐसे में जरूरत है सर्वोच्च शक्ति परमपिता परम
सर्वात्मा एवं प्रकृति माँ से भूलों एवं गलत कर्मों के लिए क्षमा याचना कर उनके जो समीप जाने की परमपिता परमात्मा और प्रकृति माता से यदि हमें सच्चे दिल से अगर हम उनसे सच्चे दिल से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करेंगे तो निश्चित ही वे हमें माफ कर देंगे, हमारे उज्ज्वल एवं सुखदायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इसकी।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है प्रकृति के प्रति क्षमा याचना एवं सम्मान। परमात्मा पिता तथा प्रकृति माता को हम क्या करेंगे, भावनाओं रूपी पुष्पार्पण करेंगे। हम पुष्पार्पण का मतलब क्या है, कहा गया है कि कहा जाता है यदि हम भगवान का ध्यान करेंगे तो वे हमारा ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार यदि हम प्रकृति माता का भी ध्यान रखेंगे, उनका साथ देंगे, प्रकृति माता के प्रति दिल से स्नेह सत्कार एवं सहयोग की भावना जगाएंगे तो वह भी हमें क्या करेंगे, हमारा साथ और सहयोग देंगी। मानव और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस अर्थ में प्रकृति के प्रति सम्मान ही मानव जीवन को सुखदायी एवं संपन्न बना सकता है। तभी हम प्रकृति के विकराल रूप से मुक्त रहने में सफल होंगे। तो आइए कुछ देर परम शक्ति परमात्मा पिता तथा प्रकृति के सम्मुख खुद को समर्पित कर दिल की भावनाओं रूपी पुष्प अर्पित करें। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हम ऐसा करें कुछ देर के लिए, अपने मन बुद्धि को अनेक बातों से मुक्त कर एकाग्रचित हो, स्वयं को आत्मभाव में स्थित करें, अनुभव करें कि मैं त्रिकोटी के मध्य विराजमान चैतन्य दिव्य सितारा हूं, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परम पिता परमात्मा की संतान मैं आत्मा, प्रकृति के पांचों तत्वों से निर्मित मानव शरीर की चैतन्यता का आधार हूं, खुद को चैतन्य दिव्य सितारा समझते हुए अनुभव करें दिव्य प्रकाश पुंज परमात्मा एवं प्रकृति के पांचों तत्व मेरे सम्मुख उपस्थित हैं। अंतर्मन में यह भाव जागृत करें कि हे परमात्मा एवं जीवनदायिनी प्रकृति माँ, आज तक जाने अनजाने मुझसे कुछ भी जो कुछ भी भूल एवं गलत कर्म हुए हैं, उन सभी के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। मैंने अपने गलत आचरण से जो भी क्षति पहुँचाई है, आपको असंतुलित किया है, वह मेरी भूल थी, कृपया इन सभी भूलों के लिए क्षमा करें। हे परमपिता परमात्मा, आपसे हमें ऐसा सामर्थ्य प्राप्त हो जिससे हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट न पहुंचे। तो यह क्षमा याचना मांगने की और परमात्मा से परमात्मा की किरणों के नीचे बैठकर अपने आप को परमात्मा से दिव्य शक्तियों की कैसे धारणा हो हमें, इसका ये मूल आधार यही है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों। तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है प्रकृति के प्रति क्षमा याचना एवं सम्मान। आज हम देखते हैं कि प्रकृति हमारी माँ है, माँ हमारा देख रेख करती है। तो प्रकृति माँ इस सृष्टि पर परमात्मा के बाद दूसरा स्थान आपका ही है, ऐसी भावना हमारे मन में हो। आपसे ही संपूर्ण सृष्टि को जीवन मिलता है, संपूर्ण चराचर की जीवन का आधार एवं मूल आप ही हो। आप ही मानव जगत की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करती हो। संसार में विद्यमान सुंदरता आपकी ही अनोखी क्या है, कृति है। अनेक सुंदर फल फूल एवं अन्न आदि प्रदान कर आपने ही इस सृष्टि पर जीवन को सुरक्षित एवं संचालित किया है। आप ही मानव जीवन की पालनहार हो। अतः श्रद्धा एवं सम्मान पूर्ण भावनाओं के साथ मैं आत्मा आप एवं परमात्मा से बार बार क्षमा याचना करती हूँ। मैं हमेशा यह ख्याल रखूंगी कि भविष्य में मेरे द्वारा आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट न पहुंचे। मैं आपका संतुलन बिगड़ने के निमित्त न बनूं और किसी प्रकार आपका अनावश्यक दोहन ना करूं। हम दोनों मिलकर आपसे स्नेह सहयोग एवं सामंजस्य से इस सुंदर सृष्टि को पुनः इसके सर्वोच्च एवं सुखदायी स्वरूप में स्थापित कर सके, जिससे यह जगत स्वर्णिम युग में बदल सके। संपूर्ण चराचर का जीवन खुशहाल हो सके। एक दूसरे से किसी को भय एवं तकलीफ न हो। सभी का जीवन खुशहाल एवं आनंदित हो। ऐसे सुखद भविष्य की कामना के साथ साथ मैं पुनः आपसे क्षमा याचना करती हूँ। मेरे परम पिता परमात्मा एवं प्रकृति मुझे अपने दिव्य वरदानों से भरपूर कर रहे हैं, ऐसी भावना हो। मैं परम आनंद का अनुभव कर रही हूँ, इसी भावना के साथ प्रकृति को शुभ भावना दे और इन्हीं शुभ भावना और शुभ कामनाओं के साथ उनसे क्षमा याचना भी मांगे। तो इससे क्या होगा, प्रकृति भी शांत होगी और उनसे आपको सुखदायी जीवन की प्राप्ति होगी। तो ऐसा हमेशा अनुभव करें कि परमात्मा की किरणें आप पे आ रही है और आपसे प्रकृति को प्राप्त हो रही है। तो इसी के साथ आज का एक कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सर्वस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: एक्यूप्रेशर देताली, पात्र परिचय, वरदान पंकज, दृष्टि आकाश, वेदांत यश और आदित्य, लेखिका सुधा पुरी।
3: चलो चलो आज नुक्कड़ नाटक खेलते हैं।
4: हाँ बड़ा मजा आएगा, और अगर अच्छा गया तो हम अपनी सोसाइटी के लोगों को बुलाकर उन्हें दिखाएंगे।
3: ठीक है,
5: मैं भागकर अपनी दादी की ढोलक ले आता हूँ।
6: ठीक है, और मैं मंजीरे।
7: बाकी हम सब तालियों की एक मधुर ताल बजा बजा कर बीच बीच में संगीत देंगे।
4: मतलब कैसे?
7: हम ऐसे ताली बजाएंगे ना, एक दो, एक दो तीन।
8: ठीक है, देखो हम सब उधर से ताली बजाते बजाते आएंगे और इधर आकर एक गोला बना लेंगे, फिर अपनी अपनी बात कहेंगे एक एक बार बीच में आकर।
6: दीदी, उस दिन मैं कुछ कविताएं लिख रहा था, उन्हें भी इस्तेमाल कर लेंगे।
8: ठीक है, हम सब कुछ कुछ लिख के लाते हैं और फिर सबके आइडिया को मिलाकर एक नुक्कड़ नाटक तैयार करते हैं।
3: दीदी, इस बार हम अपने नाटक में एक डांस भी रखेंगे।
4: हाँ, पर कोई लोक नृत्य।
5: ठीक है, सबसे मजा तो गरबा में आता है, मुझे तो छोटी छोटी डंडियों के साथ डांस करने में बहुत मजा आता है।
9: इस डांस को गुजरात के नवरात्र में हर सोसाइटी या कॉलोनी में किया जाता है।
6: ओ, तब तो पूरे पूरे पार्क इसके लिए सजे होते होंगे।
8: हाँ, पता है कई पंडाल भी खास इसी नृत्य के लिए सजे होते हैं, और हर उम्र के लोग मिल मिल के साथ डांस करते हैं। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता, बस जिस किसी को भी डांस आता है वो साथ में मिल जाता है।
4: तो हमारे राजस्थान में घूमर भी तो इसी तरह का नृत्य होता है।

0: हाँ कई समानताएं हैं। दोनों गुजरात का गरबा और डांडिया घूमर जैसे ही गोल गोल एक दायरे में होता है। दोनों ही खुशी के मौके पर परिवार में सब मिलकर करते हैं।
1: पर एक बात मुझे भी पता है।
2: क्या? गरबा तो ताली बजा बजा कर होता है और डांडिया छोटी छोटी डंडियों से।
3: चलो बात तय हुई, सब कल ही कुछ लिख के लाएंगे और हम उधर पार्क के उस कोने में रोज प्रैक्टिस किया करेंगे। पर आज का समय यूं ही वेस्ट नहीं करते, आओ हम तरह तरह की तालियां बजाने की प्रैक्टिस करेंगे।
4: हाँ दीदी, अलग अलग ट्यून निकाली जा सकती है तालियों की भी। देखो मैं दो बार हाथ से मारूंगा और दो बार टेबल पर, तो देखो कैसा मजेदार लगता है।
2: ये सब करके तो मुझे सपने पिक्चर का वो गाना याद आ रहा है।

0: मुझे भी ये गाना बहुत अच्छा लगता है। कितनी प्यारी तरह से बताया गया है कि हमारे प्रकृति में कितना मधुर संगीत भरा हुआ है।
1: बात फिर वही है ना, ध्यान।
2: आपका मतलब है जो हम योग में सीखते हैं?
1: और क्या, जब साइकिल चलानी सीख ली तो कोई भी मॉडल हो तो चला सकते हैं ना, क्यों?
3: या तैरना सीख लिया तो कोई भी तरण ताल हो, क्या फर्क पड़ता है?
4: या क्रिकेट आता हो तो कोई भी मैदान,
1: या बैडमिंटन आता हो तो कोई भी बैडमिंटन कोर्ट,
2: या पढ़ना आता हो तो कोई भी किताब।
1: अरे बस बस बस, लगे मस्करी करने।
2: पर एक बात है, ये हमारा ऐसे ताली बजाना तो मुझे योग के एक्यूप्रेशर की याद दिलाता है।
0: हाँ मुझे भी।
1: तो कई बार लोग किसी भी ताल पर ताली बजाकर बगीचों में भजन वगैरह गाते नहीं दिखते क्या?
2: तो ये भी एक तरीका हुआ तनाव दूर करने का।
1: वो तो है ही, अभी ही देख लो, हम सब ने अलग अलग तरीके से तालियां बजाई हैं, तो कितनी ताजगी सी भरी हुई लग रही है।
5: हाँ बिल्कुल ठीक, सही है।
1: यानी अगर हम नुक्कड़ नाटक करते भी हैं, तो नाटक का नाटक और एक्यूप्रेशर का एक्यूप्रेशर होगा।
6: यानी एक पंथ दो काज।
3: जी नहीं, एक पंथ हजारों काज।
1: बच्चों ये हंसने की बात नहीं है, अगर हम कहें कि ताली बजाने से स्वास्थ्य को लाभ होता है तो यह मजाक लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह बिल्कुल सही है और लाभदायक भी।
5: वो कैसे दीदी?
1: तुम सबने देखा होगा, आमतौर पर हम किसी को खुश करने या फिर प्रोत्साहित करने के लिए ताली बजाते हैं।
2: तो खुश और उत्साहित होने पर हम खुद भी तो ताली बजाते हैं।
6: बहुत से लोग गाते हुए भी ताली बजाते हैं।
1: बिल्कुल ठीक, ताली बजाने में मजा आता है, इसलिए बच्चे ताली बजाना पसंद करते हैं।
6: हाँ दीदी, मेरे पापा कहते हैं ताली बजाना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है।
1: वो इसलिए कि ताली बजाने से हाथों के सारे बिंदु दब जाते हैं और धीरे धीरे शरीर में व्याप्त रोगों का सुधार होता है।
3: मेरी नानी रोज कई देर तक ताली बजाकर भजन करती है, कहती है ताली बजाने से आपको हृदय रोग और अस्थमा संबंधित समस्याओं से राहत पाने में बहुत मदद मिलती है।
4: और मेरे दादाजी कहते हैं हृदय, लिवर, फेफड़ों आदि से जुड़ी नसों के लिए यह बहुत मददगार साबित होता है।
1: वो इसलिए कि अगर आप ताली बजाते हैं तो नसों को बेहतर कार्य करने में मदद मिलती है, इससे आप बेहतर और अधिक आराम महसूस करते हैं।
7: मेरे स्पोर्ट्स के सर बता रहे थे कि ताली बजाना आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि यह आपके शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं को मजबूत करता है, जो किसी भी बीमारी से आपके शरीर की रक्षा करते हैं।
1: वैसे भी यह बच्चों में कौशल बढ़ाने और एकेडमिक प्रदर्शन को सुधारने में मदद तो करता ही है, मतलब ताली बजाना।
2: हमारी सोसाइटी में तो कुछ अंकल रोज ताली बजाते हैं। एक ने बताया था ताली बजाने से रक्त संचरण बढ़ता है और नसों तथा धमनियों से खराब कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ सारे अवरोध हट जाते हैं।
0: मैंने एक मैगजीन में भी पढ़ा था, अगर आप एक दिन में 1500 बार ताली बजाते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। और यही नहीं, हाथ से ताली बजाने से बच्चों का हस्त कौशल सुधरता है, जिससे उनकी लिखावट साफ हो सकती है, वे बेहतर लिख सकते हैं और स्पेलिंग संबंधित त्रुटियां भी कम होती है।
1: अरे मैंने तो खुद करके देखा है, हर रोज भोजन करने के बाद 1 घंटे के लिए ताली बजाएं, इससे आप गर्मी महसूस करेंगे और आपके हाथों और पैरों पर पसीना भी आ सकता है। बल्कि कुछ लोगों का मानना है कि हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, डिप्रेशन, अस्थमा, जुखाम, गठिया, सिर दर्द, अनिद्रा और बालों का झड़ना आदि बीमारियों का इलाज ताली बजाने से किया जा सकता है।
3: तो क्यों साथियों, अब तो हम कह सकते हैं ना?
1: क्या?
3: वही, ताली बजाने से एक पंथ और हजारों काज होते हैं।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

कदम आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। देने बाएं हम।

आते क्यों नहीं? जाओ जाओ, जाते क्यों नहीं? फूल सा

ना निकला दस गया शब का अंधियारा दस गया शब का अंधियारा आओ आओ आते क्यों नहीं जाओ जाओ जाते क्यों नहीं फूल सर रुख और

से लिपटे हुए थे। वक्त की गर्दिश तेज थी और पांव रोके नहीं रुकते थे।

0: मुझे देख रहे हैं।
1: तो देखने दो,
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो चलने दो,
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हट जाए
1: हो जाए।